एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई सन 2026 प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारा आज का प्रसारण शुरू होता है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री

0: जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफ़ायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

मनुष्य के मन में यदि प्रेमा भक्ति हो तो कर्म में सेवा भक्ति की भावना स्वयं ही जाग जाती है। मन प्रभु के नाम को जपता हो तो तन सेवा भक्ति यानी कर्म में रत हो ही जाता है। केवल चिंतन मनन भजन में सेवा नहीं रह सकती। सेवा का संबंध उन कर्मों से है जो अपने प्रिय प्रभु के लिए किए जाते हैं। कर्म करो और भगवान को अर्पित कर दो, अर्थात प्रत्येक कार्य को करते हुए हमारे मन में यही भावना आनी चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वह सब हमारे प्रभु की सेवा भक्ति के निमित्त है। सेवा संबंधी प्रत्येक कर्म को अपने प्रभु को समर्पित करने से प्राणी अहंकार से मुक्त हो जाता है। भक्ति के माध्यम से मनुष्य का जीवन प्रभु से जुड़ जाता है और मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य ही प्रभु से जुड़ना है। चिंतन के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

मनुष्य के व्यवहार में नम्रता भक्ति की पहली और अंतिम शर्त मानी जाती है। नम्रता के बिना की गई पूजा, व्रत या दान केवल एक दिखावा है जो आत्मिक शांति नहीं दे सकता। जब हम पूरी तरह से प्रभु के श्री चरणों में झुक जाते हैं, तभी हम ईश्वर की असीम कृपा पा सकते हैं। श्रेष्ठ भक्तों ने हमेशा स्वयं को ईश्वर का दास या सेवक ही माना है। हनुमान जी की भक्ति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।

तो उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए और जब दुख आए तो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य शिकायत करना बंद कर देते हैं तब हर परिस्थिति में शांत रहते हैं और इसी से उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए और जब दुख आए तो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य शिकायत करना बंद कर देते हैं तब हर परिस्थिति में शांत रहते हैं और इसी से सब

श्रोताओ, ये थी भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना की अंतिम प्रस्तुति। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित सहस्रों राजाओं से भी जब शिव का धनुष टस से मस ना हुआ तो ऐसा लगा कि जनक जी की मनोहरिणी कन्या का वरण करने वाले की ब्रह्मा ने सृष्टि ही नहीं की। प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, अतः क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। राजा जनक का नैराश्यपूर्ण ये कथन सुनकर लक्ष्मण को क्रोध हो आया। जहां एक भी रघुवंशी होता है वहां कोई भी ऐसे वचन नहीं बोलता जैसे अनुचित वचन जनक जी ने कहे हैं। श्री राम के चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके प्रताप के बल से मैं धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना कर पाया तो फिर कभी धनुष और तर्कस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण के क्रोध भरे वचन सुनकर पृथ्वी डगमगा उठी, दिक्पाल कांप उठे, किंतु सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और राजा जनक सकुचा गए। श्री राम ने अनुज को शांत होने का संकेत करके अपने पास बिठा लिया। तब मुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रेम सनी वाणी में कहा, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़कर जनक जी का संताप मिटाओ।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आज प्रसारित व रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर बाद सुबह ठीक 7:10 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात। आज के इस कार्यक्रम में जानकारी के विषय रहेंगे विश्व निरपेक्ष खेल दिवस, नीलम संजीव रेड्डी की जयंती, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुण्यतिथि, रमणीक स्थल में बात होगी पांगी घाटी की और पर्यावरण में चिरैया पक्षी के बारे में जानकारी साझा की जाएगी। सुबह 7:40 पर सुनेगा लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। आज सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे हास्य नाटक नोखे लोग नोखियां गल्ला। सुबह 9:00 सुनना ना भूलिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। 10:00 आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत और 10:30 से लेकर 11:30 पर आज आप सुनेंगे हिमाचली लोकगीत। दिन में 11:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 12:00 समय रहता है फिल्म संगीत के कार्यक्रम सैनिकों के लिए का। दोपहर 12:30 पर बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर परिवार। दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5:00 तक आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। शाम 5:10 पर आपको सुनवाएंगे कुछ भजन। 5:30 पर सुनेगा कार्यक्रम युवा मंच। शाम 6:05 पर सदाबहार फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा। शाम 6:30 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां और 7:10 पर किसान व बागबान भाई बहन सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। रात 8:00 विविध संगीत।

गीत का कार्यक्रम सबरस प्रसारित किया जाएगा। देशगान आप सुन सकते हैं रात 8:30 पर। 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9:00 अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। रात 9:15 पर एक ही कलाकार के अंतर्गत आज आपको सुनवाएंगे गायक मनहर उदास के गाए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। धाम गीतांदी लोक गीतों पर आधारित यह कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर। 10:30 पर सुनना ना भूलेगा पुरानी फिल्मों से गीत कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। सुबह 9:18 पर, दिन में 11:00, दोपहर 3:00, शाम 6:00 और शाम 7:45 पर।

कार्यक्रमों की रूपरेखा में बस इतना ही। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनस गहरस्तुर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण के अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई की जांच के बाद की गई है। संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में खरीद से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी धन शोधन के पहलुओं की जाँच कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही ऐसा समझौता हो सकता है जो अमरीका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has appreciated the growth in bilateral trade and investment following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. Attending the India-Norway Business and Research Summit in Oslo, along with Norway Crown Prince Haakon and Prime Minister Jonas Gahr Støre, Mr. Modi underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA and the consequent creation of 1 million jobs in India.
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
2: Prime Minister Modi highlighted India's strong upward growth trajectory, demographic dividend, talented and aspirational youth, robust business practices, investor-friendly regulatory framework, and the spirit of competitive federalism. He encouraged greater Norwegian investments in India in key sectors such as the blue economy, shipbuilding, green transition, renewable energy, health tech, critical minerals, and startups. Defence Minister Rajnath Singh has described the Operation Sindoor as a testament to India's transformation into a strong, confident and capable nation. Addressing the Indian diaspora in Hanoi yesterday, Mr. Singh asserted that while India remains committed to the no-first-use policy, it will not succumb to nuclear blackmail and stands ready to respond firmly to any enemy misadventure. He highlighted India's growing stature on the international stage due to the unprecedented progress achieved under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Mr. Singh invited the international community to partner with India for global peace, shared growth and prosperity, while urging the Indian diaspora to contribute to nation building. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal chaired a review meeting in New Delhi on the rollout of the much-anticipated water metro services in the country. He said the centre's advanced plans to roll out water metro services in 18 cities with Guwahati among those identified for phase 1. Cities including Srinagar, Patna, Varanasi, Ayodhya and Prayagraj are also part of phase 1, while Tejpur and Dibrugarh in Assam have been proposed for phase 2 of the project. Highlighting the initiative, Mr. Sonowal said the proposed water metro systems is significantly less capital intensive as it utilizes existing waterways with minimal civil infrastructure. The Reserve Bank of India has discontinued the requirement for commercial banks to maintain the investment fluctuation reserve, an additional buffer created to protect against depreciation in the value of investments. In a statement, the RBI said the balance available in the fluctuation reserve as of last Sunday will be transferred to the statutory reserve, general reserve or the balance of profit and loss account. West Bengal government has granted formal sanction for the prosecution of Sandeep Ghosh, former principal of RG Kaur Medical College and Hospital, Kolkata. The legal note action follows an order passed by the Calcutta High Court on the 23rd of August 2024. The investigation pertains to alleged financial irregularities in various procurements and related matters at RG Kaur Medical College and Hospital involving Sandeep Ghosh and three other entities. Government has debunked a claim circulating online alleging that the government is going to issue gold bonds to temples in exchange for temple gold reserves. The fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, stated that the claim is fake. It added that the government has not made any such statement. U.S. President Donald Trump has said he's holding off a planned military strike on Iran after request from the leaders of Qatar, Saudi Arabia and the UAE as serious negotiations are now underway. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad defeated Chennai Super Kings by 5 wickets in Chennai last night to secure a playoff berth. Put into bat first, Chennai Super Kings posted 180 for 7 in 20 overs. In reply, Sunrisers Hyderabad overhauled the target, losing 5 wickets in 19 overs. Today, Rajasthan Royals will face Lucknow Super Giants in Jaipur at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
3: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात।

श्रोताओं गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर आज के इस सुप्रभात कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सचिता। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं इस सुविचार के साथ। दोस्तों, कहते हैं कि चलते रहना ही जिंदगी है, क्योंकि थमा हुआ पानी भी कुछ दिनों में अपनी महक खो देता है और ठहरा हुआ इंसान अपनी हिम्मत। रास्ते में स्पीड ब्रेकर आएंगे, लाल बत्ती भी मिलेगी, लेकिन गियर बदलकर आगे बढ़ते रहने का नाम ही जिंदगी है। कितनी सही बात है ना दोस्तों, अगर कल कोई गलती हुई है तो उसे वहीं छोड़कर एक नया कदम हमें उठाना चाहिए, क्योंकि घड़ी की सुइयां भी चीख चीख कर यही कहती हैं, बस रुकना मना है। इसी सुविचार के साथ हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और आपको सुनवा रहे हैं ये सुपरहिट गाना जो आपके कदमों की रफ्तार को और भी बढ़ा देगा।

इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सुप्रभात में। अब हम बात करेंगे आज विशेष की। आज 19 मई है और आज ही के दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिन्होंने आज के इस दिन को खास बना दिया। सबसे पहले बात करते हैं सन 1919 की। आज ही के दिन यानी 19 मई को अकाली दल का उदय हुआ। पंजाब के गुरुद्वारों के सुधार और प्रबंधन के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना की नींव आज ही के दिन रखी गई, जिसके बाद आगे चलकर अकाली आंदोलन और अकाली दल का उदय हुआ। और श्रोताओं, आज ही के दिन 1971 में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पहले पनडुब्बी बेस INS वीर बाहु की स्थापना भी की गई, जिससे कि भारत की समुद्री सुरक्षा को एक नई पहचान और एक नई मजबूती मिली। और अब बात करते हैं आज ही के दिन जन्मे कुछ महान व्यक्तियों के बारे में। 1913 में भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का जन्म आज ही के दिन हुआ। वे भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जो निर्विरोध चुने गए थे। 1934 में बच्चों और युवाओं के पसंदीदा पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड का भी जन्म आज ही के दिन कसौली हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनकी कहानियां आज भी भारतीय साहित्य का अनमोल हिस्सा हैं। आज ही के दिन 1904 में जमशेद जी टाटा का निधन हुआ। वे भारत के औद्योगिक क्रांति के जनक और टाटा समूह के संस्थापक थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी का आज ही के दिन उनका निधन हुआ 1979 में। वे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार थे।

श्रोताओं, कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक प्यारे से गीत के लिए और गीत के बाद फिर से मिलेंगे आपके साथ कुछ और जानकारियों के लिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।

आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। श्रोताओ, आज विश्व निरपेक्ष खेल दिवस है। हर साल 19 मई को ये दिन मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ओलंपिक आदर्शों और खेलों में निष्पक्षता को मान्यता देने के लिए घोषित किया गया था। ये दिन खेलों में ईमानदारी, समानता और गैर भेदभाव को एक दूसरे के सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

निष्पक्ष खेल का सीधा मतलब है ईमानदारी। एक ऐसी खेल दुनिया जहां कोई भी धोखेबाजी ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बस ईमानदारी से खेला जाए, यही आज का दिन हमें सिखाता है। ये दिन सिर्फ इंटरनेशनल एथलीट्स के लिए ही नहीं है श्रोताओं, ये हमारे और आपके लिए भी है। चाहे हम गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हों या जिंदगी के मैदान में कोई व्यापार चला रहे हों, फेयर प्ले यानी ईमानदारी से खेलना हर जगह जरूरी है। नियमों का सम्मान करना, सामने वाले को बराबरी का मौका देना और हार को भी मुस्कुराकर स्वीकार करना, यही तो असली खिलाड़ी की पहचान है। तो चलिए श्रोताओं, आज इस विश्व निष्पक्ष खेल दिवस पर हम सभी मिलकर ये वादा करते हैं कि हम खेलेंगे तो दिल से खेलेंगे और सच्चा खेलेंगे।

कार्यक्रम सुप्रभात में श्रोताओं, अब हम बात करेंगे नीलम संजीव रेड्डी की जयंती के बारे में। श्रोताओं, आज नीलम संजीव रेड्डी जी की जयंती है। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। आज ही के दिन 1913 को इनका जन्म हुआ था। उन्होंने 1977 से लेकर 1982 तक भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वे एक ऐसे राजनेता थे श्रोताओं, जो सिर्फ 25 साल की उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और देश की आजादी के लिए कई बार वे जेल भी गए। क्या आप जानते हैं श्रोताओं कि उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो भारतीय इतिहास में आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। जी हाँ श्रोताओं, नीलम संजीव रेड्डी भारत के अब तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, यानी कि उनके मुकाबले में कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ। ये इस बात का सबूत है कि उनका सम्मान हर राजनीतिक दल और विचारधारा के लोग करते थे। लेकिन इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद भी उनकी सादगी देखने लायक थी। जब वे राष्ट्रपति बने तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन से वैभव को छोड़कर एक सादगी में रहना पसंद किया। अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा देश के विकास के लिए छोड़ दिया। वे सही मायनों में जन राष्ट्रपति थे। श्रोताओं, 1 जून 1996 को ये महान नेता हमसे हमेशा के लिए दूर चले गए, लेकिन उनकी ईमानदारी, सादगी और देश प्रेम की विरासत आज भी हमें प्रेरणा देती है।

श्रोतो, आज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुण्यतिथि भी है। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार, निबंधकार और आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आज पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। आज के दिन 1979 को इनका निधन हुआ था। आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास और आलोचना के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है, जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा और हिंदी साहित्य की भूमिका है। 1957 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। श्रोतो, कार्यक्रम सुप्रभात में अब वक्त है एक और प्यारा सा गीत सुनने का, और गीत के बाद फिर से लौटेंगे कुछ और जानकारियों के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम में रमणीक स्थल के अंतर्गत आज आपको लिए चलते हैं पांगी घाटी की ओर। पांगी घाटी श्रोताओं, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित एक बेहद दुर्गम, रहस्यमय और खूबसूरत क्षेत्र है। ये जांस्कर और पीर पंजाल पर्वतमाला के बीच चंद्रभागा नदी की घाटी में बसी हुई है। ये घाटी अपनी रोमांचक सड़कों, साहसिक ट्रैकिंग मार्गों और प्राचीन जनजातीय संस्कृति के लिए जानी जाती है। ये घाटी ज्यादातर समय बर्फ के साथ ढकी रहती है। यहाँ का परिदृश्य बेहद मनमोहक और अनछुआ सा है। यहाँ का किलाड़ और किश्तवाड़ मार्ग सबसे अधिक प्रचलित है।

कार्यक्रम में पर्यावरण के आज के संक में अब आपके साथ जानकारी साझा करेंगे गौरैया पक्षी के बारे में। गौरैया पक्षी एक छोटा भूरे रंग का पक्षी है जिसकी चोंच मजबूत और छोटी होती है, जिसका उपयोग वह बीज खाने और कभी कभी मेवे तोड़ने के लिए भी करता है। गौरैया पक्षी विश्व के सभी महाद्वीपों में व्यापक रूप से पाया जाता है। गौरैया की सबसे आम प्रजाति घरेलू गौरैया है। गौरैया की पहचान उसके गले के पास काले धब्बे से होती है। 14 से 16 सेंटीमीटर लंबी ये चिड़िया मनुष्य के बनाए हुए घरों के आसपास रहना पसंद करती है। इसे हर तरह की जलवायु पसंद है। भारतीय पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये चिड़िया जिस भी घर में या आंगन में रहती है वहां सुख और शांति बनी रहती है। तो ये थी जानकारी गौरैया पक्षी के बारे में, और अब कार्यक्रम में चलते चलते आपको सुनवा रहे हैं एक और गीत।

तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सुप्रभात। सुबह के 7:40 हुए हैं। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम शुभ प्याग। कार्यक्रम शुभ प्याग में श्रोताओं, सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं अमर ठाकुर का गाया ये लोकगीत।

खड़ी उठ खड़ी मिंजो चाह बनाई दे हो, खड़ी उठ खड़ी मिंजो चाह बनाई दे, खंड दूध।

0: भाई धमाका आ गया है। अब घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू। पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
1: तो इंतजार कैसा, दिस में ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। TNC अप्लाई।
2: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
3: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.
5: कार्यक्रम शुभ प्याग इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

कश्मीरी राम और साथियों के गाए इसी लोकगीत के साथ श्रोताओं आज का शुभ प्याग कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:55 हुए हैं। अब सुनिए ये देशभक्ति गीत।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
2: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
3: Recognizing the ambitious
4: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अनुसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
3: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
5: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
6: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहाँ उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
9: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक

0: और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
2: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को 1 महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगा कर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत। सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें। जवाब में तेहरान ने भी भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है, नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में RG कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर $100 billion इन्वेस्टमेंट एंड 1 million जॉब्स अंडर इंडिया EFTA एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at 3rd India-Nordic summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RG Corps Medical College Sandeep Ghosh in financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under and the consequent creation of 1 million jobs in India.
4: एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 billion इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है, और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, ये हमारी गारंटी है।
0: Mr. Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and clean energy.
4: 2030 तक हमने 500 gigawatt clean energy और 5 million ton green hydrogen produce करने का target रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: The summit was also attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business and research communities.
5: Early in a gesture towards closer relations, Prime Minister Modi was awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. On Prime Minister's visit to Norway, Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said that India welcomes the

0: किस रो तोड़ी तोड़ी चाले, क्या लगी करना तू, छतरुआ तो खोल। हाय दिखता से कितनी भारी गर्मी है। हे सूर्य देवता, अपनी ब्राइटनेस तक कटाई दे तू, दिक्कत से आखी नहीं खुला दिया न, कने एक छतरी नहीं खोला दी है, केसरो
1: अखी नहीं खुलाई है ना, तो अपना छतरु ले ओ करा। मैडम जी, दुवे ये चीजा पर एड्डा भरोसा नहीं रखना, ए छतरु मेरे साइज दा ही है, दुवा माणू नो एडजस्टमेंट, ठीक है ना, गा पचाओ तू कने गो क्वालुए।
0: एक दे छतरु लंदे ते तेरा सिर भी नहीं टको आदा इस च रणा इपरा, मैं अपने चादर ने ढकी लेंगी अपने सिरे, तोड़ी तोड़ी कर छोड़, चल छोड़। आहा बाप रे, ओ मिये साब नहीं आवा था कने, सा चढ़ी है सा फुली है मिये,
1: गो गो तू।
0: मिये घर अंदर कितनी भारी गर्मी लगा दी कने, बाहर भी कितनी भारी गर्मी है मिये, क्या करना, चल तोड़े चल, ट्याले हेठ पैंदे ने पिपले दे ट्याले हेठ।
1: मुझे तो लगा था हम ये जड़ी सारी हुआ ना, पता नहीं कुतू दी कठरुई क्यों आदि कने मेरी है इक्का ने चुई आदि, मैं बोलियो आज मेरा पटाका हो जाना। हाय बो,
0: जिस हिसाबे गर्मी पवा दी ना, पटाका तो तेरा जरूर होना है। मैं तो मी पानी की बोतल भी रखी सौगी, पर छोड़ चल उठी तक,
1: चल चल
0: चल। ओ ओड़ी दिख दिख, ओ दूर, ओ एक कौन है कौन
1: तेरिया तखी नहीं खुलाई है धुप्पा च, हूं क्या सुजा दा तीजो,
0: अड़िए कोई सुजा दा है, ओ दिख ओ पर कोई आवा दा नहीं है, दिख ओ दिख केसरो सुजा दा है कुछ क्यों, दिख लाल रंगे सूटे पहनी के कोई कोई आवा दी है, दिख
1: सुजा दी ओ मी बड़े परी सितारे लस्क मस्क लगी है सूटे दी, ओ खड़िया धुप्पा दे दे कपड़े लाए ओ परमात्मा।
0: हे भगवान, पर ये मी लाल रंग था तिहयो प्रिय है ना, तिहयो हाड़ी सहेली आती है बड़ा पारी पसंद मिये लाल रंग, करे दिख ओ चोड़ा भी चुके आ, कौन लगा दी सही।
1: ओ इक नहीं है मिये, दो चार चोले लटकायो कने तिन्ना का यो ना करे दे कम्मा छड़ी करिया, जाने बड़ा कौन होगा ए
0: कौन, अड़िए दिख सही है चलियो मिये दो तीन चोले चुकी के दिख सही है।
1: ओ मिये शांति दी नौकरी तो नहीं लगी यही
0: है, ताई मिये लाल रंगे ने सूटे पहनी के चली होंगी शुभ है।
1: ओ बच्ची चंपा, मी हाड़ी शांति दी नौकरी तो नहीं लगी ट्रेन च,
0: हाँ मी ओ ही सकदा है ना, ताई लाल सूट लाया होगा तिसा ना,
1: ओ जिस हिसाबे दा ना समान चुके से पक्का ना ट्रेन दी नौकरी मिली है।
0: रुक रुक आना दे, नेड़े आना दे, पूछ दिया ना कुतां चलियो, पर ये तुप्पा परे लाल सूट लाया, लाल ही बैग चक्के, ओ मी चपला में लाल ही पहननी है सा, लालो लाल लाल परी बनी के चलियो, पूछ दिया ना
1: खड़िया तुप्पा, ये खरा फैशन कड्डे इन्ना, जिसिये नी भी चुमड़ नहीं होए तिसिये भी चुमड़ी आनी। बह बह तू न्याली सयो।

0: शांति है ये। ओ चंपा दिख।
1: ओ मैं दिखा दिए मैं कालकणी थी जो ए ही बोला दिए कि ए शांति है यह दा प्रिय रंग लाल है कने प्रिय सहेलियां असा ही हन इसा जाना के ता साड़े के औदी होनी।
0: दिमाग खराब तेरा चो चो चोले लेके हलोना। ओ शांति रुक रुक चलने को तो जनाब चो चो चोले चुकी कने दिमाग के दिख तो अपने खड़िया दोपहरा एडिया तुप्पा लाल गलाला सूट। ओ हो तेरे तक क्या कहने मिये शांति ये
1: एक नाथ नी बाकी सब गहने शांति है।
0: दीदी कई कसर रखी ले से भी पाए होनी ही मिये
2: कई निक्की साए बकी है तो हाँ है मैं पूछे तो अंजोते कि खड़ी है दोपहरा तो हाँ एथू पिपले हेठ क्या करा दिया जान दिए फिर तो कोई मानू टोकना ही होंदा ना कने मेरे लाल सूटे ने तो हाँ बड़ा ओल अपू क्या नहीं सियाई लेंदी हैं ला तो हाँ भी लाल सूटे मेरी ठुक तुझो क्या दा दुख।
1: तेरा सूट तेरी ठुक आहा कुछ नहीं बोलिया आहा तम ये यही बोला दिए हियां कि तेरा प्रिय रंग है
0: तो पचड़ी यही होई सदे सरे हो
2: मिंजो बड़ी गल्ला बना दिया कि शांति तू पचकता है चलियो तू हाँ कता चलिए तू पच तो अंजो नहीं खड़ा दोपहर
0: मिये तो हाँ तेरे हैं ये चोले नहीं अन पकड़े ऐ दिख पला खाली बैठी हैं माकड़ियां ने लेंगे खाने हो चोले नहीं लेंदे हाँ चुक्की करी
1: कने मिये अंदर बड़ी भारी गर्मी दिख तो मिये टेम्परेचर क्या करना अंदर तो मिये इतनी गर्मी लगा यहाँ सोचे बाहर बैंदिया ने हांजो क्या पता हा तू मिली बहन आया उठी बार
2: तो मैं भी सही बोला दी दिखा टेम्परेचर कितना कितना गो याद आ कुनी रहना है थू इतनी भरी गर्मी मैं ता बनने अपने चोले चली पी मैं प्योक्याल ठंडे हवा फक्की के ओड़ी में उठू पर काम बनना पिछे कने टोक टकाए तो हाँ पहले करनी पता नहीं उन गां भी बस मिलनी कि छुट्टी आनी कि पता नहीं गां भी दे दी तुप्पा ने पिया होना
0: मिये शांति ये फोन करी के जांदी गुस्से ये मारी तू सारे सामान ने पैक करी ले आई आटी के तिजो फिंड हुए दे पापे करे नहीं बढ़ना दिता पेरी को तू जाऊंगी शांति ये पाने मतला मिये गल के ही और हो ना कने ले दे मारी ते गर्मी है पर सारे मुल्क दे दे गर्मी है पेयो तो सारी दुनिया चोले चुक्की के नठा दी नहीं है तेरे हैं गल कुछ और ही है सब पता नहीं तू कह नहीं दसा दी बे बे तू इथू
2: ओहो दिमाके मत खराब कर गल कुछ नहीं है गल क्या होनी कने तुझो ते क्या डरना मैं हाँ देखने इतनी भरी गर्मी में जालू दी ब्याई के लंदी हो ना पहली बारी दिखी है नसना नहीं इथू ते क्या करना
0: तू कि जनानी मिये अपू ने ठियाई करे बेचारे फिंडू में छड़े आई फिंडू दे पापे छड़े आई तू
2: ना ना जरा ध्यान ने गला नसी के नहीं मैं चलियो नस दी मेरी जुत्ती ब्याई के लंदियो पूरी गृहस्थी संभाली मैं हैं उन मैं इस छड़ी के नहीं नसी के लगी जाना मैं तो गर्मी कटना चली पियो पियो क्यों कने फिंडू फिंडू रहेंगा ना ती नाली दादू तिसदा दिल नहीं लगदा तिसदे बगैर।
3: ओ चंपा रही दे ना लगदे अपने माकड़ मट है दिख वाला किन्ने ना मुड़क मुड़क लाई खाने सुन मेरी गल ए नी ये शांति छपा दी है के ही ए नी लगी करे ते ना ठड़ा गल कुछ और ही है बैठ इसे बैठाड़ मिए पानी पूनी पिया दी है कने खरबूजा खवा दी है इसे ओ पाया मैं झोलुए च काटी सी यो कने फिर पूछ दी है इसा ते कि होया क्या वे कायो एडी भड़की मरी ओए चली कई पे ही सब कैसी छड़ी सनाई रखी दे संबे कट कने चोले च खरबूजे।

0: शांति, ठंडा पानी पी के करे ठंडा तरबूज खाई के पई तीजो ठंड की नी पई ना। पर दिख मिये सोचने वाली गल तो ये है कि इतनी गर्मी ओ आदी के है, पहले कदी नहीं हुई मिये इतनी गर्मी, कदी नहीं हुई 40 डिग्री टेम्परेचर था मिये इतनी हो यादा पहाड़ा पर ही हो यादा। बाहर लोग क्या करा दे होंगे मिये, किन जिया दे होंगे, आए तो फिर भी आले थोड़े जे रुख डाल आनी आन है ना, ये दिख पिपले की छाव है इतनी हाँ बैठी आ दी, पर कह पवा दी इतनी गर्मी, ये तो तू दस,
1: तू दसना लगी हो कि पूछना लगी हो।

0: इतना नुकसान नहीं कितने इतने रुख बूटे नहीं खाते हो ना ही तीन टुकियो इतने मी एक दो तमन तेरे खेते दे टुकियोंगे एक अद्धा शांति दे खेते दे खाई लेऊंगा मी इससे ज्यादा नुकसान नहीं कितने तीनी हाँ तिस पर इल्जाम मत लगांदी गल कुछ और है
1: ए नुकसान होया मी ये विकास दे कारण
0: अच्छा विकास दे कारण होया बच्चू तीस जो पता लग गया ना तो तू नहीं बची जींदी
2: ओमी केसरो तू नहीं छड़नी तिन्नी फिर दिखी ले आने अगे बड़े भरी लोग विकास से जड़े हो न बोला दे अपनी मनमानी करता है अपनी मनमानी कने एक गलत इसने करने पुज्जी तू नहीं रही कुसी कम्मे दी
1: ओमी ये शांति ये मुंड तुहाड़ा ठोरिया कैस गला दिए तुसा आम बड़ो चाचिया दा पोतरू विकास नहीं मिये साड़ा विकास अपना विकास इस देशे दा विकास हाड़े ग्राएं दा विकास जेड़ा होआ दा ना तिदिया बजन है बड़ी भारी गर्मी होआ दी मिये दिख पला हा हा सूरज तइया लगा धरती लो होआ दा रोजे दा रोज
2: इया बोलना ता देशे दा विकास मैं सोचा हा दा अपना विकास तमियो देशे दा विकास भी ता जरूरी है जिया की आं देथु विकास बड़ा जरूरी ती तेथु देशे दा विकास भी ता जरूरी है तिस बात जी काम की चलना
1: कम चलना मिये कम कह नहीं चलना पर दे दिया मारा पोवाइयो उन है मुल्क रुखां दे रुख बड़ी ते करां दे कर डाई ते खड्डा नालू बंद करी ते बड़िया बड़िया जड़िया नदियां सह बंद करी तिया ते मिये इस विकासे दा क्या करना है कुतू इसी चुक्की के रखिए
0: आहो मिये बड़िया बड़िया सुरंगा बनाई तिया बड़े बड़े पहाड़ कट्टी कट्टी करे सड़का बनाई तिया कितना विकास होया दिख कितना विकास होया
2: ना विकास होने ते सांजो ही तालाब होया ना फिर इस नुकसान क्या दा
0: ओ मिये तिजो पता ही है हर सिक्के दे दो पहलू होंदे खरा भी होंदा बुरा भी होंदा हुन इस खरे कन्ने कन्ने थोड़ा जे बुरा भी तो होइया लखा रुख बढ़ोइए हाँ पर ये है कि इना दी भरपाई तो करना पौनी है एक रुख बढ़िया तो दस लाना पौने न है ना कन ए काम को नहीं करना है
1: मैं तो बतेरा करा दी मिये पर तू कुसी पाहे रुखा तैयार होना दे ता तो मेरे लाने दा फायदा होए जान निकली आंदी मेरी रुखा लाई लाई
0: तो मैं नहीं कर दी नुकसान छेलू मिये बेचारा थोड़ा जिया नहीं है कदी कदाई चली आंदा उस पास से हो पर क्या करना कोई गल नहीं शांति तू लाई दे अठ दस रुख
2: मी मिंजल तो जरा टाइम नहीं होंदा कालू लाने रुख बुट मैं तो नचोले चुकी की चली है पेयो
0: ओ ना ना ना ना ना ना शांति जाना नहीं है बिल्कुल नहीं जाना है इन्हें रुखा लाश तो हाँ कर लेंगे ना पर तेरे गुस्से दा लाज कितने बगैर तो तिचे जाना नहीं देना न दस ओ या क्या है ये गर्मी दा तो बहाना है
2: ओना क्या मिये दिखना गर्मी धुप्पा इतने सिर तालू तची आदा कने फेंडुए बापे मिये एक भी आइसक्रीम नहीं खुआई है इतना भी आसरा नहीं है इन्हें दा कि 20 रुपये दी आइसक्रीम लाई के खुआई न बस सही गल होई रोजे दी काला आइसक्रीम पिछो रोजे दी काला हुन मैं घर छड्डी के चली है पेयो मैं जाना प्योकिया ने गर्मी में तिथु ही कट्टी के आनिया न
1: खरा किता तू भलीए काला मकाया आई बड़ा अच्छा किता तै पर ए जड़िया गर्मियां बध आईया ना रोजियां रोज ए जड़ी समस्या तैयार होआ दी बड्डी ते बड्डी बना दी रोजे रोज इसा दा भी कोई ना कोई हल तोपना पौना रुख बूटे तो सांजो लाना ही पौने पर इस दे कन्ने कन्ने और भी बड़े काम मन मिये शांति ये सह हाई करना पौने चल चल शांति ये इस गुस्से तू थूक अपने परां पर प्राण दे ये जाई के थूक क्या हाँ इथु मत थूकींदी तू हाड़ा टक्के ओ अंबा खाना बैठी हुआ कालू दी कने मिंजे नहीं लगा जे मिंजे तरबूजे दा एक मिकरू भी मिली आंगा बैठी पिट्ठी घेरी करी है इन्ना क्या समझाने है ना मैं तो गला दी शांति ये जड़े पुराने हाड़े पानिये दे आन ना ए जियां ए बोड़ियां होइयां कुम्मे होइए फिरी और जड़े हाड़े जल स्रोत है ना मिये अगर इन हाँ टाइम टू टाइम साफ करदे रहेंगे तो दे दई घड़िया पानी तो बरती सकदे है ना कई पानी ये नियालपा बेही रहना तीन चार चार दिन जड़ीए पानी नहीं होवा दे है कि क्या गलांदी तू कढ़गी टाइम करिए फिरी साफ सफाइया
2: मिंजो नहीं पता मैं ते तू ते चली पई हो इना रोजे रोजे ते रोले ते ते ने चोड़ूं चुकी के मैं ते चली पई
1: हाँ चढ़ी है तेरा गुस्सा अल्ली भी शांत नहीं होया मी ये शांति है घरे च तू तू मैं चली हो रहंदी दो पांडे होन ते जड़ी आवाज जरूर होंदी ते इस गल्ले क्या करना पे घरे छड्डी चली पौना चोले चुकी चली पौना कने आइसक्रीम दी क्या गल गलाई ते

0: तेरे ले है ले तो बड़ा कटोरा पर तिसियो दूध देना पा चीनी पा मेवा कने ला तिसियो फ्रिज च कने खा तू आइसक्रीम मा रज्जी के खा आइसक्रीम मा कने जल्लू तेरा इया परुयांगा ना तो थोड़ी थोड़ी हाहें भी खवाई दे कने ना राखी ना चोले चाले पचा ओ चल पिपले पचा बाँव है साफ करे उन्दे से मिये पुन कमाए उन्दे रुसी के कहे तू लगी अपने कर्मा बगाड़ना।
1: हाँ ये तो मैं सोचे ही नहीं अन्ये मैं फिनुए पापे पैरा बंदी आ देही और मैं बनानी बढ़िया आइसक्रीम मुझे सिखाया तू बनांदे की न रोज खा करनी है उन नहीं करने मैं छंदे मिनती इना दी चल तू चल गाय हो
0: तीड़ी से भी जड़ी बैठी पचा खाना।
2: रुक रुक थोड़ा जे रह गया इस जो मुकाना दे इस जो खाना दे इस कम में मुकाना दे फिर आई मैं भी बॉडी दी सफाई करना जड़िए लून ही बड़ा स्वाद दिल करा दा चट्टी चट्टी के खाई लू मुकाई दू करी नहीं काली पियो चल चल आई आई
0: चल वो चल चल चंपा चल।

अभी आप सुन रहे थे पहाड़ी हास्य नाटक नोखे लोग नोखियां गल्लां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

श्रोतो, भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में चलिए थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं, अपने दिल को थोड़ा आराम देते हैं और खुद को सौंप देते हैं संगीत के उस रंग में जो सीधे खुदा से जोड़ता है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं रूहानियत के एक ऐसे सफर पर जहां पर लफ्ज कम और एहसास ज्यादा होंगे। कहते हैं जब आवाज रूह से निकलती है तो सीधे दिल में उतर जाती है। आज का हमारा ये खास कार्यक्रम उन्हीं गानों के नाम है जो सिर्फ कानों को नहीं बल्कि हमारी आत्मा को छू जाते हैं। तो थाम लीजिए अपने दिल को, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं रूहानियत से जुड़े फिल्मी गीतों का ये सफर अब से लेकर ठीक 10 बजे तक।

दोस्तों कहते हैं कि जब प्यार की हदें ख़त्म होती हैं तो वहाँ से इबादत शुरू होती है, और जब कोई अपनी मोहब्बत को दुनिया की नज़रों से नहीं बल्कि रूह की गहराई से देखता है तो वो सिर्फ इश्क नहीं रहता, वो सूफियाना हो जाता है।

दोस्तों, इस गाने के माध्यम से आपको सीधे लेकर चलते हैं उस दौर में जहां मोहब्बत खतों में होती थी और मुलाकातें खिड़कियों से होती थी। साल 2005 में एक ऐसी फिल्म आई थी, परिणीता। जितनी खूबसूरत ये फिल्म थी, उतना ही जादुई था इसका संगीत।

चारों के बाद भी हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 9:19 हुए हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव। और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होगा मतदान। प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस व भाजपा अपनी अपनी जीत के कर रहे दावे। प्रदेश हाईकोर्ट ने ईंधन और सरकारी खर्च बचाने के लिए लिया अहम फैसला। 50% कर्मचारी सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवारों के लिए हो रही कारगर साबित। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ। मौसम विभाग ने मैदानी क्षेत्रों में आज लू चलने का येलो अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। सभी उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी प्राथमिकताएं उनके सामने रखकर वोट मांग रहे हैं। मतदान 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होगा। इस बीच पंचायती राज चुनाव के सफल और निष्पक्ष संचालन के लिए चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान मतदान प्रक्रिया, मतदान सामग्री प्रबंधन और मतदान केंद्रों पर पालन किए जाने वाले नियमों की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही चुनाव कर्मियों को मतपेटी के उपयोग और चुनाव प्रक्रिया का अभ्यास भी करवाया जा रहा है। प्रदेश में 47 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस व भाजपा दोनों ही प्रमुख दल इन चुनावों में अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
1: मंडी जिला के शहरी निकाय चुनावों में इस बार हिमाचल की राजनीति में बड़ा संदेश दिया है। भाजपा के मजबूत गढ़ माने जाने वाले मंडी में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के बेहतर प्रदर्शन ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। सबसे बड़ा झटका भाजपा को नेरचौक में लगा, जहां कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने एक तरफा जीत दर्ज करते हुए 9 में से 8 वार्ड अपने नाम किए। वहीं सुंदरनगर में भाजपा ने जोरदार वापसी करते हुए 9 सीटों पर जीत हासिल कर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। जिले के 6 शहरी निकायों में कुल 48 वार्डो में कांग्रेस समर्थित 23, भाजपा समर्थित 19 और 6 निर्दलीय उम्मीदवार विजय रहे हैं। करसोग और रिवालसर में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई, जबकि जोगिंदरनगर और सुंदरनगर में भाजपा पक्ष में रहे। अब नजर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों पर है, जहां निर्दलीय पार्षद सत्ता की चाबी बन सकते हैं। उधर पूरे प्रदेश की नजरें अब 31 मई को आने वाले नगर निगम चुनाव परिणामों पर टिक गई हैं। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ईंधन और सरकारी खर्च बचाने के लिए अहम फैसला लिया है। अब हाईकोर्ट के न्यायाधीश दफ्तर आने जाने के लिए कारपूलिंग करेंगे और इसके साथ ही 50% कर्मचारी सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
2: केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी कारपूलिंग करेंगे, यानी एक ही गाड़ी में कई न्यायाधीश दफ्तर आएंगे ताकि पेट्रोल की खपत कम हो सके। साथ ही हाईकोर्ट के 50% कर्मचारियों को सप्ताह में अधिकतम 2 दिन घर से काम करने की सुविधा दी गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया ने इस व्यवस्था को तुरंत लागू करने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों के बाद रजिस्ट्रार जनरल की ओर से आधिकारिक सर्कुलर भी जारी किया गया है। सर्कुलर के अनुसार बढ़ते खर्चों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है। इसके तहत रजिस्ट्री की प्रत्येक शाखा या सेक्शन का 50% स्टाफ हफ्ते में अधिकतम 2 दिन घर से काम करेगा। कामकाज प्रभावित ना हो इसके लिए बाकी का 50% स्टाफ ऑफिस में मौजूद रहेगा। रजिस्ट्रार को सप्ताह शुरू होने से पहले साप्ताहिक रोस्टर तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक गुणवत्ता और अनुशासन बनाए रखने के लिए सभी सरकारी स्कूलों को हर कक्षा में न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की शिक्षा वार्षिक परिणामों में सुधार करना है। जिन विद्यार्थियों की शारीरिक उपस्थिति न्यूनतम 75% नहीं होगी, उन्हें वार्षिक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर महीने कम उपस्थिति वाले छात्रों की सूची नोटिस बोर्ड पर लगाएं और उनके अभिभावकों को समय रहते चेतावनी भेजे। आदेशों की अवहेलना करने वाले स्कूलों और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवारों के लिए कारगर साबित हो रही है। इसी कड़ी में मंडी जिला के माघेल गांव के रहने वाले एक बेहद गरीब मरीज नेता सिंह के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं रही। अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी।
3: आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार के लिए अस्पताल का खर्च उठाना संभव नहीं था। ऐसे में जोनल अस्पताल मंडी में आयुष्मान मित्र ने उनका गोल्डन कार्ड बनाया, जिसके बाद उनका ऑपरेशन, दवाइयां और पूरा इलाज मुफ्त में किया गया। नेत्र सिंह अचानक हर्निया की बीमारी से पीड़ित हो गए थे, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत सर्जरी करवाने की सलाह दी। मंडी जिले में अब तक 85% से ज्यादा परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और जिले के 14 अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग अब आयुष्मान आपके द्वार अभियान के तहत दूर दराज क्षेत्रों में भी लोगों के कार्ड बना रहा है, ताकि हर जरूरतमंद तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सके। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं सरूपमा शर्मा।
0: भाजपा ने पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनावों में पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। भाजपा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन चुनावों के लिए गठित अनुशासन समिति को नालागढ़ पंजेहरा मंडल से जिला परिषद चुनाव में किसान मोर्चा, जिला महामंत्री ज्ञान ठाकुर द्वारा पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ने तथा किसान मोर्चा जिला प्रवक्ता अमित राणा के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायत प्राप्त हुई थी। भाजपा ने इन दोनों नेताओं को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने अनुशासन समिति की सिफारिश पर यह निर्णय लिया है। भाजपा ने स्पष्ट किया कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि और पार्टी विरोधी गतिविधियों को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कल रोपवे एवं तीव्र परिवहन विकास निगम की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नड्डी जीपलाइन परियोजना की प्रगति एवं विभिन्न विभागीय औपचारिकताओं को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों द्वारा परियोजना से संबंधित वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी दी गई। पठानिया ने उपायुक्त कांगड़ा को NAC प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, साथ ही संबंधित विभागों को आवश्यक NOC शीघ्र जारी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नदी जिपलाइन परियोजना में साहसिक पर्यटन को नई पहचान प्रदान करेगी और इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह परियोजना प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और अधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी मौसम साफ बना हुआ है। प्रदेश में मैदानी इलाकों सहित पहाड़ों पर भी तपिश बढ़ने लगी है। राज्यों के कई क्षेत्रों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। ऊना का अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने मैदानी जिलों कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और सिरमौर में आज लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि जनजातीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश होने की संभावना जताई है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द है, 9 शहरी निकायों में निर्दलीय तय करेंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष की कुर्सी, टिकी निगाहें। दैनिक भास्कर ने निर्विरोध चुनी गई 131 पंचायतों को राज्य सरकार देगी 25-25 लाख रुपए। दैनिक जागरण के अनुसार कुनिहार में 2 बैलेट पेपर गायब, ARO सहित 8 कर्मी चुनाव ड्यूटी से हटाए, आपदा में मौत पर मिलेंगे 10 लाख। शीर्षक दिव्य हिमाचल ने लिखा है, केंद्र सरकार बदलने जारी राहत नियमावली। मौसम से जुड़ी खबर को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है, शिमला में सीजन का सबसे गर्म दिन, ऊना में पारा 39.7 डिग्री। हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने 32 निकायों में जीत की हासिल। दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार हिमाचल बनेगा देश का पहला पोषण नीति वाला राज्य, 31 मई तक नीति तैयार करने के निर्देश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज, 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होगा मतदान। प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस व भाजपा अपनी अपनी जीत के कर रहे दावे। प्रदेश हाईकोर्ट ने ईंधन और सरकारी खर्च बचाने के लिए लिया अहम फैसला, 50% कर्मचारी सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवारों के लिए हो रही कारगर साबित। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ, मौसम विभाग ने मैदानी क्षेत्रों में आज लू चलने का येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
4: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतांजलि का शेष भाग। कार्यक्रम गीतांजलि में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सचिता। और आज के इस कार्यक्रम में हम निकले हैं सूफियाना गानों के सफर पर।

कुछ गाने ऐसे होते हैं दोस्तों जो रूह को सुकून दे जाते हैं, ऐसा ही ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। अरिजीत सिंह ने इस गीत को गाया है, पद्मावत फिल्म का ये

हजार बार संभला हूं गिर के महफिल में, मगर वो आए तो फिर डगमगा गया है दिल। साल 2011 की फिल्म मर्डर 2 से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। सईद कादरी का लिखा ये गीत है जो हर आशिक की कश्मकश को बयां करता है। अरिजीत सिंह और मोहम्मद इरफान की आवाजें हैं, आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

सुबह के 9:45 हुए हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम है गीतांजलि और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सचिता। तपती गर्मी के इस मौसम में जब सावन और बारिश की बात होती है तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। मौसम भले ही अभी गर्मी का हो लेकिन रेडियो हर मौसम को बदलने का हुनर रखता है। तो चलिए आपके कानों को थोड़ी ठंडक डालते हैं और आपको सीधे ले चलते हैं सावन के उस सुहाने महीने में जहां मोहब्बत की बूंदें बरसती हैं। राहत फतेह अली खान की मखमली और रूहानी आवाज़ में फिल्म कमांडो का ये बेहद खूबसूरत सा गीत आपको सुनवा रहे हैं।

तो श्रोताओ, इसी गीत के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अब अपनी रेडियो दोस्त सचिता को ये कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति। फिर किसी दिन इसी कार्यक्रम में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत लेकर हाजिर हैं हम और श्रोताओं, आज मैं हूं आपके साथ रीना। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म आशिकी के इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू ने। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: मई धमाका आ गया है। आप घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू। पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
1: तो इंतजार कैसा, दिस में ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। TNC अप्लाई।
2: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
3: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
2: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
3: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
2: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
4: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

नाड़ी फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण की आवाज़ों में। ये खूबसूरत सा संगीत है आनंद मिलिंद का।

AR रहमान के संगीत निर्देशन में अब आपको सुनवा रहे हैं ताल फिल्म से ये गीत। गीत के लिए आवाजें दी हैं अलका याग्निक और उदित नारायण ने। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं।

0: फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना
2: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
4: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी। छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी से ये गीत। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और अलका याग्निक।

0: जोकर।
1: कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राम तेरी गंगा मैली से ये गीत। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, संगीत रविंद्र जैन का है और गीतकार हैं हसरत जयपुरी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस लोक भजन के साथ, जिसे गाया है अशोक चौधरी ने।

0: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
1: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ, ESP, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
2: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 52,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TMC apply.
3: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
4: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
3: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
4: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
5: Nexa.
6: हिमाचली गीतों व लोकगीतों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं साजन सिकंदर को।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सर प्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं, ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
1: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।

0: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
0: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
1: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
0: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहाँ अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
1: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहाँ वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
0: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहाँ साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
1: जी,
0: और जहाँ हर समय नमी पाई जाती है, और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
1: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहाँ वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षावन तो ऐसे भी हैं जहाँ साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
0: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
1: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
0: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
1: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
0: जी,
1: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
0: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है, जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
1: जी।
0: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
1: लेकिन श्रोताओं, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षावन भूमध्य रेखा के पास ही हों। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षावन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षावन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
0: तो श्रोताओं, एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है
1: जी।
0: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए
1: जी। यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है
0: जी।
1: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते
1: जी।
0: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमलेश जी से।
1: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो
1: जी,
0: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
1: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
1: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
3: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
2: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
3: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं नहीं, मैं तो काला हूं।
5: गुब्बारे गुब्बारे,
3: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो लाल हूं।
3: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
6: नहीं, मैं तो हरी हूं।
2: बेचारा जोजो।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
7: आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
0: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic cieert.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोता और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेतीबाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: अरे इंसान की नहीं लगी।
5: अरे
3: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे
5: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो, अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
3: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
5: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
4: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
5: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
3: बड़ी आई रोकने वाली। वही करेंगे।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
2: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
2: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
6: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
5: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
6: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
7: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
6: आप तो काम करती है ना?
7: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
6: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
1: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
2: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगों के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
1: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
2: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने

0: उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
2: गौरमा,
3: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
2: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
3: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
2: गौरमा,
3: हाँ,
2: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
3: क्या?
2: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
3: अच्छा, तो ये बात है। बहनों, चलो हम सब तैयार हो जाएं।
4: बिल्कुल,
3: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
5: हाँ,
6: सब तैयार हैं।
5: किसी भी हाल में जंगल कटने
4: नहीं कटने देंगे।
2: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
0: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
7: ये है जंगल के उपकार,
8: मिट्टी पानी और बयान।
7: मिट्टी पानी और बयान,
8: जिंदा रहने के आधार।
9: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
10: दुरुक, आगे बढ़ो।
4: अरे कहां से
10: तुम इनकी बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेश की थी है, पेश की इस काम के लिए। बोलो शुरू, काट पे
4: से चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे हम।
3: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
2: नहीं लगाने देंगे।
3: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
10: हाँ, चलो उन पेड़ों को काटो। चलो,
0: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
9: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
10: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो। चलो,
0: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में यह आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
9: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम

0: से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
1: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
0: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
2: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
1: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला। दोपहर के 12 बजे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडी दोस्त सचिता। कार्यक्रम में सबसे पहले ये देशभक्ति गीत आपको सुनवा रहे हैं। सरफरोश फिल्म से ये देशभक्ति गीत हमने लिया है। आवाजें हैं रूप कुमार राठौर, सोनू निगम और साथियों की।

सैनिक भाइयों, अभी आपने फिल्म कर्मा से ये गीत सुना, कविता कृष्णमूर्ति और किशोर कुमार की आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत है जमाना दीवाना फिल्म से। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और अलका याग्निक। संगीत नदीम श्रवण का है और गीत लिखा है समीर ने।

कार्यक्रम सैनिकों के लिए इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सैनिक भाइयों, दीवाना फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू की आवाज में।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाजों में साजन फिल्म के इसी गीत के साथ सैनिक भाइयों आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अब अपनी रेडियो दोस्त सचिता को दीजिए अनुमति। जय हिंद।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम घर परिवार।

स्वागत सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम घर परिवार में। जी हाँ सखियों, आज का ये खूबसूरत अंक आप सुनेंगी अपनी रेडियो सखी रीना के साथ। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सखियों, मनोरंजन हम आपका करवाते रहते हैं और आज का अंक तो मनोरंजन से भरपूर है, गीतों की भरमार है आज, और बीच बीच में हम बातें भी आपसे करते रहेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ जिसे हमने लिया है फिल्म कुरुक्षेत्र से। सुखविंदर सिंह ने इस गीत को गाया है और इस गाने के बोल मदन पाल और सुधाकर शर्मा ने लिखे हैं।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
2: जी हाँ, सखियो, बातों और गीतों का ये कार्यक्रम रहता है घर परिवार, और बात करते हैं मौसम की। तो गर्मी का मौसम है और गर्मी अब खूब पड़ रही है ना, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है 2-3 दिनों से। और गर्मी का मौसम ऐसे क्यों, तो गर्मी तो होगी ही, लेकिन हम सभी को अपना ध्यान, अपना ख्याल रखना है। बाहर जब भी आप जाएं, वैसे तो अवॉइड करें बाहर जाने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और अगर ज़रूरी है कि आपको जाना ही पड़ेगा तो पानी की बोतल ज़रूर साथ में रखें, क्योंकि इस मौसम में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और पानी हमें खूब पीना चाहिए, ताकि अगर आपके पास बोतल है अपनी पानी की तो आप प्यास आप बुझा सकें। और साथ ही साथ घर से जब भी निकले तो छाता लेकर ज़रूर निकलें, ताकि धूप से आप बच सके और सीधा धूप के संपर्क में ना आए। जब भी घर से बाहर निकले तो अच्छी सनस्क्रीन का ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि हमारी जो स्किन है, त्वचा है, वह भी धूप के दुष्परिभावों से या दुष्परिणामों से बच सके। तो अपनी बातों को हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन गीत संगीत का भी मज़ा हम साथ साथ लेते रहेंगे। तो कुमार सानू और सारिका कपूर की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपके लिए लेकर आए हैं, चलिए साथ में सुनते हैं।

जी हाँ, मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम घर परिवार आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो सखी रीना के साथ। और सीखिए, गर्मियों के मौसम की आज हम बात कर रहे हैं, तो इस मौसम में हमारा खान पान और हमारी डाइट किस तरह की होनी चाहिए, चलिए इस पर बात करते हैं। गर्मियों के मौसम में हमें ठंडी तासीर वाली चीज़ें अपने आहार में शामिल करनी चाहिए, जो हमें अंदर से ठंडक प्रदान करें। जैसे कि हमें अपनी डाइट में दही, खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूजा शामिल करना चाहिए, और ये सभी फल जो हैं वो हमें आसानी से बाज़ार में इस मौसम में मिल जाते हैं। पानी इनमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये शरीर को अंदर से ठंडा भी रखती हैं, तो ज़रूर इन्हें अपने आहार में शामिल करें। और इसके साथ ही सखियों, इस मौसम में हल्का भोजन करें। जी हाँ, भारी भोजन या तला भुला या ज़्यादा मसालेदार खाना इस मौसम में खाने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये पेट में गर्मी और गैस का कारण बन सकता है। इसलिए इस मौसम में सादा और हल्का खाना खाएं और तंदुरुस्त रहें और गर्मियों के मौसम का मज़ा लें, जैसे हम कार्यक्रम घर परिवार का मज़ा लेते हैं खूबसूरत से गीतों के साथ। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं फिल्म जब वी मेट से ये खूबसूरत सा ट्रैक।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: खूबसूरत गीत और विज्ञापन के बाद फिर से हाजिर हैं हम कार्यक्रम घर परिवार में सखियो। और गर्मियों के मौसम की आज हम आपसे बात कर रहे हैं। और दिन में इस मौसम में कम से कम

में हमें हमेशा हल्के रंग के कपड़े जैसे सफ़ेद, हल्का नीला या कॉटन के यानी सूती कपड़े पहनने चाहिए, और गहरे रंग यानी ज़्यादा डार्क रंग के कपड़े या बहुत टाइट कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये गर्मी इनमें ज़्यादा लगती है और ये पसीना भी ज़्यादा सोखते हैं। और सखियो, अगर हम कुछ ये जैसे कि सावधानियां हम बता रहे हैं ना, और हम बरतते हैं, तो गर्मी के मौसम का मज़ा हम ले सकते हैं, जिस तरह कार्यक्रम का मज़ा लेते हैं हम गीत संगीत और मनोरंजन के साथ। तो चलिए फिर से मनोरंजन के लिए एक गीत आपके रेडियो सेट पर तैयार है। कुर्बानी फिल्म से हमने ये गीत आपके लिए लिया है, और मनहर उदास, कंचन और आनंद के मिलीजुली आवाज़ों में है ये। चलिए साथ में सुनते हैं और मिलते हैं इस गीत के बाद।

0: जी हाँ सखियो, एक बार फिर से हम अपनी बातों को जारी रखते हैं। और जब भी आप इस मौसम में बाहर निकलें तो सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर ना निकलें, और अगर निकलना ज़रूरी है तो अच्छे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें जैसा कि पहले कहा, और आँखों के लिए किसी अच्छी क्वालिटी के चश्मे का ज़रूर इस्तेमाल करें, चश्मा पहन के निकलें। और टोपी या हल्के रंग का सूती दुपट्टा भी आप सिर ढकने के लिए ले सकती हैं।
1: जरा पूछो तो मेरा इरादा।
0: और कार्यक्रम के आखिर

इसी खूबसूरत गीत के साथ सखी हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंत में। अब मुझे यानी रीना को दें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति इसी वादे के साथ कि फिर इसी कार्यक्रम में होगी आप सब सखियों से मुलाकात। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
3: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यावसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will attend the third India-Nordic summit in Oslo today, aimed at strengthening India's strategic partnership with Nordic nations in areas such as technology, renewable energy, defence, sustainability and trade. This summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in Denmark in 2022. Earlier, Prime Minister Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement.
5: EFTA countries se Bharat mein agle 15 varshon mein $100 billion investment aur 1 million jobs create karne ka lakshya hai. ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना मैं आपको विश्वास से कहता हूं ये हमारी गारंटी है.
4: India and Sweden have emphasized that cooperation will define the pathway to shared prosperity and a sustainable future at a moment of global uncertainty. In an article written by Prime Minister Narendra Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, it was highlighted that at a time of growing geopolitical uncertainty, energy insecurity and economic fragmentation, the world faces a defining choice of either retreating into narrow national approaches or strengthening partnerships. In the article published today in a national daily, both the Prime Ministers noted that as the United Nations marks its 80th anniversary, the value of international cooperation and multilateralism has become even more evident. A high-level meeting of the Central Zonal Council has started at Jagdalpur in Chhattisgarh. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah is chairing the meeting. Chief Ministers of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Uttarakhand and Chhattisgarh are participating in the 26th meeting of the Central Zonal Council. Union Home Secretary, Director of the Intelligence Bureau, Directors General of Police of the four states, along with senior police and administrative officials, are also attending the meeting. The Supreme Court today refused to recall its earlier directions that stray dogs picked up from public places must not be released back after vaccination or sterilization. A bench headed by Justice Vikram Nath dismissed pleas seeking modification of the November 2025 order and directed authorities to confine such dogs to shelters. The court cited deeply disturbing incidents of dog attacks on children, elderly persons and travellers and said the menace had reached critical public areas, including airports and residential colonies. Petrol and diesel prices have been hiked by around 90 paise per litre today, marking the second increase in less than a week. In Delhi, petrol now costs 98 rupees 64 paise per litre, while diesel is priced at 91 rupees 58 paise. The latest hike comes days after a 3 rupee per litre increase on May the 15th, the first fuel price revision in over 4 years. The rise follows a sharp surge in global crude oil prices amid the Iran conflict and disruptions in the Strait of Hormuz. Defence Minister Rajnath Singh has called on President of Vietnam Tho Lam in Hanoi and reaffirmed India's commitment to further deepen defence cooperation between the two countries. The Defence Minister said in a social media post that cooperation is a key pillar of the enhanced comprehensive strategic partnership between the two countries. He said India and Vietnam share a strong bond rooted in mutual trust, shared values and close cooperation in defence, security and regional stability. Mr. Singh also held a bilateral meeting with his Vietnamese counterpart, General Phan Van Chiang. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% in the afternoon session today, the Sensex rose 262 points to 75,577, while the Nifty added 75 points to 23,725 when reports last came in. On the sectoral front, IT, realty and utility stocks were driving the market higher. And with that, we end this news bulletin.
0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 1:10 हुए हैं, अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
6: छोटा कद में, रंग में, रूप में, यौवन में किसी भी चीज को हम नहीं देखते, हम बस इतना देखते हैं कि ये जो है वो बस हमारा अपना है और हर कोई अपना लगता है। तो चलिए हम चलते हैं उस बाली उम्र की तरफ, उस बचपन की तरफ जो छोटा सा बचपन है उसके। पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन, जवानी और वानप्रस्थ, यही जिंदगी के तीन पड़ाव हैं जब हम अपने अपनों, अपने और अपनों के साथ जीते हैं, आगे बढ़ते हैं। बचपन खेलकूद, नादानियाँ, शैतानियाँ और फिर उसके साथ किताबों की दुनिया, दुनियादारी और जिम्मेवारी की तरफ बढ़ते हैं। उनके कदम के बीच यह रिश्ता ऐसा होता है कि शुरुआत में ज्ञान और पढ़ाई उनकी एकमात्र दुनिया होती है और लेकिन उम्र के साथ, दोस्तों के साथ, करियर, जीवन साथी का आना जीवन का एक स्वाभाविक खूबसूरत पड़ाव। अक्सर जीवन में ये बदलाव बच्चे किताबों की दुनिया से निकलकर व्यवहारिक जीवन की जिम्मेदारियों की ओर आगे बढ़ते हैं। नए रिश्ते और उनके जीवन में ताजगी और एक नया नज़रिया लेकर आते हैं। यही एक ठहराव है परिवार के रूप में होती है, जहाँ हंसी, खुशी, सुकून, शांति दूरियों का संजोग बन जाता है और इसी के बीच में चलती बढ़ती जाती है जिंदगी और इसी का नाम है जीना। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है। तो जन्म से लेकर, हमारे कौश होता लिखते हैं कि जन्म से लेकर बुढ़ापे तक के जो अपने इंसान अपनों का साथ रहता है, अब वो सब बचपन फूलों सी, हंसी, संगी, साथी, सब कुछ एक धुंध

सी याद बनकर रह जाती है बाली उम्र में। किसी से नए ना लड़ जाए तो जीवन साथी को पाकर एक प्रेम से भरी दुनिया बन जाती है। जीवन का संघर्षों का नाम है और जो इसका सामना कर सके वही आगे बढ़ गया, वही सच्चा इंसान है। अपने तो अपने होते हैं। और बहुत सारे गीतों के नाम आपने लिखे जो हम नहीं पढ़ने वाले। हमारे श्रोता एक और लिखते हैं, जीवन का कालचक्र का सुंदर वर्णात्मक झांकी प्रस्तुत की गई है शैशव काल की मुस्कान। किलकारियों से गुजरते हुए अल्हड़ बाल काल से नव यौवन का जब दस्तक देता है तो जीवन का सबसे संवेदनशील मोड़ होता है। ना परिपक्वता, ना ही बचपना, ना ही यह मोड़ आगामी जीवन के लिए सही बुनियाद होती है। संयुक्त परिवार के परिवेश में समुचित बौद्धिक विकास होता है। यह फिर युवा काल विवाह से गृहस्थाश्रम की ओर कदम पड़ते हैं। आज की एकल परिवार व्यवस्था में समुचित मानसिक बाधक है। मानव संकीर्णता, तनाव और अपने आप में सिमट कर रह गया तब महसूस होता है कि जीवन की भीड़ में इकाई मात्र बनकर उम्र गुजार दी है। ऐसी कुछ व्याख्या बहुत अच्छे से करते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आपने चंद शब्दों में ही इंसान के पूरे जीवन चक्र और भावनाओं को बहुत गहराई से और खूबसूरती से पिरो दिया है। वाकई जीवन की यात्रा खूबसूरत बहती हुई नदी के समान है, जहां शैशव की निष्कलंक हंसी से लेकर किशोरावस्था के सपनों की से भरी उड़ान तक हर पड़ाव तक एक अनमोल है। संघर्ष, प्रेम, समर्पण के रेशों से बुना परिवार और परिवार के साथ वो सुकून भरी दुनिया हमारी असली दौलत। वाकई जीवन में इन्हीं अनमोल यादों और रिश्तों की एक खूबसूरत सफ़र है। जिंदगी के इस बेहतरीन सफ़र को शब्दों में पिरोने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, स्मृतियों के झरोकों से अतीत की ठंडी हवाएं चलती हैं, मन का कोना कोना किसी भीनी खुशबू से महक उठता है। यादें जीवन की वह अनमोल पूंजी है जिन्हें ना तो समय चुरा सकता है ना ही वक्त की धूल धुंधला सकती है। यह इंसान के भीतर बसा एक खूबसूरत सा संसार है जहां बीता हुआ कल हमेशा आज बनकर सांस लेता है। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे प्रश्न की तरफ और अगले गीत की तरफ। हमारा प्रश्न ये है कि एक बात बता दीजिए कि आप जो छोटे वाले थे ना, बहुत छोटे वाले, यानी मैं भी छोटी सी थी, उस समय आपने ऐसी कौन सी बदमाशी या ऐसी कौन सी शैतानी की थी जिस शैतानी के लिए या तो बहुत सारी डांट पड़ी थी या बहुत सारी पिटाई। जल्दी से बताइएगा, उस बचपन को याद कीजिए जिस बचपन में आपने बहुत शरारतें की हैं, बहुत मस्तियां की हैं, लेकिन अपने जीवन को खुल के जिया है। आइए सुनते हैं ये गीत।

मिली फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, योगेश किवोल और सचिन देव बर्मन की आवाज़ बड़ी सुंदर से संगीत के साथ में। और हमारे श्रोताओं ने, हमने प्रश्न पूछा नहीं, लेकिन क्या है ना, आपके पास इतना ज्ञान है जिसे सच में मैं कुछ कह ही नहीं सकती। हमारे विविध भारती के श्रोता बहुत ज्ञानी हैं और मैं उनके ज्ञान को प्रणाम करती हूँ। हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने लिखा, मिली ढूंढने वाला पूछता है सवाल और जवाब भी वही है, मिली। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और चलिए अब हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं बचपन को लेकर कि बचपन एक ऐसा समय होता है जब मन में कोई स्वार्थ, ईर्ष्या और भविष्य की चिंता नहीं होती। बच्चा हर पल में जीना चाहता है। इस उम्र में बच्चा जिज्ञासु होता है, नई चीज़ों को छूना, तोड़ना, फोड़ना और हर बात में सवाल पूछता है। उसका स्वभाव होता है बचपन में रोने और हंसने में कोई मिलावट नहीं होती। अगर बच्चा किसी बात पर रुठता है तो बहुत जल्दी मान भी जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये बचपन होता ही बड़ा खूबसूरत है। और हमने आपसे पूछा था कि आप भी अपनी शरारतें हमारे साथ साझा कीजिएगा, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बहुत बड़ी शरारत याद आती है जिसके लिए मम्मी की मार पड़ी थी। मैं और भैया बिना किसी को बिना बताए नदी में नहाने चले गए थे। हम दोनों ही छोटे थे और हमें ये लगता था कि इस नदी के साथ साथ हम एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएंगे। अरे बाबा रे, ऐसी बड़ी गलती हमें करनी ही नहीं चाहिए। ये तो बड़ी गलती कर दी थी तो पिटाई तो शायद बनती है, क्योंकि आपके जीवन का भी तो सवाल बनता है ना। उसके बाद हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में बड़ा भाई, जो मुझसे 2 साल बड़ा है, को कसाई बोलने पर जो गुस्सा आता था, तब मैंने विज्ञान में वायु के उपादानों को याद करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड कसाइड याद करते हुए कसाई शब्द को जोर से उसकी तरफ देखकर पढ़ने लगा। वो उस पहले समझा मैं याद कर रहा हूँ, बाद में जब वो समझा तो खूब लड़ाई हुई। ये भोलापन, ये मासूमियत और ये लड़ाइयाँ बड़ी खूबसूरत होती है। वैसे ही हमारे श्रोता लिखते हैं, मैंने तो शरारत बहुत कम की है, पर एक बार मेरी माँ सब्जी लेने गई हुई थी, मैंने लाइट के जो पुराने काले बटनों के ऑन ऑफ करने वाले जो खटके होते हैं ना, हाँ, उसमें एक तार डाल दिया था और मुझे इतनी ज़ोर से करंट लगा कि आज भी याद आती है। सच में बहुत ज़ोर से करंट लगा होगा और बड़ी तकलीफ़ भी आपको हो गई होगी। ऐसे काम करने नहीं चाहिए, भले वो बचपन हो या बड़े हो गए हों। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बात कुछ और थी। अपनी सोसाइटी के बच्चों की टोली का लीडर था। सोसाइटी में कोई छत नहीं थी जहाँ पे पतंग लेने ना गया हूँ। सच में वो क्या दिन थे, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, आइस पाइस, खोखो, धूम खेले हैं। क्या बात है, बचपन की यादें ताज़ा हुई। बहुत सही, धन्यवाद। हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और खूब मस्ती और खेल शैतानी करते थे। क्या बात है। हमारे श्रोता ने कहा कि हमारी पसंद का गीत है ये, मैंने कहा जो वो रोज़ सुन सकती हैं और कई बार इस गीत में फूलों के साथ सच में उन्हें हंसते हुए देखा गया है। सच बात है। और चलिए हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, जया की मस्ती, ये गीत माला, बहुत खूबसूरत से गीत आपको पसंद आया। हमारे श्रोता लिखते हैं, कभी ना भूलने वाले बचपन के दिन, आज भी भगवान से मानते हैं। बसंत पंचमी का दिन था और हमारे घर के पास मंदिर बन रहा था। वहीं पार्क में मैं और मेरी बहन खेल रहे थे। उसके सिर पर झूले की कील लग गई और बहुत सारा खून बहने लगा। मैं उसे लेकर मंदिर में गई और शिव जी के सामने गाने लगी, क्योंकि पिक्चर में देखा था कि गाना गाने से सब ठीक हो जाता है। चोट तो ठीक नहीं हुई, ज़्यादा बिगड़ गई घर आने पर। बहुत पिटाई हुई, बहन के सिर पर 7 टांके आए। बस वही दिन सबसे अच्छे थे। सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मैंने बहुत मस्तियाँ की। मैंने दुकान के किराएदार की साइकिल के 1.5 पहिए पर बहुत सारे छेद करके उसको पंचर कर देता था और पास ही नवनिर्मित मकान में रात में पत्थर फेंकता था। गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए था। पर ठीक है, ये बचपन की शरारत है, बचपन की शैतानियाँ हैं और ये हमारा बचपन हमारे साथ बना रहे, क्योंकि बचपन में मन कितना सच्चा और बच्चा होता है ना। बचपन में आपने शरारतें तो की हैं, कोई ऐसा काम किया जिसके लिए आपको शाबाशी मिली, आपकी पीठ ठोकी गई, वो बात भी हमारे साथ साझा कीजिए। और बताइएगा इस गीत में जो अभिनेत्री हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है, बताइएगा।

बच्चे मन के सच्चे ये गीत हम सुन रहे थे दो कलियां फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में साहिल लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। और हमने आपसे एक बहुत सरल सा प्रश्न पूछा था कि ये बताइएगा कि इसमें जो अभिनेत्री हैं वो कौन है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि दोहरी भूमिका निभाते हुए नीतू सिंह इसमें हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और हम आपसे पूछ रहे थे आपकी शरारतों के बारे में, और शरारतों के साथ हमने ये भी पूछा था कि ऐसा क्या किया कि जिसके लिए आपकी पीठ थपथपाई गई हो, तो ज़रूर से बताइएगा कहाँ कहाँ आपकी पीठ थपथपाई गई। बदमाशियाँ तो हमने कर ली, तो पीठ में पिटाई हुई, लेकिन कभी कभी वो पिटाई जो है वो बड़ी प्यार से सहलाते हुए भी आ जाती है, क्योंकि हम कुछ बढ़िया काम कराते हैं, तो वो भी साझा कीजिएगा। पर हमारे श्रोता जो हैं वो कम बदमाश नहीं रहे। पढ़ते पढ़ते मैं इस गीत के साथ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, क्योंकि आपकी शैतानियों का पुलिंदा ही इतना बड़ा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने बचपन में एक बार शैतानी की थी। मामला ऐसा था कि गणित विषय ने मुश्किल लगता था, तो एक बार मैंने होमवर्क नहीं किया, शिक्षक की डांडियाँ मार पड़ेगी इस डर से मैंने घर से स्कूल के टाइम पर निकला तो सही, लेकिन नज़दीक ही पेड़ के पास बैठ गया। करीब एक घंटे बाद माँ किसी काम से निकली तो मुझे देख लिया, पास आकर बोली तू स्कूल नहीं गया? मैं कुछ बोल नहीं पाया, हाथ घसीट कर घर ले आई। फिर सच्चाई पता चलने के बाद बहुत मार पड़ी, और उस दिन से बेवजह स्कूल कभी नहीं छोड़ी, लेकिन वो दिन याद करके आज भी हंसी आती है। अच्छा, हमारे श्रोता लिखते हैं बचपन में क्या नहीं किया, गर्मी की छुट्टियों में दादी के घर जाते थे, घर में बकरियां थीं जिन्हें हम नदी किनारे छोड़ जाते थे और वहीं नदी में नहाने लग जाते थे। मस्ती में कब टाइम निकल जाता था पता नहीं चलता था, और माँ हमें खोजते हुए आती थी, उनको देख हम लोग दौड़ लगाते थे। दीदी तो निकल जाती, मैं माँ के साथ आ जाता और जो कुटाई पड़ती थी आहा क्या मज़ा आता था। तो ये बात तो बड़े मज़ेदार होती है, और कहते हैं कि माँ की मार भी बड़ी प्यारी होती है ना, बड़ी स्वादिष्ट होती है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन मानव जीवन का सबसे खूबसूरत दौरों में से एक होता है, यह खोज और अन्वेषण का समय है। इस अवस्था में दुनिया के बारे में खोज करते हैं, बच्चे के रूप में जीवन के आनंद की संभावनाओं को अंतहीन रोमांच समझ पाते हैं, बड़े होने पर दायरा बढ़ जाता है। स्वस्थ खुशहाल बचपन का निर्माण करना महत्वपूर्ण है, बचपन मासूमियत और आश्चर्य का समय होता है, खेलना खोजबीन करना और एक बच्चा होने जैसी गतिविधियां खास होती हैं, तो क्योंकि सभी का बचपन बेफिक्री का हिस्सा है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं स्याही लगा के जनाब हीरो बन गए, क्या बात है, बहुत सारी बात। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि हम जो हैं वो शाबाशी वाला काम भी हमने किया है। पहले ज़माने में प्लास्टिक नहीं चलती थी और मुझे सिलाई का शौक़ था, तो मैंने मेरी माँ के पुराने कपड़े में एक थैला बना के दिखाया था, तो उसमें शाबाशी मिली थी और पैसे भी मिले थे। क्या बात है, आप तो तब से ही जो पुरानी चीज़ें उसका उपयोग करना जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोताओं ने बड़े प्यार से अपने बारे में लिखा है कि जो ये तकरीबन 7 साल के थे हमारे श्रोता, तो मम्मी जी के तकिए से 20 रुपये निकाले थे और पतंगी डोर खरीद कर खूब पतंग उड़ाए थे। जब चोरी का पता पिताजी को पड़ा था तो खूब पिटाई हुई थी। कड़ी दोपहर में उनके सारे कपड़े उतार कर धूप में छोड़ दिया गया था, बहुत रोए थे, और तभी उनकी दादी ने उन्हें चुप कराया था और पापा को डांट भी पड़ी थी, और ये दिन ये भूलते नहीं हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन अक्सर क्या होता है, मासूमियत भरी शरारत के लिए बहुत मार पड़ती थी, कभी शरारत की हो तब ना की हो तो भी पड़ जाती थी। हाँ, वो तो है कि जब जिसका दिल करे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है बचपन में मैंने टीचर को सर पर स्लेट मारी थी। अरे भाई, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ये गलत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में आम के बाग थे, गर्मी के दिनों में बच्चे दमा चौकड़ी करते और पेड़ों पर चढ़ जाते। इकलौता बेटा होने के कारण माँ हमेशा पेड़ पर चढ़ने से मना करती थी, क्योंकि एक लड़के का पैर 1 साल पहले गिरने से टूट गया था। मना करने के बाद भी पेड़ पर चढ़ता था, पता नहीं होता था माँ को। लेकिन एक दिन माँ खोजते हुए बाग में पहुँच गई, बच्चों ने बताया कि देखो पेड़ पर चढ़ा है। मैं नीचे उतरा, माँ ने डंडे से खूब मारा, बाद में फिर पेड़ों पर चढ़ना बंद कर दिया। हमारी एक और श्रोता लिखती है कि बचपन में शरारतों का अंबार था, पड़ोस के गुलाटी अंकल के हाथे में सब्जियां लगी थी, इसमें टमाटर बहुत लगे थे, सारे टमाटर अधपके होकर दिखाई दे रहे थे, खाने से मतलब नहीं था। अंकल उनके तरफ पिट्टू खेलने या रबड़ की बॉल ले जाने पर बहुत गुस्सा करते थे। अब उनके डांट का गुस्सा या टमाटर का लालच हम भाई बहन बगल के टमाटर से सारे टमाटर तोड़ लाए, और कुछ टमाटर हमने खाए और कुछ जो बच गए उनको हाथे में डाल दिया। कच्चे टमाटर पेट में जाकर हड़ताल कर दिए, उन्हें उल्टियाँ हुई, जब उल्टी हुई तो टमाटर तोड़ने का राज खुला। भैया को ज़्यादा लगा उल्टी होने से मैं बच गई, पर उनके हाथे में के बीच में हमारा आना जाना बंद हो गया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चीनी के डब्बे में हाथ मारना, आम के बगीचों से आम खाना, टीचर के बोर्ड

की तरफ मुड़ते ही क्लास में कागज की हवाई जहाज उड़ाना इन शैतानियों के बाद मिलने वाली डांट या सजा भी बहुत प्यारी होती थी। चाहे कितनी भी बड़ी शरारत क्यों ना हो, प्यारी सी मुस्कान और सॉरी सुनकर सब साफ हो जाता था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोसाइटी की टोली के लीडर थे और ऐसी कोई छत पर नहीं गए थे जहाँ पर पतंग नहीं गई थी। बहुत बढ़िया बात हमारे श्रोताओं ने लिखी है। तो चलिए अपनी शरारतें और शाबाशियाँ बचपन की ज़रूर लिखते जाइए। ये एक गीत और उन सभी नटखटों के नाम जो बड़े होकर बहुत बड़े बहुत विशाल बन जाते हैं।

अमर प्रेम फिल्म से यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल आर डी वर्मन के संगीत के साथ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर में 2 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक की एक सासू माँ है, एक नए मेहमान के आने की तैयारी चल रही है। जीवन का हर रंग रोज देखने के लिए मिलता है, जन्म की मासूमियत, बचपन की शरारतें, जवानी के सपने, संघर्ष की तपिश, रिश्तों की गर्माहट और अंत में सुकून ठहराव। सबसे सुंदर बात यह लगती है, जीवन किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में खुशियाँ खोजने में, किसी की फूलों जैसी हंसी, किताबों से दोस्ती, परिवार का साथ, यही तो असली दौलत है। कल जो बच्चा था आज जिम्मेदारियों के साथ खड़ा है, इसलिए हर पड़ाव को जीना संजोना जरूरी है। जिंदगी तभी सुरमई बनती है जब उसमें अपने लोग, यादें और संघर्ष और प्यार सब साथ में चलते हैं। कितनी अच्छी बात लिखी है, बचपन कली जवानी, फूल और बुढ़ापा उसके साथ फल है, इसे बचपन की हंसी, जीवन का आगोश, बुढ़ापा समझदारी, इस रूप में देखा जाता है, ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं। वह अंत में लिखते हैं कि जीवन का निचोड़ का फल है बुढ़ापा, और यही अनुभवों का कड़वा फल भूखता है, दूसरों को ज्ञान देता है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। चलिए अब हम चल रहे हैं, हमने आपसे बहुत सारी बातें करी थी और आपने भी अपनी बहुत सारी बातें लिखी हैं। हमारी एक श्रोता लिखती है कि स्कूल में लंच टाइम पर मैं और मेरे 2-3 साथी स्कूल के लिए पास ही खेत पर चले जाते थे, जहाँ पर इमली और आम के पेड़ थे, उन पर पत्थर मारते थे और फल गिरने पर उन्हें खा लेते थे। बहुत सी बार पत्थर वहाँ रहने वाले लोगों को लग जाते थे, तो इस सब में मार पड़ने के डर से हम चले जाते थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शरारत बचपन में किसने नहीं की, बागों से आम, अमरूद, इमली ये सब तोड़कर खाना आम बात थी। हमने फिल्में बचपन से छुप छुप कर बहुत देखी हैं, क्रिकेट बहुत खेले हैं। अहो क्या बात है। और हमारे एक और श्रोता बड़े प्यार से बताते हैं ये जो फिल्म के गीत के बारे में, वो लिखते हैं कि फिल्म अमर प्रेम का गीत है, लता जी की आवाज़ है, आनंद बख्शी का गीत, आर डी वर्मन का संगीत, शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया गीत है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मेरे भैया देहरादून गए थे, मैं कुछ बड़ी थी तो मैं उनके पीछे पीछे TVS चलाई, लेकिन मेरे 2 छोटे भाई बहन उनने भी ट्राई किया, गाड़ी रेस होती थी, ज़्यादा तो नहीं लगा लेकिन थोड़ा गाड़ी को नुकसान हो गया, बाद में डांट पड़ी है। बिल्कुल सही बात है, सब ने बाद में भाई ने आने के बाद सबको गाड़ी सिखाने का प्रॉमिस कर दिया। बचपन की शाबाशी याद नहीं है ऐसा हमारे श्रोता लिखते, पर शरारत ज़रूर याद है और इतनी है कि गिनवाते गिनवाते प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, बाड़े में रहते थे, वहाँ 20 किराएदार थे, उसमें बारूद की सिगड़ी, मतलब सिगड़ी पर भोजन बनाया जाता था, सिगड़ी छत पर रख दी जाती थी ताकि धुआं ना हो। हम बच्चे उस सिगड़ी में लाल मिर्च डाल दिया करते थे, जिससे पूरे बारे में मिर्ची की दुर्गंध बढ़ जाती थी, वो पूरा बारा छींक छींक के परेशान हो जाता था। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, बाग में जाना तो कच्चे आम तोड़कर नहीं खाना, पर हम कहाँ मानते थे, डंडे गुलेल से आम मार के खा भी लेते थे, जो बचता था घर ले आते थे, तब मम्मी मारती नहीं थी। कोई बात नहीं, हमारी श्रोता जो हैं कह रही हैं, रोटी बना रही हैं और कमेंट कर रही हैं, बस यही तो जीवन है, हम प्यार से हर रंग को जी लेते हैं। हमारे श्रोता बहुत खुश हैं कि उनके गीत को लिया गया। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हम अपने बचपन में 10 वर्ष की उम्र में सुंदर कांड गाया था हारमोनियम बजाकर, हमें वो दिन याद आ रहा है, और ₹50 मिले थे पुरस्कार के रूप में, 11 दिन थे और ₹50 बहुत बड़ी चीज़ होती थी तब, ऐसा हम मानते हैं। हमारी श्रोता लिखती है कि बचपन में हमारी सहेली के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, वो लिख नहीं पाती थी, हम अपना भी लिख लिया करते थे, उसका भी लिख देते थे, और दोपहर में भोजन के समय में उसे खाना भी खिलाती थी। इस टीचर ने बड़ी तारीफ करी थी, हमारी सहेली के माता पिता को भी बताया था। ऐसे ही हमारे श्रोता एक और लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया इबारत है, जिसमें निस्वार्थ लिए हुए बचपन, दूसरी ओर अट्ठास लिए हुए यौवन, और सबका निचोड़ अनुभवी जीवन की प्रौणावस्था, इस उम्र तक आते आते यादों का गुलदस्ता बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारे हमउम्र मामा जी ने मुझे चक्की में से सत्तू चोरी करवाई थी बचपन में, सुबह जब सबको पता चला तो मामा जी को तो डांट पड़ी, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो मेहमान बनकर गई थी। सही बात है, स्कूल के दिनों में गर्मियों के स्कूल में लड़कियों की अक्सर नक्सीर फूट जाती थी, एक ही लड़की को हुआ, सारी लड़कियां डरकर भाग गईं, पर मैं अपनी चचेरी बहन को देखा, ऐसे होते हैं, हम 2 सहेलियों ने मिलकर उसे ज़मीन पर लिटाया, उसकी नाक पोंछी, ठंडा पानी पिलाया और प्राथमिक उपचार किया, और स्कूल की टीचर को भी बता दिया, और बड़ी दीदी ने बड़ी पीठ थपथपाई थी आपकी। हमारी श्रोता लिखते हैं, गाय माता के बछड़े को खोल देते थे सुबह सुबह, दूध खाली कर पी जाता था तो पिताजी बहुत मारते थे, और खोलते इसलिए थे क्योंकि माँ बेटे दोनों रो रहे होते थे। हमारी कौशलता लिखती हैं कि एक बात और, हम अपनी सिर पर चुनी रख के आंखें बंद करके मस्ती में बैठ जाते, चुन्नी रख के

बैठ जाते थे और सबसे सब किसे कहते थे, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रार्थना का तो अर्थ पता ही नहीं था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मेरा दोस्त और मैं रात को मेन मार्केट में रोड के दोनों तरफ खड़े हो जाते थे, हाँ, और एक रस्सी रखते थे, कोई निकलता था तो दोनों दोस्त तो रस्सी को ऊपर कर देते थे, राहें गिर गिर जाते थे, इस चक्कर में कई बार मार भी पड़े। ये तो गलत बात है। हमारे एक श्रोता सातवीं कक्षा में प्रथम आए थे और उन्हें शाबाशी मिली थी 1974 में। हम आपको आज भी शाबाशी देते हैं उस बात के लिए। बचपन में नवरात्रि में 9 दिन के सजाने का काम उनकी टोली करती थी, बहुत बढ़िया बात। हमारी शरारतें ऐसी थी, हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब मम्मी कहीं जाती थी तो कभी जीन्स टी शर्ट भाई की पहनकर और अपनी सहेली को साड़ी और लहंगा पहनाकर डांस करते थे, फिल्मों को देखकर, फिर कैप लगाकर क्रिकेट खेलना घर के अंदर बिना नुकसान किया। बहुत अच्छे बच्चे थे। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी। अब चलते हैं हम उस ओर जो एक अलग दौर है, वो दौर में आपने जो विषय पढ़े हैं उन विषयों में से आपका पसंदीदा विषय कौन था, जल्दी से बताइएगा। आपके पसंदीदा विषय को बताते हुए ये भी बता दीजिए ये गीत में आवाज़ किसकी है।

हम सुन रहे थे जख्म फिल्म का यह गीत आनंद बख्शी के बोल एवं करीम के संगीत के साथ। हमने आपसे पूछा था कि आवाज़ किसकी है, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, अलका याग्निक की आवाज़ है। और हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि आपको कौन सा विषय पसंद है, तो हमारे श्रोताओं ने अपने अपने विषयों के बारे में बताया है कि वो संभाजी, एक और श्रोता लिखते हैं स्कॉलरशिप की परीक्षा संभाजी नगर डिवीज़न से दूसरे नंबर पर पास हुई, ये बहुत प्यारा किस्सा है और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारे श्रोता को फिजिक्स मैथ्स रसायन पसंद थे और 9वीं 10वीं में उन्होंने यही विषय लिए थे। हमारे श्रोताओं का कहना है कि उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी और टीचर से वेरी गुड मिलता था। हमारे श्रोता लिखते हैं हिंदी रहा ये बिंदिया से प्रेम का सुमन याद नहीं, ये कुछ बात लिख रहे हैं और बहुत अच्छे से उस बात को बता रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्द किताब के बहुवचन को एक वचन बना दिया, कुछ उन्होंने बताया है। और इसके साथ ही वह लिखते हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि उन्हें हिंदी में बहुत अच्छी थी और आगे चलकर उन्होंने 25 देश विदेश में भ्रमण भी उन्होंने किया, ऐसा हमारे श्रोता कहते हैं। और हमारे श्रोता बताते हैं कि उन्हें डायग्राम बनाना बहुत पसंद है, इसलिए उनका सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट बायो, किसी का भूगोल बहुत पसंद है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और दूसरा पसंदीदा विषय उनको संस्कृत का विषय। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आप गाने कम सुनवा रही हैं तो क्या करें, आप इतने प्यारे संदेश भेज रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम आपको देते हैं और साथ ही अगला गीत भी बड़े प्यार से आपको सौंप देते हैं। अगला प्रश्न ये है कि मुझे इसका उत्तर सच में नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 16 बरस को ही बाली उम्र क्यों कहते हैं। बताइएगा इसका उत्तर, आपके हिसाब से क्या है इसका उत्तर, और ये बताने के साथ ये बता दीजिएगा कि इसके संगीतकार कौन है।

0: हम सुन रहे थे एक दूजे के लिए फिल्म से यह गीत, लता मंगेशकर अनूप जलोटा ने इसे गाया, आनंद बख्शी के बोल हैं। और आपसे पूछा था कि इसमें संगीतकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया कि जो इसके संगीतकार हैं वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। बिल्कुल सही उत्तर। हमने आपसे पूछा था कि 16 बरस के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आपने मुझे तो ज्ञान ही मिल गया कि 16 बरस में दोनों ओर से आपका यौवन आ रहा होता है और बचपना छूट रहा होता है, किशोरावस्था छूट रही होती है और हार्मोनल बदलाव होते हैं, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। और सौंदर्य आकर्षण जो है, निखार भी बड़ा खूबसूरत होता है ऐसा लगता है, इसलिए कवि की कल्पना 16 बरस तक पहुँचते पहुँचते जो बदलाव है ना, तो यौवन का दस्तक है, इसलिए कवि ने इस बात की कल्पना की है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई और बहुत सुंदर संदेश भेजे हैं। उसके बाद प्रेम होता है, जीवन के संघर्ष होते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ साथी बनते हैं और साथी बनने के बाद परिवार बनाते हैं, और उस परिवार के बाद जब सुख चैन से एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो शायद ये गीत हम सभी के लिए, हम सभी के पूरे परिवार के लिए बनता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत, आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम, चिक चिक बम।

आप सबके साथ ये सफर बहुत अच्छा बीता, आपके जीवन में भी ऐसे ही प्यार बना रहे, आपका जीवन मंगलमय हो, ये प्रार्थना करते हैं आज के इस कार्यक्रम के साथ सुरीला सफर में। सुरीले सफर के साथ आप सबके लिए बहुत धन्यवाद, और चलिए विदा लेते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर से। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, आप सबका जीवन मंगलमय हो।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी परदेश पर आधारित है। हम सभी परिवार के लोग सदियों से बेहतर जीवन, शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय की तलाश में अपने घर, परिवार और देश को छोड़कर परदेश जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है परदेश में अच्छा अवसर मिलेगा और मिलता भी है। आकर्षक अवसरों के द्वार खुल जाते हैं, हम अपनी रुचि के अनुसार क्षेत्र चुन सकते हैं। इसके साथ ही परदेश में जीवन की राहें आसान नहीं होती, कई सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। बाहर से सब कुछ वैभवशाली चमक दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता में परदेश का जीवन कई चुनौतियों से भरा होता है, जहाँ की भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद झेलनी पड़ती है।

क्योंकि परदेश में रहकर हम कितना भी घर बना ले, तरक्की कर ले, ऐशो आराम का जीवन बिता ले, कहलाते तो हम परदेसी ही हैं। वहीं अपने परिवार से दूरी, अपनों से दूरी, मित्र परिचितों से दूर रहना सबसे कष्टकारी होता है। कई मांगलिक कार्यक्रमों, उत्सवों, त्योहारों, खुशी और गमों के मौके पर ना पहुंच पाने का दुख हृदय को पीड़ा दे जाता है। परदेश का अकेलापन और घर की याद व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर करती रहती है। लोग तो यही उलाहना देते हैं कि परदेश जाकर भूल गया, लेकिन सच मानिए हकीकत कुछ और होती है। दौड़ भाग की जिंदगी में वापस लौटना संभव नहीं हो पाता। अगर वापस गए भी तो वहाँ सब कुछ बदला सा मिलता है।

परदेश में रोजगार और आर्थिक दबाव के तले जिंदगी पिस कर रह जाती है। किराए का घर, खर्च की अधिकता, नौकरी की अस्थिरता, वीजा संबंधी नियम और कानूनी प्रक्रियाएं तनाव बढ़ाती हैं। कई बार परदेश में योग्यता के अनुसार कार्य क्षेत्र में समझौता भी करना पड़ता है। इससे आत्मसम्मान को ठेस भी पहुंचती है। समय लगता है, मित्र भी बनते हैं, मगर कहीं ना कहीं परदेश में अकेलापन लगता ही है। वैसे तो परदेश का जीवन व्यक्ति को आत्मनिर्भर, सहनशील और मजबूत बनाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि परदेश में दिक्कतें अवश्य आती है, पर वहीं जीवन का अनुभव भी बढ़ाती हैं और इंसान को निखारती हैं।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार। और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्यूल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
3: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
2: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
4: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद हैं। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
2: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वें वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
6: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
2: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्र विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
7: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इंफॉर्मेशन कंट्रोल।
8: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
7: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
2: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @SIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
9: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
2: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
10: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहाँ हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक के वृद्धि के साथ 75,451 जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगने में।

हम सुन रहे थे ये गीत ताजमहल फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ों में, साहिल लुधियानवी के बोल और रोशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत सेहरा फिल्म से, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी के बोल और रामलाल के संगीत के साथ।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।
3: वो जब याद आए, बहुत याद आए।

0: हम सुन रहे थे पारसमणि फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। मिलती हैं धाराएं 3, विचार, स्वर और संगीत।
5: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
6: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
7: देना साथ मेरा ओ हमनवा,
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
8: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

मुझे जीने दो, इस फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी के बोल और जयदेव के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत, मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से मन्ना डे की आवाज़ होगी, शैलेंद्र के हैं बोल और सचिन देववर्मन का है संगीत। पूछो ना कैसे।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए चलते हैं सदाबहार नगमे के अंतिम गीत की ओर जो कि है हमराही फिल्म से। मुबारक बेगम मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। आज्ञा दीजिए इस गीत के साथ, आप सबका कल्याण हो, नमस्कार।

0: आते हैं दिल से दिल के तार मिला लो।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को आज खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने, रेबीज रोधी टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और रेबीज से संक्रमित या खतरनाक कुत्तों के इच्छा मृत्यु सहित कानूनी रूप से अनुमत उपाय करने का भी निर्देश दिया। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव प्रचार लगातार जारी है। सभी उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी प्राथमिकताएं उनके सामने रखकर वोट मांग रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लिए मतदान 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होगा। इस बीच पंचायती राज चुनाव के सफल और निष्पक्ष संचालन के लिए चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान मतदान प्रक्रिया, मतदान सामग्री प्रबंधन और मतदान केंद्रों पर पालन किए जाने वाले नियमों की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही चुनाव कर्मियों को मतपेटी के उपयोग और चुनाव प्रक्रिया का अभ्यास भी करवाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश मिडडे मील वर्कर यूनियन और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आंगनवाड़ी हेल्पर और मिडडे मील वर्करों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में पोलिंग पार्टियों के लिए खाना बनाने के लिए लगाने का विरोध किया है। मिडडे मील वर्कर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप कुमार और सचिव शांति ने कहा है कि मिडडे मील में अधिकतर महिलाएं खाना बनाती हैं, ऐसे में उन्हें रात 10 बजे तक पोलिंग पार्टियों को खाना बनाना संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों को वेतन मिलता है, लेकिन मिडडे मील वर्करों को इस कार्य का कोई वेतन नहीं दिया जाता। उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि पंचायत चुनावों में मिडडे मील वर्करों और आंगनवाड़ी वर्करों व हेल्परों की ड्यूटी ना लगाई जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपये है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपये और डीजल 94.08 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपये और डीजल की 96.07 रुपये दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपये और डीजल की 96.11 रुपये प्रति लीटर है। ये वृद्धि 15 मई को हुई 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के कुछ दिनों के बाद हुई है। इस बीच प्रदेश के सोलन जिला के कुछ किसानों का कहना है कि उन्हें कृषि कार्यों के लिए पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल नहीं मिल रहा है, इससे कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है।
1: पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़े, इससे हर एक चीज बढ़ेगी, सब्जी पे भी और जो मैन्युफैक्चरिंग है लोगों की, उसके ऊपर भी असर आएगा। यही है, ये खाली हो रही है।
2: खेती में उपकरणों के लिए जो हमें तेल, डीजल, पेट्रोल डलता है, पहले हम कैन ही लेके आते थे या बॉटल्स में ले जाते हैं, लेकिन अब पेट्रोल पंप से हमें नहीं दिया जा रहा है। उसमें उपकरण ही नहीं चलेंगे तो खेती कैसे, किस तरह से करेंगे? कोई पानी नहीं चलेगी, मोटर नहीं चलेंगी, ट्रैक्टर नहीं चलेंगे।
3: हाँ, ये पेट्रोल के दाम जो बढ़ गए हैं, अब एक के बाद एक दो बार बढ़ गए हैं, तो इससे बहुत ज्यादा हमें घर से निकलने से पहले भी सोचना पड़ता है। बहुत ज्यादा ये मांग करते हैं कि कम से कम हो, इतना ज्यादा इंक्रीज एक साथ ही, इतना पहले ही इतना ज्यादा हो गया है, कम हो, यही मांग करते हैं।
0: प्रदेश में तापमान में वृद्धि लगातार जारी है। तापमान बढ़ने से राज्य के मैदानी जिलों में लोगों को जोरदार गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, कुल्लू, सोलन और किन्नौर जिलों में अलग अलग स्थानों पर लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच विभाग ने कहा है कि हिमालयी क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके प्रभाव से आज से 25 मई तक राज्य के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत की उम्मीद है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
4: प्रादेशिक समाचार के बाद आइए सुनते हैं किन्नौर जिला की चिट्ठी। लेखक हैं सुमेश नेगी, वाचक स्वर है प्रभा शर्मा का।
0: जनजातीय जिला किन्नौर में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 18 से 19 वर्ष के कुल 1316 नए मतदाताओं का पंजीकरण किया गया है, जिनमें से 1696 पुरुष और 620 महिला मतदाता हैं। जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 59,156 है, जिनमें से 29,583 पुरुष और 29,573 महिला मतदाता शामिल हैं। मतदान 3 चरणों में संपन्न करवाए जाएंगे। जिले में 26 मई, 28 और 30 मई को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में मतदान होगा। कल्पा उपमंडल में प्रथम चरण के तहत कोठी, पांगी, ख्वांगी, बारंग, सापनी, बरुआ, सांगला, छितकुल व दूनी पंचायतों में मतदान करवाया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में कल्पा, थेन, पांगी, युवारंगी, पोवारी, किल्बा, शोंग, कामरू, रक्षम एवं ब्रेलंगी पंचायतें शामिल है। तीसरे चरण में रोघी, तेलंगी, शुदारंग, पुरबनी, मेबर, चांसू, थेमगारंग व बटसेरी पंचायतों में मतदान होगा। निचार उपमंडल के अंतर्गत प्रथम चरण में रूपी, छोटा कंबा, नाथपा, क्राबा, काफनू, मीरू, चंगाव, रामनी व सुंगरा पंचायतों में मतदान होगा। द्वितीय चरण में शिग्रचा, बड़ा कंबा, काचरंग, यंगपा एक, कटगांव, युला, जनकपुरी, जानी व निचार पंचायतों को शामिल किया गया है। तृतीय चरण में चोरा, तरांडा, बरी, यंगपा दो, शंगो, उरनी, पुनांग, पानवी व पौंडा पंचायतों में मतदान संपन्न होगा। इसी प्रकार पुह उपमंडल में प्रथम चरण के तहत सुमरा, नाको, हांगो, पुह, रोपा, कानम, जंगी, सिरपा व रिब्बा पंचायतों में चुनाव करवाए जाएंगे। द्वितीय चरण में शलखर, नामग्या, चूलिंग, स्पीलो, ग्याबुंग, लाबरंग, लिप्पा, अखपा एवं मोरंग पंचायतें शामिल हैं, जबकि तृतीय चरण में चांगो, लियो, डुबलिंग, नेसंग, सुन्नमठंगी, आसरंग, रारंग और चारंग पंचायतों में मतदान होगा। पंचायती राज चुनाव 2026 के तहत नामांकन जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब जिले में चुनावी तस्वीर लगभग स्पष्ट हो गई है। कई पंचायतों और वार्डो में उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं, जबकि शेष सीटों पर चुनाव होगा। जिला परिषद के 10 वार्डों के लिए कुल 49 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे, जिनमें से एक नामांकन रद्द हुआ। पिछले दिनों 18 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया, जिसके बाद अब 30 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। इसी प्रकार पंचायत समिति सदस्य पद के लिए कुल 131 नामांकन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 8 नामांकन रद्द किए गए तथा 30 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया। अब 93 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पंचायत समिति के 6 वार्ड निर्विरोध चुने गए हैं। इनमें कल्पा ब्लॉक के कामरू और किल्बा वार्डों में केवल एक एक नामांकन प्राप्त हुआ, जबकि पुह ब्लॉक में चांगो, ग्याबुंग, लियो और स्कीबा वार्डों से उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। जिला किन्नौर में क्षेत्र की समृद्ध प्राकृतिक विरासत के संरक्षण व उत्सव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीते 8 से 10 मई तक पहली बार कल्पा कंडे के गोली नामक स्थान पर किन्नौर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये उत्सव 9 मई को आयोजित होने वाले ग्लोबल बिग डे एवं हिमालयन बर्ड काउंट के साथ समन्वित रहा। इस फेस्टिवल का उद्देश्य किन्नौर व हिमालय क्षेत्र की अद्वितीय जैव विविधता को उजागर करना और स्थानीय समुदाय और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को सुदृढ़ करना है। ये आयोजन संरक्षण व सतत विकास के सिद्धांतों पर आधारित रहा और भविष्य में स्लो टूरिज्म को बढ़ावा देगा। इसके अंतर्गत 20 चयनित प्रतिभागियों को नेचर गाइड प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया, जिससे वे जैव विविधता के स्थानीय दूत बन सकें। इसके अतिरिक्त 30 विद्यार्थियों को इंटरैक्टिव एवं रोचक शिक्षण सत्रों में शामिल किया गया, जिससे उनमें प्रकृति के प्रति जागरूकता व जिज्ञासा विकसित हो। जिला किन्नौर के पुह क्षेत्र की रहने वाली रूप रश्मि साना पिछले 4 वर्षों से ढींगरी यानी आयस्टर मशरूम की खेती कर महिलाओं के लिए प्रेरणा बनकर उभरी हैं। उन्होंने बताया कि 4 साल पहले उन्होंने सोलन के चंबा घाट से मशरूम उत्पादन की प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की मशरूम खेती को देखने के बाद उन्होंने किन्नौर की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ढींगरी मशरूम की खेती को चुना। किन्नौर जिला की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
5: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 MHz पर 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
6: 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
7: तो भाई हम तो अपने श्रोताओं से कहेंगे सृजन भारती के इस जो अंक में जो प्रोग्राम होने वाला है, अगर आपकी कोई रिश्तेदार या आप कोई खुद भी हैं तो ज़रूर पहुँचे इस कार्यक्रम में, सभी का आमंत्रण है।
8: बिल्कुल, स्वागत है सभी का। और आज हम जैसे उद्यमी महिला के बारे में जानकारी देते तो आज हमने चुना है कल्पना सरोज
7: जी।
8: तो कल्पना सरोज भारत की एक प्रसिद्ध उद्योगपति, समाजसेवी और प्रेरणादायी महिला उद्यमी है। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उन्हें संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास की मिसाल भी माना जाता है।
7: कमानी ट्यूब नामक एक कंपनी है जो बंद होने के कगार पर थी सोनाली, उस समय उस कंपनी को फिर से सफल बनाने का पूरा श्रेय जो है वो कल्पना सरोज को जाता है। कल्पना सरोज का जन्म साल 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक गाँव है रोपरखेड़ा, वहाँ हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में काम करते थे और जैसा कि होता चला आ रहा है अक्सर कि बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया था और वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी परेशानियाँ उन्हें आ रही थी और उन सब कठिनाइयों का वो डट कर मुकाबला कर रही थी।
8: और फिर जैसे होता है ना कि दीपा की बहुत सारी बाधाएं आई, उसके बाद में उन्होंने मन में ठान लिया कि कुछ तो जिंदगी में कर गुजरना है और वे मुंबई चली आई। और मुंबई आने के बाद कल्पना सरोज ने एक सिलाई कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत और लगन से अपना छोटा व्यवसाय आरंभ किया। पहले सिलाई का काम किया, फिर फर्नीचर और रियल एस्टेट के क्षेत्र में कदम रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक पहचान सफल उद्यमी महिला के रूप में बना ली।
7: और कल्पना सरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि है कमानी ट्यूब्स, ये कंपनी को पुनर्जीवित करना। कंपनी आर्थिक संकट से गुजर रही थी और लगभग बंद होने की स्थिति में ही थी। कल्पना सरोज ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली, कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच एक संतुलन बनाया और अपने प्रबंधन कौशल से कंपनी को फिर से सफलता के मार्ग पर लेकर आई। वो
8: यानी कितनी बड़ी बात है ना दीपा, कि यानी किसी बंद पड़ने जा रही थी वो कंपनी और उसमें खुद जाकर और उसमें आगे बढ़ना, यानी कितना ज्यादा संघर्ष किया होगा उन्होंने।
7: सही बात है, बिल्कुल। और फिर साल 2013 में भारत सरकार ने उन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। वे कई मंचों पर प्रेरणादायक वक्ता के रूप में भी जानी जाती हैं।
8: और इसके अलावा समाज के लिए भी उन्होंने योगदान दिया है। कल्पना सरोज केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं रही बल्कि समाज सेवा और युवाओं को प्रेरित करने का कार्य भी करती है। विशेष रूप से महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। और दीपा, कल्पना सरोज का जीवन ही सिखाता है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आए, सफलता की राह में अगर बाधा है तो उससे हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास हो, मेहनत और आगे बढ़ने की इच्छा हो तो उनका जीवन संघर्ष सफलता मिली जाती है। और एक प्रेरणादायक कहानी है उनकी जो हर व्यक्ति को अपने सपने को पूरा करने की प्रेरणा देती है। तो जब हम ये सेगमेंट लेते हैं ना दीपा, तब हमें इतनी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि एक महिला अगर कुछ मन में ठान ले तो वे कर गुजरती ही है।
7: बिल्कुल, और उसके लिए कोई आपको आपकी शैक्षणिक जो
8: योग्यता
7: है उसकी भी ज़रूरत एक बार के लिए तो थोड़ी पीछे हो जाती है। फिर वो मन में जो आपका जुनून, जोश जो आपका रहता है ना, कहीं से एक आंतरिक ऊर्जा जब निकल के आती तो वो शक्ति जो है, मात्र शक्ति, पता नहीं क्या है उसमें, क्या जज्बा है कि बस वो जब करने के लिए ठान लेती है तो कर ही गुजरती है।
8: और उसमें आत्मविश्वास अगर मिल जाए साथ में तो फिर वो आगे बढ़ने से उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता।
7: बिल्कुल सही कहा। और इस बात पर अभी तो हम लेते हैं एक अंतराल और भी बातें करेंगे
8: जी।

0: देखो सोनाली, हम सुन रहे हैं ये गाना धीरे धीरे मचल, और मन एकदम ऐसा ना उसमें खो सा गया था, तुम्हें नहीं लगता?
1: बिल्कुल खो सी गई थी, इतने सुंदर इसका संगीत है और लता जी की आवाज, हा हा हा क्या कहने, बहुत सुंदर गीत।
0: बिल्कुल, और देखो ना
1: ये गाने जब... भी हमारे आँख के तारे हो जाते हैं।
0: बस मैं मन में सोच रही थी शब्द तुमने दे दिए, इसे कहते हैं प्यार, है ना दोस्तों, सही कहा या नहीं?
1: बिल्कुल सही कहा। कभी कभी ऐसा था ना, हमारे दोनों की मन की बात होती तो वो एकदम से मुंह से निकल ही जाती है,
0: और
1: दोनों के
0: मुंह से। वैसे बिल्कुल वैसा ही संदेश फिर हमारी सखियां लिख भेजती है, तो ऐसा लगता है देखो मन जब मिल जाते हैं तो शब्द भी एक हो जाते हैं, है ना। तो भाई बात हो रही थी हम आंखों का तारा, ये मुहावरे की, और बहुत सारे संदेश आए हमारे श्रोताओं और सखियों की तरफ से। तो पहला संदेश पढ़ते हैं, ये लिखा है कि बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा, बहुत प्यारा, अत्यधिक प्रिय या अति प्रिय होना इसका मतलब है। तो ज्यादातर अपनी संतान के प्रति ये कहा जाता है, चंदा है तू मेरा, सूरज है तू। ये गाना उनको लग रहा है कि ये गीत शायद बजेगा, देखते हैं भाई बजेगा या ना बजेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि गीत तो आएगा ही ना,
1: कोई ना कोई गीत तो आएगा ही। और एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, आंखों का तारा होना हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा, इसका अर्थ बहुत प्रिय होना या अत्यंत प्यारा होना, बहुत लाडला होना, और छोटा बच्चा अपने परिवार की आंखों का तारा होता है, और VBS के सारे प्रोग्राम हमारे आंखों के तारे हैं।
0: क्या बात है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, और बस कुछ इसी तरह की बात हमारे एक और श्रोता ने लिख भेजी कि जहां तक आंखों का तारा होने की बात है, विविध भारती भी हमारी आंखों का तारा है, यानी हम सभी का बड़ा प्रिय प्यारा मनोरंजन चैनल है, और आज का मंच संभाल रही हमारी दोनों बेटियों भी हमारी आंखों के तारे हैं।
1: क्या बात है,
0: तो बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं को, सखियों को, जो इतना प्रेम आपकी तरफ से मिलता है। और सच में हम मुलाकात हमारी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कहीं कोई एक जुड़ाव तो है।
1: बिल्कुल, पिछले जन्म का होगा या इसी जन्म का जुड़ाव है।
0: हाँ,
1: है ना?
0: बिल्कुल।
1: एक नाजुक सी डोर है श्रोताओं के बीच और हमारे बीच, ये हमें बहुत सारा संबल देती है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, सखी सहेली प्रोग्राम हमारी आंख का तारा है, यानी बहुत बहुत प्यारा दुलारा है, बहुत ही मनपसंद चीज़ों कहते हैं, आँख का तारा कहते हैं, और हर माँ की आँख का तारा होती है उनकी संतान, देशभक्ति क्रांतिकारियों की आँख का तारा उनका प्यारा हिंदुस्तान। क्या बात है? हमारा देश हम सभी की आँखों का तारा है।
0: और देखो होना भी चाहिए
1: जी।
0: और एक और संदेश आया है, आँखों का तारा होना इसका अर्थ है हम सभी जानते हैं कि बहुत प्यारा होना। ये मुहावरा अक्सर घर के किसी लाडले बच्चे या व्यक्ति के लिए उपयोग में लाते हैं। हम सबके जीवन में हमारी आंखों का तारा कोई ना कोई

0: तो ज़रूर होता है उसको हम ये बताएं कि तू हमारे आंखों का तारा है या हम तुझे कितना प्यार करते हैं। पहले आप मुहावरे के माध्यम से बताएं कि आप उसको प्यार जताकर बताएं बताते हैं, या ये ज़रूर कह सकती हैं कि ये मुहावरा हमारी निजी ज़िंदगी में हमारे प्यार को दर्शाने के लिए बहुत काम आता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम कभी हम जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना, नाराज़ हो जाता है तो हम उसको लाड़ दुलार में नहीं कहते, अरे तू तो मेरी आंखों का तारा है, क्यों नाराज़ हो रहा है ना।
1: ये माँ जो है ना, हर माँ के मुँह की बात है, उनके जुबान पे ये शब्द आता ही। एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ बहुत प्यारा या अत्यंत प्रिय होना है। ये मुहावरा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी का सबसे पसंदीदा और लाडला होता है। इसका अर्थ बहुत अधिक स्नेह या प्यार का पात्र होना है। वाक्य प्रयोग, हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। छोटा बेटा होने के कारण सोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है, उन्होंने उदाहरण लिख कर भेजा है। वैसे हर बच्चे जो होते हैं ना, अपनी माँ के आंख के तारे होते हैं। फिर वो छोटा बेटा हो, मझला हो, बड़ा हो, बेटा हो या बेटी हो, सारे लोग अपने माँ के आंख के तारे ही होते हैं।
0: बात तो बिल्कुल सही की कही। और अब क्या लगता है आपको, हम देखते हैं कि हमारे पसंद का जो गीत हमने निकाला हमारे श्रोताओं को वो भी पसंद आएगा, या उनकी जो लिस्ट उन्होंने बना रखी होगी छोटी सी कि शायद इस मुहावरे के बाद ये गीत बजेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी पसंद और उनकी पसंद कितनी मिलती है ना।

0: सोनाली, मैं देख रही हूँ कि इस गीत को सुनते सुनते कुछ संदेश पढ़ के आप जैसे कुछ भावनात्मक हो गए हो।
1: जी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई मेरी माँ ये गाना हमेशा गुनगुनाती थी और मैं 5 बहनों में इकलौता भाई हूँ, तो मैं अपनी मम्मी की आँख का तारा था, है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: तो जो बच्चे होते हैं ना, माँ की आँख के तारे होते हैं, फिर बेटी हो बेटा हो, पर जो हम बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हम अपनी माँ को दुखी कर देते हैं कि क्यों इस तरह से हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, या क्यों हमें हमेशा लेक्चर देते रहती हो,
0: या कुछ कोई खास चीज खाने के लिए मम्मी बोलती है ना, थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा खा लो, अब हमारा मन नहीं होता और हम बोलते हैं कितना आप बोल रही हो, नहीं खाना भाई, हम झुंझला के उनको कभी कई बार
1: गुस्सा हो जाते हैं।
0: हाँ, और कुछ कड़वे बोल भी बोल देते हैं, माँ दुखी हो जाती है, लेकिन उनकी आंखों का तारा बनने में हमारी कोई कमी नहीं होती, उनके लिए हम वैसे ही बने होते हैं,
1: वैसे ही बने होते हैं। और फिर क्या होता है कि एक वक्त के बाद हमें ऐसा लगता है अरे मैंने फालतू में माँ का दिल दुखा दिया, और हम अपराध बोध से ग्रस्त भी हो जाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: ऐसी हमारी इतनी प्यारी है, वो कहती है कि देर रात तक ना जागो, पर हम जागते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा करो ऐसे कपड़े पहनो, इस तरह के कपड़े पहनो, मम्मी डांटती है। और फिर कभी
0: और जब हाँ कुछ सालों के बाद जब हम उस पे चिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि माँ कितना सही कहती थी और हम कितना चिढ़ गए उस वक्त, और फिर वो एक मन में ना कहते हैं ना हम जैसे कि पछतावा होने लगता है।
1: और अगर माँ ना हो इस दुनिया में, हाँ, तब तो और भी बुरा लगता है ना।
0: बिल्कुल सही कहा। और बात तो तुमने बहुत गंभीर शुरू कर दी है सोनाली, लेकिन वक्त हो गया एक अंतराल का, तो अंतराल लेके इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं।

0: सोनाली, आप क्या बात कर रही थी अपराध बोध के लिए?
1: ये अपराध बोध शब्द ही ऐसा है ना कि जिसको पढ़ते ही अपराध बोध आ जाता है दीपा, जब हम मन की बात कहते हुए बोल देते हैं ना कि मुझे गिल्ट खा रहा है या पछताव हो रहा है, ऐसी मानसिक स्थिति जो इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखली करती जाती है। अतीत में हुई किसी गलती, गलत फैसले या किसी को अनजाने में पहुँचाए गए कष्ट के कारण ऐसी भावना पैदा होती है। हालांकि कुछ हद तक अपराध बोध हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक मन में घर कर जाए ना तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह कर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा, अतीत को देखो बदला नहीं जा सकता सोनाली, लेकिन जो वर्तमान है, आज है, उसको संभाल कर भविष्य को जरूर संवारा जा सकता है। इसलिए खुद को माफ करना, अपराध बोध के जाल से बाहर निकलना बेहद जरूरी है।
1: और यदि हम किसी बात को लेकर ग्लानि या अपराध बोध से जूझ रहे हैं तो कुछ तरीकों को अपनाकर खुद को मुक्त कर सकते हैं। जैसे गलती को स्वीकार करना अपराध बोध से बचने का पहला कदम है, कि ये मानना कि हमसे गलती हो गई है। गलती को छुपाने या उससे भागने के बजाय उसे स्वीकार करने से मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। और परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, खुद से पूछे कि जब वो गलती हुई तब क्या हम सचमुच किसी बुरे इरादे से काम कर रहे थे। कई बार हालात, अधूरी जानकारी या सामाजिक पारिवारिक दबाव के कारण गलतियाँ हो जाती है। खुद

0: हर बात में विलन ना बनाए, यानी खुद को, अरे इतना मैं इतनी तो बुरी नहीं हूं, पर मुझसे गलती हो गई है तो हो गई है ना।
1: बिल्कुल सही कहा। और माफ़ी मांग सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। वो कैसे? अगर गलती से किसी दूसरे को ठेस पहुंची है तो बिना किसी अहंकार के उनसे सीधे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। यदि संभव हो तो उस नुकसान की भरपाई करने की भी कोशिश कर सकते हैं, और ये करके देखें आपके मन को बहुत गहरी शांति देगा। फिर आत्मक्षमा अपनाना चाहिए। हम ना दूसरों को तो कर देते हैं क्षमा, लेकिन कभी कभी अपने ही किसी किए के लिए बार बार बोलते ना, मैं उसके लिए खुद को माफ़ नहीं कर सकती, मैं अपनी ये वाली बात को बिल्कुल भूल नहीं सकती, इस तरह की बातें अक्सर आती हैं, हम अपने लिए सोचने लग जाते हैं। और अक्सर हम दूसरों को बहुत आसानी से माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन खुद के प्रति इस तरह से हम कठोर हो जाते हैं। लेकिन इंसान गलतियों का ही पुतला है, फिर देखो है कि नहीं सही बात। और खुद को एक इंसान के रूप में देखें जिसने गलती की, न कि खुद को ही एक बुरा ही इंसान हम मान लेते हैं बिल्कुल कि हाय मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। इस तरह की बातें भी कभी कभी निकल आती हैं।
0: और ऐसे में क्या होता है, हम निराशा की खाई में ही गिरे रहते हैं हमेशा। अगर ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो हम उदास रहते हैं, निराशा में रहते हैं, और उससे क्या होता है, जाने अनजाने में हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ जाता है, बीमारियों का घर बन जाता है। तो अतीत की उस घटना को एक कड़वी याद के रूप में ना देख कर, एक सबक के रूप में अगर हम देखें ना, तो बहुत हद तक हम आगे भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, और हमारी गलतियाँ हमें फिर गिल्ट में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ने में भी मददगार होगी। जो बीत गया उसे पर अब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जो आएगा वो हमें पता है नहीं। इन्हीं बातों की उलझन में हम अपना वर्तमान क्यों बिगाड़े, और फिर देखिए ना, अन्य चिंता में वर्तमान के खूबसूरत पल हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलते चले जाएंगे। तो क्यों ना अपनी ऊर्जा को आज सुधारने संवारने में बिताएं, एक सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना जरूरी है।
1: बिल्कुल, हम अपने अतीत में की गई गलतियों से कई बड़े हैं सोनाली, और कई बेहतर भी हैं। खुद को कोसना बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर नया दिन खुद को सुधारने का एक नया मौका लेकर आता है।
0: और हमारे श्रोताओं ने भी इस विषय में बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। एक साथी लिखते हैं, अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता है, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता है। जीवन का उद्देश्य निर्दोष बनना नहीं बल्कि सीखते हुए बेहतर बनना है। गलती को स्वीकार कीजिए, उससे कुछ सीखिए, लेकिन उसे अपना स्थायी पहचान मत बनाइए। इंसान गलती से छोटा नहीं होता, वो तब छोटा होता है जब सीखना छोड़ देता है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह का एक और देशे कहता है कि अपराध करने के बाद दिल दिमाग पर एक बोझ महसूस होना स्वाभाविक है। आपसे ये अपराध जानबूझ करके नहीं हुआ है, तो खुद को कोसने के बजाय शांत चित्त पूर्वक आत्मचिंतन करें, भविष्य में इससे इसके प्रति जागरूक रहें। अतीत के गलियारों में घूमने के बजाय परिवार के साथ हंसी खुशी भरा माहौल बनाए रखें, वर्तमान आपका ऐसा ही होना चाहिए।
0: एक साथ ही लिखते हैं, जाने अनजाने हमसे गलतियाँ होती रहती है, मन से उसे मान लेना ही समझदारी है। नहीं तो जब तक मान न लूँ हमेशा अपराध बोध से मैं ग्रस्त रहती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई आपकी गलती पकड़ ही लेते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर है मान लिया जाए। साथी एक और साथी ने लिखा है कि अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता। इसी तरह की बातें और भी हमारे साथियों ने लिखी है।
1: भाई देखो, दिल की बात कहीं किसी को कह देनी चाहिए, कोई दोस्त को, कोई ऐसा आपका भाई होते हैं ना, हमारे कजिन्स भी होते हैं जिनके हम बहुत करीब होते हैं, तो अगर आप अपने दिल की किताब कहीं खोल देंगे तो मन शायद कुछ इस तरह से हल्का हो सकता है।

0: सोनाली, मुझे बताओ, एक संदेश बहुत गहराई से पढ़ रही हो तुम।
1: जी, हमारे एक सखी ने लिखा है कि कभी कभी हम अनावश्यक रूप से अपराध बोध पालकर अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। कुछ लोगों को तो अगर जागने में देर हो जाए तो भी अपने आप को कोसने लगते हैं, भाई आप ज़रा देर तक सो लेंगे तो दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। किसी ने किसी से खाने में नमक ज़्यादा पड़ गया तो परेशान हो जाएंगे। आप ही तो रोज़ स्वादिष्ट बनाती है, एक दिन गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा। ज़िंदगी को हल्के फुल्के ढंग से जिए, बोझ लेकर नहीं जिए। वहीं एक साथी ने लिखा कि भाई मैंने भी एक कुछ ऐसा काम कर दिया था कि मेरे घर के मेरी दुकान के पीछे में एक जगह थी, वहाँ पर बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे दिए थे तो मुझे परेशानी हो रही थी तो मैंने बच्चों को उठा के कहीं भिजवा दिया।
0: अच्छा,
1: बाद में दूसरे दिन उन्हें मंगवा लिए बच्चे तो बहुत अपराध बोध से ग्रस्त हो गए थे, अब उन्हें अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है
0: बिल्कुल। और आपने देखिए, माँ को उसके बच्चों से मिला दिया है तो इससे ज्यादा खुशी, जितने खुश आप है ना, ये सुनकर और ये पढ़ के आपका संदेश, हमें भी बहुत खुशी मिल रही है। और भाई, इसका परिणाम तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के परिणाम में कभी कभी घर में मार भी पिट जाती है और कभी कभी उपहार भी मिल जाता है।
1: पर ऐसा होता है ना दीपा, कि उस वक्त भी अपराध बोध से हम ग्रस्त हो जाते हैं कि कभी परीक्षा में हमें कम नंबर मिल गए, तो खासकर लड़कियां क्योंकि सब लोग बोलते ना कि अरे हमारी बेटी तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है, हमेशा फर्स्ट आती है, और कभी तीसरा चौथा नंबर आ गया तो उस बेटी को बड़ा बुरा लगता है कि अरे मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की। और फिर उन्हें मन ही मन वो खाते भी रहता है वो।
0: बिल्कुल, लेकिन इस तरह से होना नहीं चाहिए। हम अब तो बच्चों को बहुत समझाते हैं, भाई पहला और दूसरा नहीं, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, नंबर के पीछे ना भागो, ये हमें भी सिखाया जाता था। लेकिन हाँ, कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक माता पिता को एक एक्सपेक्टेशन होती है हमसे कि भाई ये इतने नंबर तो लेकर ही आएगी या लेकर ही आएगा, तब और नहीं ला पाते तो कहीं हमें मन में वो कसोसता है। लेकिन भाई, अगली बार आप मेहनत करके, हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन तब छोटे होते हैं ना तो ये सारी बातें नहीं समझ आती। लेकिन आज देखते हैं कि संदेश क्या कहते हैं। पहला संदेश है परीक्षा परिणाम, उपहार कभी नहीं मिला, बचपन में पापा की मार जरूर पड़ी है लेकिन हर बार मम्मी बचा लेती थी। तो देखो, मम्मी तो यहाँ भी काम आई
1: है। तारा होते ना बच्चे,
0: इसीलिए।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, कभी मार तो कभी मिले उपहार, हमारे जमाने में तो परीक्षा के परिणाम के बारे में तो हम फिक्र ही नहीं करते थे, ना माता पिता करते थे। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के आगे पढ़ना नहीं था, पढ़ना ये हमारे रिजल्ट के आने के बाद पता चल जाता था, क्योंकि उन दिनों हमारे परिवार में पढ़ाई से ज़्यादा काम धंधे पर ध्यान दिया जाता था। अगर फेल हो गए तो गृह उद्योग यानी कारखाना हमारा स्वागत करते तैयार रहता था। मुझसे बड़े सभी भाइयों का ऐसे ही स्वागत हुआ था, पूरे परिवार में मैं अकेला ही है जो ग्रेजुएशन तक पहुँच सका हूँ। क्या बात है।
0: और एक हमारे साथी ने भेजा है संदेश कि मेरे दादाजी, हम बच्चों को जिसका भी रिजल्ट 1 से 5 के बीच में रैंक में आता था, उनको मतलब उस जमाने में 5 रुपए देते थे। वो 5 रुपए हम तीनों भाई बहनों को मिलता ही मिलता था। क्या बात है भाई। और उस जमाने में, यानी कि 40-50 साल पहले की बात होगी, 5 रुपए बहुत मायने रखता था। जी बिल्कुल रखता था। और कुछ मिलना ही हमारे लिए, ये मतलब मिल जाए बहुत बड़ी बात होती थी। मैं तो SSC में सेंटर का फर्स्ट था और मैथ्स में 100 में से 90 मार्क्स, क्या बात है। और मुझे 100 रुपए का इनाम भी मिला था।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, परीक्षा परिणाम की बात चली तो बता दे कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में मैं पढ़ता था। वे अपने ज़माने में उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पढ़े थे और हमारी किताबें समझते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो भी पास होने भर के मार्क लाता रहा। BA तक ये सिलसिला चला जब तक मैं मनबढ़ हो चुका था। हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाने लगा, शादी भी हो चुकी थी और पत्नी घर में आ चुकी थी। हाँ, इधर 2 नाती अपनी परीक्षा परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% और एक ने 87% मार्क लाए, फिर भी वे संतुष्ट नहीं है। ये आजकल का जमाना है, यहाँ पर तो 99 भी मिल जाए तो कहते कि भी 1% कहाँ चला गया
0: है। बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि ये वो शब्द है जो दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। भले ही हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बोर्ड एग्जाम या फाइनल रिजल्ट के दिन वो गुड़गुड़ वाली, वो घबराहट वाली जो एक फीलिंग रहती है ना, वो सबको याद रह ही जाती है। भाई बिल्कुल सच बात है। एक समय सच में भावनाओं का ये वो समय है जब भावनाओं का एक रोलर कोस्टर होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी मार डांट तो कभी उपहार। तो इन खट्टी मीठी यादों को ताज़ा करते हुए वो बताते हैं कि रिजल्ट वाले दिन का माहौल तो सुबह में ही घर में सन्नाटा हो जाता, मम्मी भगवान की पूजा कर रही होती है, पापा अखबार पढ़ने का नाटक करते हैं जबकि नजरें घड़ी पर होती हैं, परिणाम अच्छा हो अगर हुआ तो घर में दिवाली जैसा माहौल, मिठाई बांटी जाती है, रिश्तेदार फोन करते हैं, पड़ोसी हेलो बोलने आते हैं, परिणाम खराब तो घर में बिल्कुल ऐसा सन्नाटा जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है, टीवी बंद, आवाज धीमी, सब ऐसे व्यवहार करते जैसे किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कभी पड़ी मार तो जब नंबर कम आते थे तो लगता था कि अब तो बस धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, और पापा का यह डायलॉग हमेशा होता, बगल वाले शर्मा जी के बेटे को देखो, ये जुमला तो लगता है हर बच्चे का दुश्मन रहा होगा। भाई बिल्कुल सही कहा आपने। और मम्मी का डायलॉग रहता सारा दिन मोबाइल में खेल में लगे रहोगे तो अब भुगतो उसका नतीजा, और एक हफ्ते के लिए टीवी खेलना बंद, टीवी बंद, और एक्स्ट्रा ट्यूशन की धमकियां मिलती, इस तरह की बातें होती। और अगर उपहार के रूप में उन्हें ये होता था कि जब मेहनत रंग लाती थी तो डर लगता था कि हमसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं, और डिमांड पूरी हो जाती थी, पापा से नई साइकिल या नया फ़ोन या मनपसंद गेमिंग कंसोल की डिमांड पूरी हो जाती थी। तो भाई उन्होंने तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और बिल्कुल आँखों के सामने ऐसा लग रहा है हमारा बचपन भी कहीं ना कहीं सामने लेकर आए हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की आज यादें ताज़ा की होगी।
1: तो गाना सुन ले
0: चलिए।

0: भाई देखो, कितने लोगों को पढ़ने में दिल भले ही नहीं लगता हो, लेकिन यहाँ पे जो संदेश आ रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लगता है कि पढ़ने में बहुत मन लगता था।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है दीपा, हमारे जमाने में सेवंथ बोर्ड होता था, एक स्कूल होने के चलते हम आसपास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते थे, जिससे हम सभी उनके साथ बैठकर पढ़ते थे। पड़ोस में एक बच्चे को का नंबर कम आया, ट्यूशन पढ़ने वाले टीचर आए तो गार्जियन ने शिकायत किया। उस समय तो उनने सिल लिया, बड़ी अकड़ के साथ हमें सुनने लगे कि मुझे कम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये। नया नया कबीर का दोहा पढ़ना शुरू कर दिया। जो टीचर ट्यूशन पढ़ाने आते थे उन्होंने कान पकड़ कर बोला, सिर्फ पढ़ने की भी खाने में भी, खाने में हो तो कम हो जाएगा तो बहुत हल्ला करते हो।
0: और एक और संदेश कहता है कि परीक्षा परिणाम का दिन बच्चों से ज्यादा शायद माता पिता के लिए डर और उत्सुकता लेकर आता है। इस बार मेरी बेटी ने 10वीं की परीक्षा दी थी, सच बताऊं तो उससे ज्यादा घबराहट मुझे हो रही थी उसके कितने मार्क्स आएंगे। जब उसका परिणाम आया तो उसने 90% अंक प्राप्त किए तो मन गर्व और खुशी से भर गया। अब उसकी एक प्यारी सी इच्छा है, उसे गिफ्ट में मोबाइल चाहिए। अभी हमने उसे दिलाया नहीं है, लेकिन आजकल वो बड़े प्यार से दूसरे बच्चों के स्टेटस दिखा रही है हमें और कहती, मम्मी देखो ये उसके पेरेंट्स ने उसे ये गिफ्ट दिया है। तो सच कहूँ तो रिजल्ट के साथ जुड़ी ये सारी छोटी छोटी बातें जीवन की सबसे सुंदर यादें बनकर रह जाती है। तो भाई अगर आपने वादा किया है तो अब आपको अपनी बिटिया को गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, और हमें भी आपको एक गिफ्ट देना होगा।

0: कौन सा संदेश पढ़ने का कह रही थी?
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि परीक्षा परिणाम वैसे तो किसी के प्रतिभा को आकलन करने का मापदंड तो है नहीं, पर जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन तो होता ही है। स्कूल जाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे तो परीक्षा भी होगी, परिणाम आने पर घर पर उसके अनुकूल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। पर मेरा अनुभव तो अच्छे वाले ट्रीटमेंट का ही है, तब उपहार वगैरह मिलने का ज़माना तो था नहीं, पर क्लास में फर्स्ट सेकेंड आने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से पुरस्कार ज़रूर दिया जाता था। मुझे तो फर्स्ट प्राइज़ ही मिल जाता था, जो भी मिलता था अनमोल होता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि परीक्षा के परिणाम उपहार या डांट मुझे तो याद नहीं, हमारे ज़माने में ऐसा कुछ होता था। नंबर कम आया तो गार्जियन समझाते थे, लेकिन अच्छे नंबर आने पर घर में कभी मिठाई मिल जाती थी, कभी अठन्नी चवन्नी मिल जाते थे। आजकल के गार्जियन बच्चों के लिए परीक्षा फल के परिणाम के लिए कुछ ज़्यादा संशय में रहते हैं। आजकल कंपटीशन कुछ ज़्यादा टफ है, नए नए रोजी रोटी और पढ़ने के आयाम भी खुले हैं। अगर कुछ कम है तो कुछ दूसरे रास्ता भी ढूंढ लेंगे। उन्हें डराया जाता है कि अगर नंबर कम आएंगे तो अगली बार फिर उसी क्लास में दो बार पढ़ना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही अपमानजनक शब्द होता था। पर भैया, हम तो इतना कोशिश करते थे कि अगले साल नए क्लास में ही जाएं।
0: सही बात है। और एक और संदेश है, कहता है, परिणाम परीक्षा की बात चली तो बता दें कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में भी पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ाते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो पास भर होने का मार्क लाता रहा। बीए तक ये सिलसिला चला और बाद में तो ये है कि हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाना, शादी भी हो चुकी थी, पत्नी घर आ चुकी थी। हाँ, इधर हमारे दो नाती और अपने परीक्षा परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% लाए हैं और एक ने 87% मार्क्स लाए हैं, फिर भी वे लोग देखिए संतुष्ट नहीं हैं। और अब हम किस बात से संतुष्ट होंगे?
1: एक गाना सुन के।
0: चलो।

0: आज के हमारे श्रोताओं के जो जितने भी संदेश है खूब हंसाया हमें,
1: इतने हम खिलखिला के हंसे तो कुछ बार तो मेरी आंखें छलक गई हंसते हंसते।
0: हाँ बिल्कुल, मैं देख रही थी श्रोताओं, लेकिन वक्त देखिए शब्बा खैर कहने का आ गया है, तो आप सभी दीजिए इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
1: सोनाली पाठक का
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं और हमारे केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जा रहे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: दोस्तों, सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: दोस्तों, अगर हम वक्त का दामन थाम कर अतीत में लौटें, तो फिल्म संगीत की वादियों में गूंजने वाली एक जानी पहचानी सी मीठी और मधुर आवाज बरबस ही हमारा ध्यान खींच लेती है। कभी सेल्यूलॉइड के पर्दे के उस पार से, कभी स्टेज, कभी रेडियो और कभी टीवी के जरिए हवाओं पर सवार होकर ये आवाज आपको आवाज देने पहुंचती रही है। जी हाँ दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं गायिका कमल बारोट का, जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम की मेहमान हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। कमल बारोट जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: सुनने वालों को कमल बारोट का प्यार भरा नमस्कार।
1: वाह, आपकी आवाज में वाकई इतना प्यार घुला है, इतनी मिठास घुली है
2: कि वो आपकी जरा नवाजी है, आपका प्यार है।
1: लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता और मैं सच बोल रहा हूँ, ये दिल की आवाज है कि वो प्यार जो है पहुंच गया हमारे सुनने वालों तक। अब कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी संगीत यात्रा जो है वो कब, कैसे और कहाँ से शुरू हुई?
2: देखिए, मेरा जन्म तो हुआ ईस्ट अफ्रीका में, टेंजानिया में, और बचपन से ही पिताजी को संगीत का, घर में संगीत का माहौल था, इसे समझ लीजिए। मेरी माँ

0: पिताजी भी गाती थी, पिताजी दिलरुबा बजाते थे और घर में महफिल सजती थी। हालांकि क्लासिकल महफिल होती थी जहाँ से मैं भाग जाती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त क्लासिकल म्यूज़िक से इतना, बहुत छोटी थी मैं, एक लगाव नहीं था। तो वो कहते हैं ना, वो माहौल तो बचपन से ही मिला था। और जब मैं कॉलेज के लिए हिंदुस्तान आई तो सोफिया कॉलेज में सब लड़कियों को पकड़ के मैं कहती थी मेरा गाना सुनो ज़बरदस्ती, क्योंकि सीखा नहीं था कुछ, सारे गमा का कुछ पता ही नहीं था। तो ऐसे गाती थी और उसमें से मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के लिए चली गई, लड़कियों ने मेरा फॉर्म भर के, और वो मैं कॉन्टेस्ट जीती और वहाँ से एक किस्म से ये यात्रा शुरू हुई।
1: अच्छा, तो यानी ये हम माने कि जैसे किसी को मंत्र दीक्षा दी जाती ना कान में हौले से
0: जी,
1: तो वैसे ही संगीत की पहली जो दीक्षा थी मंत्रों की, वो तो आपको घर में ही मिली।
0: घर में ही मिली, बिल्कुल सही।
1: लेकिन बाद में उसका जो सफर है थोड़ा सा और आगे जा करके शुरू हुआ।
0: जी,
1: अच्छा
0: जी।
1: लेकिन कहते हैं कि यदि संगीत के क्षेत्र में आपको गुरु मिल जाए तो आपकी ये जो यात्रा है या जो भी विद्या आप सीखना चाहते हैं उसमें और अच्छाइयाँ आ जाती हैं, तो संगीत में आपके भी कोई गुरु रहे?
0: जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब थोड़ा सा रेडियो पे मेरा गाना बजा और कहते ना पता चला कि ये कॉन्टेस्ट जीती है, तो बहुत जगह से लोगों ने बुलाना शुरू किया और कहते ना पब्लिक आई में किस्म से आना। तो कल्याण जी आनंद जी हमारे फैमिली फ्रेंड थे और उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कल्याण जी आनंद जी नाइट, और इतना बड़ा ये प्रोग्राम हुआ था कि रंग भवन में ये प्रोग्राम हुआ था, तो मेट्रो तक, कहते ना गाड़ियों की और लोगों की उस ज़माने में क्यू थी, उस प्रोग्राम में मुझे मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिल गया।
1: अच्छा,
0: और लता जी भी वहाँ थी और उन्होंने ये कार्यक्रम सुना और बाद में उन्होंने कहा कि सेवा सदन करके उनकी जो स्कूल थी उनके लिए उन्होंने मुझे ये प्रोग्राम में इनवाइट किया। एंड आई वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ लता मंगेशकर। मैं दीदी को इतना चाहती थी कि जब भी मैं आती थी तो उनको मिलने जाती थी। और एक बार ऐसे ही संडे में उनके घर चली गई, तो वो तो जा रही थी कोल्हापुर और कल्याण जी भाई आ गए डेट लेने के लिए, और तो उन्होंने कहा कमल जी को तो सुना है मैंने, इससे गवा लो, ये ड्यूएट गाना है। आप यकीन माने वहाँ से मैं कल्याण जी भाई के म्यूज़िक हॉल पे गई और वहाँ आनंद जी भाई ने मस्ती मजाक में मुझे एक गाना सिखा दिया। दूसरे दिन पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग भी हो गई, रिकॉर्ड भी हो गया, फिल्म थी ओ तेरा क्या कहना, और गाने के बोल थे दिल लेके जाते हो कहाँ।
1: वाह वाह वाह भाई, ऐसा
0: कहां
1: है,
0: कहां से कहां ये बात देखिए।
1: आपने जो गाना गाया है दिल लेके जाते हो कहाँ, लेकिन ये एक चीज है कि जब जब इस गाने को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गाना वाकई दिल लेके कहीं जा रहा है, तो क्यों ना हम ये गाना।
0: ये तो आप सब लोगों का प्यार है, लेकिन मुझे भी उस वक्त पता नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर होगा और यहाँ से एक कसम से फिल्म यात्रा शुरू हुई।
1: ठीक है, हम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो गाना है आपका जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज भी सदाबहार है, इसके जरिए हम क्यों ना एक बार फिर से अपने सुनने वालों के दिलों को छुएं और उन पर दस्तक दें।
0: सुनाइए।
2: दिल लेके जाते हो कहाँ, हम तो खड़े हैं

0: था और बड़े संयोग से और अचानक ही आपको वो गाना मिल गया था। तो पहला गाना और पहली सफलता हर आदमी की जिंदगी में बहुत अहम होती है। कैसा आप महसूस कर रही थी और आपको आपके जो सहयोगी कलाकार थे, संगीतकार थे, उन सबका सहयोग कैसा मिला?
1: देखिए, उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये जो सिंगर्स थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, ऐसा लगता था जैसे एक बड़ी हैप्पी फैमिली है। मैं आप बताऊँ, मेरा दूसरा गाना लता जी के साथ ही हुआ और म्यूजिक डायरेक्टर वही थे, कल्याण जी आनंद जी। तो जब मैं रिकॉर्डिंग के दिन मैं गई वहाँ, तो जाहिर है कि मैं बहुत ही नर्वस थी। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी गायिका के साथ उसी
0: लेवल
1: पे बैठ के गाना, तो वो देख समझ गई। वैसे सहेली दीदी तो थी, सहेली भी थी, तो कहने लगी, देखो कमल, जब भी आज इतने सालों के बाद माइक्रोफोन फेस करती हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मेरा ये आज इम्तिहान का दिन है, और एवरी टाइम मैं गाना गाती हूँ तो वो एक इम्तिहान ही लगता है। तो सबके लिए एक ही बात, उन्होंने मेरा माइंड इतना एटीज कर दिया कि वो गाना भी ऐसे हो गया, अकेली मोहे छोड़ना जाना बराबर की लाइनें थी, और म्यूज़िक भी म्यूज़िक के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा, पॉपुलरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा।

0: जहाँ तक हौसला अफजाई की बात है, जैसे अभी आपने बताया कि लता जी ने आपका हौसला बढ़ाया, आपको ढांढस बंधाया, इसमें घबराने की कोई बात नहीं
1: जी जी
0: है, तो ऐसे और भी कलाकार होंगे, गायक गायिकाएं।
1: जी अब आप रफ़ी साहब को ले लो, कितने बड़े महान कलाकार थे। अब उनके साथ जब गाते थे तो वो भी वही अंदाज से पेश आते थे और माइंड इतना ईज कर लेते थे और माहौल ऐसा बना के रखते थे कि जैसे गाना रिकॉर्ड हो जाता। तो मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने तकरीबन सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ गाना गाया है और मेरे साथ बहुत अच्छी तरह ये पेश आए हैं।
0: कमल जी, आप जिस जमाने का जिक्र कर रही हैं,
1: जी
0: कुछ देर के लिए हम भी उसी जमाने की तरफ जाना चाहते हैं। आज सब कुछ बदल चुका है। आप जिस जमाने में पार्श्व गायन के क्षेत्र में सक्रिय थी, उस दौर को आप किस रूप में याद करती हैं?
1: एक ऐसा दौर था कि जो गान बनाने वाले जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो भी जैसे कोई रिसर्च करते हैं ना, वो एक भी डेडिकेटेड म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे और जो गाने वाले थे वो भी। अभी मेरा एक गाना हुआ था, फिल्म बरसात की रात का गाना था, म्यूज़िक डायरेक्टर रोशन थे। आप यकीन माने इतने बड़े वो म्यूज़िक डायरेक्टर मुझे रिहर्सल कराने आते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो एक दिन नहीं आए, वो मेरे ख्याल में 10-12 दिन आए, क्योंकि कह रहे थे ये राग पर आधारित है गाना और कमल को कुछ छोटी सी ताने भी कहलवानी है, क्योंकि मैं मेरा कोई क्लासिकल म्यूज़िक का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो इतनी दिलचस्पी, आप बताइए आज कैसे कौन ले सकता है। समय की का कितना अभाव है कि आज तो गाने मैंने सुना ऐसे बनते हैं कि
0: इंस्टेंट
1: बहुत
0: फूड की तरह।
1: इंस्टेंट फूड की तरह बनते हैं। तो वो गानों में बात भी फिर ऐसी आती थी क्योंकि माहौल ही ऐसा था।
0: जी हाँ,
1: हाँ
0: इतना पेशेंस रखते
1: जी
0: थे लोग,
1: जी जी
0: और उसमें और बारीक से बारीक काम जितना तराश सकें
1: और जो
0: किसी गाने
1: इंग्लिश में
0: को।
1: कहते हैं ना, पेस भी थोड़ा स्लो।

0: क्या बात है।
1: जिंदगी का पेस मजा था एक, यू नो, जिंदगी का कहते हैं ना, हर चीज में डिस्कशन, वो लेवल पे रिहर्सल, हम लोग पहले रिहर्सल करते थे, फिर रिहर्सल म्यूजिक हॉल में रिहर्सल हुआ करती थी, फिर स्टूडियो में जाते थे, फिर वहाँ म्यूजिशियन के साथ पूरा गाना खड़ा रह के गाना।
0: रिहर्सल फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है।
1: जी जी
0: तो उस जमाने में आप लोग कितने घंटे रिहर्सल किया करते थे, कितने दिन तक? हालांकि आपने थोड़ा सा इसका संकेत दिया है, एक गाने
1: जी
0: के
1: जी
0: बारे में बताया है।
1: जी कोई गाने ऐसे होते थे जैसे अभी मैंने बताया वैसे, तो उसमें मैंने सुना है लता दीदी भी रिहर्सल के लिए जाया करती थी, जैसे हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे सज्जाद करके, वो बहुत कड़क माने जाते थे और उनको बड़े बड़े सिंगरों को, मंझे हुए आर्टिस्ट को भी जब रिहर्सल की ज़रूरत पड़ती थी, तो मैं तो एकदम नई थी, मैं तो चाहती थी कि मुझे रिहर्सल कराएं, और रिहर्सल होता था, बाकायदा होता था।
0: तो चलिए इसी बात पर एक, अब हम रिहर्सल रूम से बाहर आते हैं
1: और
0: और एक आपकी पसंद का और गाना सुनते हैं। आप बताइए कौन सा गाना सुनवा रहे हैं आप?
1: अभी आप सुनिए फिल्म घराना का गाना सुनिए, दादी अम्मा मान जाओ।

0: दादी अम्मा, दादी अम्मा मान जाओ भाई। कमल जी, आपने इस बहाने इस गीत के जरिए दादी अम्मा को मनाने का एक सूत्र जो है वो
1: जी,
0: बहुत सारे लोगों के हाथ में पकड़ा दिया कि अगर दादी माँ रूठी है तो ये
1: तो
0: गाना
1: कैसे मनाया जाए उनको, है कि नहीं?
0: सुना। इस गाने से जुड़ा कोई रोचक वाक्या हो तो
1: नहीं,
0: बताइए।
1: क्या हुआ, जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो आपको जैसे मैंने बताया, आशा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, रिहर्सल के लिए साथ में गए थे, तो मैंने ऐसे मज़ेदार एक वाक्या सुनाती हूँ। मैंने कहा देख, मुझे मंडे जाना है, अपना अहमदाबाद में एक कॉलेज का फंक्शन है, तो कहती है तेरे साथ कौन चल

0: हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ शायद कोई फैमिली मेंबर चलेगा, मैं चलूँ? मैं कहा तू कैसे चल सकती है, तू तो इतनी मशहूर सिंगर है, तुझे सब पहचानेंगे। कहने लगे नहीं चलते, मज़ा आएगा, मैं कोकिला बहन बन के आऊँगी। यकीन मानो मेरे साथ आई, उस जब इतनी बड़ी कॉलेज में फंक्शन में मैं गा रही हूँ, मेरी किताबें लेके बैठी हैं। अब बोली आज कैसे, ये माहौल कैसा था, है कि नहीं मज़ेदार? और किसी ने पहचाना भी नहीं, वो ऐसे चुपचाप बैठी रही, मुझे हंसी भी आए और मुझे बोलती रहती चुप बोलो बोलो मत। तो उतने में गुजरात के बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश व्यास आए और उन्होंने देखे, बोले आशा तुम यहाँ? फॉरन प्रिंसिपल कॉलेज स्टूडेंट सबको पता लग गया आशा भोसले बैठी है। बड़ा मजा आया, लेकिन ये आजकल मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है।
1: और आपकी ये दोस्ती
0: अभी भी कायम है?
1: अच्छा।
0: जी हाँ।
1: तो अब जब आप आती हैं तो मिलती हैं अपने पुराने दोस्तों से, जो मतलब जो भी आपके
0: बिल्कुल बिल्कुल वही हमारे वही ग्रुप है बस जिसके साथ ये यात्रा शुरू की थी, बिल्कुल अभी तक वही फ्रेंडशिप है। बहुत अच्छे लोग हैं, मुश्किल से जिंदगी में अच्छी कहते हैं ना मित्रता मिलती है।
1: कमल जी, मैं समझता हूँ कि मातृभाषा तो आपकी गुजराती है।
0: जी
1: लेकिन अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो हिंदी गानों की बात हो रही है, तो हिंदी से हटकर भी आपने दूसरी भाषाओं की फिल्मों के लिए गीत गाए।
0: जी मैंने गुजराती फिल्म के लिए गाना गाया, फिर अपना भोजपुरी, पंजाबी। और गुजराती फिल्म के लिए तो मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 साल के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स का अवार्ड मिला।
1: अच्छा
0: जी हाँ। फिल्म बनी थी लीलूड़ी धरती, फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म इन गुजराती, जिसका म्यूजिक पुरुषोत्तम उपाध्याय ने दिया था। और उसका एक गाना था, मारू नाम पाड़ियों छे संतूरंगीली। अब ये गाना जब बजता था तो कहते हैं लोग कॉइन फेंकते थे, इतना मशहूर हुआ था ये गाना।
1: लेकिन एक चीज है, आपने तो हमारी प्यास जगा दी और अधूरी दी, आपने सिर्फ एक लाइन गुनगुनाई है। अच्छा वैसे बहुत अच्छा लगा,
0: अच्छा लगा
1: और बहुत देखिए ऐसा है कि मीठी और मधुर आवाज वो कहीं भी गूंजे वो गानों
0: बहुत,
1: में
0: बहुत शुक्रिया।
1: हमेशा भूलेगी। कमल जी ऐसा कहते हैं कि गीतकार के शब्द, संगीतकार की अच्छी धुन, गायक गायिका की आवाज जो है एक गीत को अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आप इस बारे में क्या कहेंगी?
0: नहीं बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि क्या होता है कि जब सिचुएशन के मुताबिक कवि लिखता है तो म्यूज़िक डायरेक्टर उसको सोच समझ के कि भाई ये शब्द कैसे हैं, अगर उसमें पैथोस हैं तो ऐसे रागों का इस्तेमाल होता है जो उन चीज़ों को उभार के ला सके। और जब फिर वो गाना बन जाता है तो वो कलाकार के सामने रखा जाता है, फीमेल प्लेबैक सिंगर के सामने या मेल प्लेबैक सिंगर के सामने, और वो फिर समझ के इसको अपनी एक ऐसी अनोखी अदा से गाता है कि वो जिस अंदाज से गाना लिखा गया है उसका मकसद पूरा होता है। और ये आना चाहिए, तभी आके गाने की सफलता हो सकती है।
1: तो जब आपने गायन के क्षेत्र में कदम रखा, रियाज कितने घंटे किया करती?
0: अच्छा शुरू में क्या हुआ था कि मेरा कोई रियाज नहीं था, मेरी एक रो आवाज़ थी और शायद वो क्वालिटी के क्लियर कट आवाज़ है, एकदम सीधी सादी आवाज़ है, उसमें कोई वो बात नहीं थी। तो मुझे कहा गया कि आप अभी उसमें कुछ गुरु से शिक्षा लो। तो मेरे पहले गुरु थे अब्दुल रहमान खान साहब, उनसे थोड़े दिन सीखने के बाद पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले आए, उन्होंने कण मुरक का एक अभ्यास कराया कि जो आवाज़ कैसे मुलायम होती है, उसमें लोच कैसे आती है, ये सारी बातें बताई। उसके बाद आए ताज अहमद खान साहब, जो कि गज़लों के बड़े माहिर थे, और कल्याण जीवे का कहना ऐसा था वो मेरे रियाज में बहुत दिलचस्पी लेते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फिल्म लाइन में। तो वो कहते थे कि हमें क्लासिकल सिंगर पूरा नहीं बनना है तो इस टाइप की सिंगिंग के लिए एक ख़ास रियाज चाहिए। तो कभी कभी मेरे रियाज में आके वो बैठते थे। तो ताज अहमद खान साहब ने मुझे वो बात सिखाई और इन ये सब, और उसके बाद एक गुरु आए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे पे, खान साहब गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब। तो इन सब के आशीर्वाद से जो कुछ पाया हमने वो आपके सामने हाजिर है। मेरा एक गाना ऐसे आया था कि मैं शाम को गेस्ट्स को एंटरटेन कर रही थी और एन दत्ता साहब का मैसेंजर आ गया कि भई आप रात को 7 बजे एक गाना होने वाला है, फिल्म बादशाह का। गाना भी बहुत अच्छा था, आशा जी गाने वाली थी।
1: अच्छा।
0: वो भी जानती हैं, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो गाना तो उनको दूसरे दिन पिक्चराइज करना था। तो क्या है कि ऐसा है कि जैसे एग्ज़ाम के लिए आप हर वक्त तैयार रहो, हाँ वो मूड भी बना लो, वो आवाज़ भी अच्छी रखो, वो म्यूज़िक डायरेक्टर के गाइडलाइन में आप गाओ, और ये सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था।

0: गाना हुआ, आज हमको हंसाए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है। और ये गाना मैं यहाँ इसका स्पेशल जिक्र करूँगी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी, तो आपका ये रेडियो स्टेशन जब कुछ मॉर्निंग पीरियड के बाद गाने बजाता है ना, तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी।
1: अब मैं एक सवाल, हालांकि पहले सोचा कि पूछूं ना पूछूं आपसे,
0: पूछिए।
1: लेकिन लग रहा कि पूछ ही लेना चाहिए। वो ये कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद, एक गाने के लिए आपको, मतलब कलाकार को कितने पैसे मिल जाया करते थे?
0: मुझे 300 रुपये मिलते थे उस जमाने में। जब लता जी को 500 या 600 मिलते थे तो हमको आधे मिलते थे और बड़ी खुशी से हम ले लेते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, अब ये आपको ताज्जुब होगा, कि गाना हो गया, एक मेरा और आशा का ड्यूट था, और मैंने ड्यूट्स ज़्यादा गाए हैं, तो हम लोग बाहर आ गए, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, तो बेचारे वो प्रोड्यूसर भागे भागे आए, दोनों के हाथ में एक एक लिफाफा दे दिया और कहा कि ये कुछ नहीं है आपका, बस कहते ना पेट्रोल मनी है ना। हमें कोई खेद होता था ना खुशी इतनी कि भाई हमको क्यों कम पैसे दिए गए। आई थिंक पैसों का इतना उस ज़माने में नहीं, अहमियत इतनी नहीं थी, बनिस्बत के गाना अच्छा मिले।
1: ये एक जो सेटिस्फेक्शन, जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन
0: हाँ
1: की जिसकी हम
0: जी
1: बात करें,
0: जी
1: मैं समझता हूँ कि हर कलाकार में, आप ही क्या, सभी के मन में इस
0: सबके
1: किस्म
0: मन,
1: की
0: सबके
1: चीज़
0: दिल
1: हुआ
0: में ये
1: करती
0: बात
1: थी।
0: होती है।
1: तो आपने अंदाजन कितने गीत गाए होंगे?
0: मैंने तकरीबन 300 फिल्मों में गाने गाए हैं
1: अच्छा,
0: जी।
1: और मेजर ब्रेक जिस फिल्म के हिसाब से आपको मिला, वो कौन सी थी?
0: सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरा पारस मणि का हंसता हुआ नूरानी चेहरा बड़ा, कहते हैं ना, टॉप पे रहा काफ़ी दिनों
1: जी
0: तक। और यही नहीं, जहाँ भी मैं गई मुझे इस गाने से लोगों ने बड़ा पहचाना। जैसे लंदन गई मैं, हॉलैंड गई, ईस्ट अफ्रीका गई मैं, जिम्बाब्वे गई, तो कहते थे आपका ये गाना तो रेडियो स्टेशन से हमेशा बजता है
1: और चूंकि आपने कहा है कि आपने डुएट बहुत ज्यादा गाए हैं, ये
0: जी।
1: गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ है और रेडियो से भी बजता रहा है, तो
0: जी
1: आज एक बार फिर से क्यों ना रेडियो से
0: जरूर सुनाइए।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, उन्होंने भी बहुत लंबी पारी खेली है और आज भी उनकी पारी चल रही है। उनके साथ आपने कितनी फिल्में अंदाजन की होंगी?
1: उनके साथ भी मैंने काफ़ी गाने गाए हैं, और पारसमणि का गाना है उसके बारे में ये कहूँ कि फिल्म भी म्यूज़िक की वजह से इतनी सुपर हिट रही कि लक्ष्मी भाई ने अपने बंगलों का नाम भी पारसमणि रखा है।
0: तो देखिए, उस जमाने का तो ये था कि टीवी उतना पॉपुलर हुआ नहीं था, लोग फिल्मों से जब फिल्में देखते थे तब गाने देख लिया करते थे और सुन लिया
1: बाद
0: करते
1: में
0: थे,
1: रेडियो पे सुनते थे।
0: बाद में रेडियो पे सुना
1: जी
0: करते थे। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या कहेंगे, फिल्म म्यूजिक को पॉपुलर करने में, लोकप्रिय बनाने में रेडियो का कितना हाथ रहा?
1: बहुत बड़ा हाथ, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा हाथ। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इतनी खुशकिस्मत थी कि रेडियो के ज़रिए मुझे लोगों ने मुझे एक इंस्टेंट पहचान मिल गई। कैसे? जब मैंने ये आपको शुरू में ज़िक्र किया कि मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के द्वारा आई, तो एक प्रोग्राम हुआ करता था फुलवारी करके, अपने पड़ोसी देश का रेडियो था वो, और उस प्रोग्राम में मुझे सुधा मल्होत्रा को और महेंद्र कपूर को, बाल गोविंद श्रीवास्तव जी वो किया करते थे प्रोग्राम, और उसमें हमें बुला के उन्होंने काफ़ी गवाया और हमारा नाम, कहते हैं ना, रेडियो के ज़रिए बहुत ही मशहूर हो गया। फिल्मों का तो प्रवेश बाद में हुआ, बट पहले रेडियो ने हमें ये पॉपुलैरिटी दी। हाँ, तो रेडियो तो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है।
0: आप वाकई गायिका बनना चाहती थी या कुछ और?
1: एक्सीडेंटली हो गई। नहीं, गाने का शौक था, लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि अगर मैं गायिका बनना चाहती तो मैं पूरी तैयारी करके आती, लेकिन मैंने ना तो मेरे पास कोई क्लासिकल तालीम थी, कुछ ऐसा नहीं था। और जब छोटे होते हैं तो इंसान के ड्रीम्स होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरी ज़िंदगी में शायद गायिका बनना था, और हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बन गई और बहुत ढेर सारा प्यार मिला।
0: पछतावा तो नहीं होता?
1: बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं।
0: और अगर दोबारा आपको जन्म लेने का मौका मिल जाए, क्या बनना चाहेंगे आप?
1: अब तो मैं पूरी तरह से कहूंगी कि मैं पार्श्व गायिका या गायिका बनूंगी।
0: अच्छा, आज जबकि सक्रिय पार्श्व गायन से, प्लेबैक सिंगिंग से आप करीब करीब संन्यास ले चुकी हैं
1: जी,
0: तो मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत से अब किस रूप में आप जुड़ी हैं, क्या कर रही हैं इन दिनों?
1: जी, मैं बैठ तो नहीं सकती, ज़रूर मुझे स्टेज से बड़ा लगाव है। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत स्टेज से हुई, फिर अपना रेडियो आया, फिर फिल्में आई। मेरी एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और उसके तहत मैंने मराठी सीरियल्स बनाई हैं। पहले मैंने लाइफ मेंबर बनाई, चिरंजीव बनाई, और उसके बाद हद्दपार, और उसमें सब में मैंने थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट्स लिए हैं, और सबको, तीसरी वाली को तो यहाँ के गवर्नमेंट ने बेस्ट श्रेष्ठ सीरियल का अवार्ड दिया है, और आजकल मैं बना रही हूँ नई जावाई शोध।
0: वाह, तो कैसा काम चल रहा है?
1: अच्छा चल रहा है, अब भी मैंने पायलट सबमिट किया है और अच्छी कहानी है।
0: लेकिन ये संगीत का मामला एकदम अलग है और ये एकदम अलग, इस फील्ड में मजा आ रहा है?
1: हाँ, आपको बताऊँ, मेरा जो भाई है ना, वो डायरेक्टर है, चंद्रा बारोट, जिन्होंने डॉन बनाई थी, और वो आजकल जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो कहता है कि दीदी आप अपने पुराने गानों का आजकल कुछ रीमिक्स ऐसा कुछ करते हैं, अभी तक मैंने उस पर बड़ा ध्यान नहीं दिया है। कि एक गाना मेरा HMV का बहुत ही मशहूर हुआ था, हम तुम्हें तो कभी ना भूलेंगे, और इसकी भी एक मज़ेदार कहानी है। जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो किशोर देसाई ने इसको स्वरबद्ध किया है, हसरत जयपुरी ने लिखा है, और इस गाने में आजकल जो मशहूर जो संतूर बजाते हैं ना, शिव कुमार शर्मा, वो नए नए आए थे कश्मीर से ये इंस्ट्रूमेंट लेके, तो इन्होंने संतूर बजाया है, राम नारायण जी ने सरंगी बजाई है, और मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे श्री रामचंद्र जी भी आए थे, और ये गाना भी लोगों ने बहुत पसंद किया। सुनिए।

0: कमल बारोड़ जी, पूरी दुनिया में फिल्में बनती हैं।
1: जी
0: आप तो पूरी दुनिया घूम चुकी
1: जी
0: हैं और फिल्मों में गीत संगीत एक बहुत ही अहम पक्ष होता है, लेकिन हमारी भारतीय फिल्में जो हैं वो ज़रा अलग हट करके हैं। उनकी क्या खासियत है?
1: देखिए, हमारी हमारा जो देश है ना, मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत रिच है कल्चर में, हेरिटेज में। फोकलोर हमारा ले लो, हमारी संस्कृति ले लो, हमारी भाषाएं ले लो अलग अलग प्रांत की। और आप अगर संगीत देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह का, गुजरात का ले लो, साउथ का ले लो, आप नॉर्थ, इवन कश्मीरी म्यूज़िक में एक बात है हर जगह की। तो मैं समझती हूँ हमारा संगीत बहुत रिच है, और इसी इसी वजह से मैं जहाँ भी जाती हूँ हमारा संगीत सब जगह सुना जाता है। कुछ तो कशिश है उसमें। मेरा एक ऐसा एक इंसिडेंट आया लाइफ में कि मैं 60s में, मैंने जैसे कहते हैं ना गोपी कृष्णा और सितारा दीदी को प्रेजेंट किया अफ्रीका में, 70s में मैं पाकिस्तान जाके मेहदी साहब को यहाँ ले आई।
0: वाह,
1: और उस ज़माने में इतना हंगामा बॉम्बे में हुआ, तो जो भी अभी जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया था कि सब गज़ल सुनते थे और मेहदी साहब के दीवाने थे। पहला शो हमने लता जी के हाथ से ओपन कराया था, दूसरा शो हमने राज कपूर साहब और नौशाद साहब के हाथ से कराया था। और मैं ये कोई कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसा गज़लों का एक दौर शुरू हुआ कि बहुत सारे नाम उभर आए और अभी तक वो दौर चला।
0: कम से कम एक अच्छी शुरुआत जो भी करता है और उसका कोई अनुसरण करता है तो ये तो बहुत
1: अच्छी
0: ही अच्छी
1: बात है
0: बात
1: ना।
0: है।
1: और मुझे, मैं इतनी खुशकिस्मत रही कि इस दौरान जब मैं लाहौर गई तो वहाँ के ये मायने मेरे चार गाने किए, और मुझे मशहूर शायर का कलाम गाने का मौका मिला, जैसे फैज़ अहमद फैज़, नदीम कासमी, अली रज़ा और अहमद फराज। यहाँ मैं चाहूँगी कि ये मेरे पति देव का भी बड़ा पसंदीदा गाना है, आप ज़रूर सुनवाइए। फैज़ अहमद फैज़ की ये रचना और बोल है, आज यूं मौज दर मौज गम थम गया।

0: कमल बारोड़ जी, आपने बहुत सारे गीतकारों की रचनाएं गाई हैं, लेकिन किस गीतकार से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुई?
1: इंदिवर जी से। इंदिवर जी बहुत ही अच्छा लिखते थे और फिल्मों के लिए तो लिखते ही थे, लेकिन जब हम ऐसे प्राइवेट महफिल में बैठते थे या कहीं कहीं डिनर में मिलते थे तो हम इंदिवर जी को कहते थे, आप फिल्मी कविताएं सब छोड़ो, ये गाने छोड़ो, आप अपनी जो ख़ास चीज़ें आपने लिखी जो छुपा के रखी हैं वो कविराज निकालिए और हमें सुनाइए। और वो आप तजुब करेंगे, ऐसी ऐसी रचनाएं हमें सुनाते थे कि हमारी तो शाम बन जाती थी। बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत पढ़ते थे, उनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें इतनी सारी किताबें रखी हैं, तो फिल्मी गीत तो बहुत सहजता से अच्छे बोल लाके वो जो कहना सिचुएशन कहना चाहती थी वो कह पाते थे, लेकिन उनके प्राइवेट कलेक्शन में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं।
0: मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या खाली वक्त में, भाई संगीत का तो आनंद आदमी कभी भी ले सकता है, खाली वक्त में जब आपको मौका मिलता है तब आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे थोड़ा क्लासिकल बेस वाला संगीत हमेशा पसंद है और इसीलिए मैं गज़लों को ज़्यादा सुनती हूँ। अच्छा, गीतनुमा गज़लें लाइट सुनने के लिए ठीक रहती हैं, लेकिन जिसको गज़ल कहा जाए उसमें जब तक कुछ मुश्किलात थोड़ी बातें ऐसी ना हो, बोलों की भी सुंदरता हो, रागों का भी उसमें जो ढलना प्रॉपर हो, तो वो मैं घंटों सुन सकती हूँ, वो मुझे बहुत आनंद देता है।
0: ये बात तो सही है कि अच्छा संगीत इंसान घंटों सुन सकता है और तृप्ति नहीं होती, और इसीलिए अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पसंद का एक और बढ़िया सा गीत आप हमारे सुनने वालों की नज़र करें।
1: आनंद जी भाई ने मेरे लिए चार खास गाने कंपोज किए थे, इंदिवर जी ने लिखे थे, और उसमें से एक गाना सुनाना चाहूंगी, प्यार भरा दिल तोड़ गए।

0: कमल बारूड जी, आपने बहुत सारे संगीतकारों के निर्देशन में गीत गाए हैं, तो कोई रोचक संस्मरण आपको याद आता है?
1: कभी कभी हम 3-4 गाने भी दिन में रिकॉर्ड करते थे। मेरी भी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं भी इतनी, मतलब लोग कहते हैं हमने 7 गाने गाए, 10 गाने गाए, लेकिन मैंने एक बार 4 गाने गाए थे, तो 2 गाने एक तरफ था, फिर जब शाम को आके 2 गाने यहाँ किए, और एक गाना ऐसा था जिसमें हम लता जी, रफ़ी साहब थे, मुकेश जी थे, और मैं फिल्म थी मैं शादी करने चला, अपने म्यूज़िक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो गाने का माहौल इतना सुंदर हुआ था और इतने एक ही साथ सब सिंगर्स के साथ, मैं कभी भूल नहीं सकती वो। और मुकेश जी का तो ऐसा था, मुझे बहुत छेड़ते थे और मुझे कहते थे कि, अभी पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते थे कि हमारी इंडस्ट्री में कम खूबसूरत सिंगर्स हैं, उसमें से कमल जी है। मेरा चेहरा लाल हो जाता था और हमेशा छेड़ते रहते। बहुत अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे वो इंसान थे।
0: शुरू में आपने जिक्र किया स्टेज का
1: जी,
0: कि आपने बहुत सारे आर्टिस्ट, हालांकि बहुत नामी ग्रामी आर्टिस्ट हैं, लेकिन स्टेज पर उनको इंट्रोड्यूस करने की एक परंपरा भी आपने शुरू की
1: जी।
0: तो ये सिलसिला अंदाजन कितने सालों से चल रहा है और क्या अभी भी आप?
1: 30-35 साल से चल रहा है भैया। मैं मॉरिशस गई थी तब, मैं कहते ना कि बहुत ही छोटी थी, लेकिन उस जमाने में हमने 60 शोज किए, और आज लोग जो मॉरिशस जाते हैं विजिट करते हैं उनको पता है कि इतना छोटा आईलैंड है, 40 miles लॉन्ग आईलैंड है, और उस जमाने में छोटे छोटे छोटी छोटी जगहों में जाके हमने शो किया था। लेकिन एक था कि नहीं इंडियन और क्लासिकल सब डांस और पाए का शो, ये नहीं कि ऐसे कुछ एंटरटेन करने के लिए शो बना दिया, बाकायदा 6-6 महीने शो की तैयारियां होती थी।
0: अच्छा।
1: आजकल का शो और उस जमाने का शो में ये फ़र्क है। आज क्या होता है कि आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके डांस करते हैं, उस जमाने में हीरोइन नहीं आती थी, तो हमें वो आर्टिस्ट स्टेज के पसंद करके रिहर्सल करा के फिर उसी पॉपुलर गाने की रिहर्सल उन पे करा के वो गाने हम वहाँ पेश करते थे।
0: तो हम ये कह लें कि आप हमारे सांस्कृतिक दूध का काम बरसों से कर रही हैं। तो
1: बड़ी अच्छी बात कही आपने।
0: इंडियन म्यूजिक को, इंडियन आर्ट को, फिल्म
1: को रही है।
0: तो अंदाजन कितने मुल्क आप घूम चुकी होंगी, कौन कौन से मेजर जो कंट्रीज हैं?
1: जी, मैं इंग्लैंड बहुत सारे शो हमने किए हैं, फिर हम हॉलैंड गए हैं, फिर हम जिम्बाब्वे गए हैं, ईस्ट अफ्रीका में हमने शो किए हैं, मॉरिशस में किए हैं, हिंदुस्तान में सब जगह किए हैं। तो ये तो चालू है, अभी भी बात चल रही है, शायद हम ईस्ट अफ्रीका जाएं कोई अच्छे कलाकार के साथ।
0: तो कैसा रिस्पांस रहता है लोगों का?
1: बहुत अच्छा रहता है, और वो जो स्टेज का जो एक ओवेशन है ना, मैंने आपको बताया कि मैं आशा जी को 78 में आर.डी. बर्मन और आशा जी को लेके गई थी, और उस जमाने में पहली बार हमने ये प्रयोग किया था मेरे पति देव ने कि हम लाइटिंग के साथ, उस वक्त नया नया था ये सब, आजकल तो कहाँ बात लेजर और सब पहुँच गई है। हमने इतना अच्छा शो बनाया था कि उस वक्त वहाँ पे हिंदुस्तान के जो फिल्मी इंडस्ट्री के नामी लोग हैं वो शूटिंग के लिए वहाँ आए हुए थे, और सब शो में आए आशा जी का। और यश चोपड़ा ने मेरे पति देव को कहा था कि आपने तो पोएट्री खड़ी कर दी स्टेज पे, आई थिंक इट वाज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक नशा है स्टेज का, एक नशा है अच्छी चीज़ पेश करने का, और आरडी भी कह रहे थे कि इट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज, यू नो।
0: कमल जी, अभी आपने अपने पति का जिक्र किया, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जीवन साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जिंदगी में, और खासतौर से जब वो कलाकार हो तो वो ऐसे ही जीवन साथी चाहता है कि जो उसकी कला को समझे और उसको कदम कदम पर उस तरह का सपोर्ट करे कि वो जिस फील्ड में उसमें और आगे जा सके।
1: मैं बहुत लकी रही हूँ, उन्होंने हमेशा मेरी जो विश है उनको सराहा है, और इसीलिए मैं ज़्यादातर 6 महीना यहाँ 6 महीने वहाँ रहती हूँ। इसका यही कारण है कि वो कहते हैं कि तुम एक कलाकार हो और तुम ज़्यादा दिन बाहर नहीं रह सकती हो। उन्होंने 15 साल तो मेरे साथ रहे कि हमने सारी ये कहते ना हमारी एक्टिविटीज़ रखी, और अभी भी वो कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी खुशी वहाँ मेरी खुशी।
0: अब ये मुझे बताइए कि संगीत तो आपका पहला शौक हो गया
1: जी,
0: उसके बाद में दूसरे शौक और कौन कौन से हैं?
1: बहुत सारे हैं, मैं पढ़ती बहुत हूँ। अच्छा। और बचपन में तो मुझे तैरने का बड़ा शौक था, और कुकिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ मैं। तो समझे ना आप। तो और कुछ बनाने का, कुछ कहते हैं ना क्रिएशन का शौक है, बस स्टेज पे करूं मैं या स्मॉल स्क्रीन पे करूं या खुद गाऊं, अगर आवाज़ साथ नहीं देती है तो मैं फिर ऐसी प्रवृत्ति में रहती हूं कि जहां मेरे मन को एक कहते हैं ना खाना मिले।
0: तो ये बताइए मुझे, आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया बार बार ईस्ट अफ्रीका का,
1: जी,
0: तो वहाँ कौन सी जगह जहाँ आपका बचपन बीता, क्या पैदाइश आपकी वहीं की है?
1: जी, मैं दार इस्लाम की रहने वाली हूँ, और आपको बताऊँ कि दार इस्लाम इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग टहिटी, बहामास छुट्टियों में जाते हैं ना, हमारी वहाँ का जो हमारा समुंदर है, नीला पानी, सफेद रेत, पाम ट्रीज, एक किस्म से स्वर्ग है वो, इतनी खूबसूरत जगह है।
0: कमल जी, फिल्मों में तो आपने गाया ही, लेकिन पार्श्व गायन से हट करके गैर फिल्मी रचनाएं भी गाई होंगी, उनके बारे में बताइए।
1: बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने। पहले तो यहाँ मैं ये जिक्र करूँगी कि मेरा पहला LP म्यूज़िक इंडिया ने किया था, वो पुरुषोत्तम उपाध्याय ने बनाया था, और वो LP का नाम था झनकार। उसमें 8 रचनाएं थी। और दूसरा मैंने थोड़े कुछ 8 साल पहले एक एल्बम निकाला था, आदाब, जो शेखर सेन ने म्यूज़िक दिया था, उसकी एक रचना आप सुनाइए। और बोल हैं निगाहें नीची किए,

0: बहुत खुशकिस्मत हूँ, मेरे ख्याल में गलत व्यक्ति को इन्होंने दे दिया है, लेकिन मिला जरूर है मुझे। अच्छा। मैं 5 साल की थी तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, जब मैं दारुस्सलाम में थी तो मुझे गोल्ड मेडल मिला था, फिर मैं जब यहाँ आई तो मुझे साइकिल कॉन्टेस्ट में मुझे बड़ी शील्ड मिली और वो भी एक किस्म का प्राइस था, फिर सुरसिंगार संसद की तरफ से फिल्म तानसेन बनी थी जिसमें मैंने महेंद्र कपूर के साथ एक क्लासिकल ड्यूएट गाया था, उसके लिए मुझे एक ट्रॉफी मिली थी, और लीलूड़ी धरती के लिए मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला।
1: अब चूंकि ये प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव आ चुका है
0: जी,
1: आप क्या कहना चाहेंगी, कोई बात मन में रह गई हो जो आप हमारे सुनने वालों से कहना चाहती हैं?
0: जी, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि अवार्ड्स तो लाइफ में मिलते रहते हैं, शायद और भी मिलेंगे आगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी कि भाइयों और बहनों, आप मेरे गानों को सुनिए, जैसा पहले आप मुझे प्यार देते थे वैसा ही प्यार अब भी दीजिए, तो शायद कुछ और गाने गाने का मेरा दिल करेगा और आपके सामने मैं वो पेश कर सकूं।
1: क्या बात है, इस वक्त तो आपके किसी गीत में खोने को जी चाहता है।
0: बॉम्बे में जब भी मॉनसून का मौसम होता था, काले काले बादल मुंबई शहर पे आ जाता था, तो आपका रेडियो स्टेशन ये गाना जरूर बजाता था और वो गाना है गरजत बरसत सावन आयो।

0: कमल बारोड़ जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए, सेल्यूलॉइड के सितारे के लिए वक्त दिया, और इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत और दिलचस्प बातचीत आपसे हुई, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और यही शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं आपके प्रति कि जो सक्रियता आपने कला के क्षेत्र में अभी भी बनाए रखी है, वो इसी तरह से बनी रहे और इसी तरह से आपको सफलताएं मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया, इतना सारा मान दिया, सम्मान दिया, लोगों के सामने फिर से बोलने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।

सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग था माणिकराव गायकवाड का और विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेलुलॉइड।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को है, कुछ ही देर में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टरन फ्रॉस्टडॉटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री श्री पेटरी ओर्पो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वैश्विक स्थिति और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं को भारत के लिए व्यापारिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने, तेजी से सुधार करने, अधिक लचीलापन विकसित करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज 6 लेन वाले एक्सिस नियंत्रित DND सोहना राजमार्ग संख्या 148NA का निरीक्षण किया। श्री गडकरी ने कहा कि दिल्ली NCR क्षेत्र में 87,000 करोड़ रुपए की लागत वाली लगभग 1,850 किलोमीटर की सड़क परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 225 किलोमीटर लंबी 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन है। श्री गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, सुरंगों और एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से सरकार दिल्ली NCR के पूरे परिवहन नेटवर्क का आधुनिकीकरण कर रही है और इसे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार कर रही है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन योजना के लिए 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये परियोजना हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर की क्षमता को बढ़ाएगा। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए भी 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया है। साथ ही जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित बुरी तरह बीमार या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और ऋषभ पंत की जगह KL राहुल को उप कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। विराट कोहली, KL राहुल और ईशान किशन भी टीम में शामिल है। जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. The third India-Nordic summit began in the Norwegian capital, Oslo, today. Prime Minister Narendra Modi, along with his counterparts of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark, are participating in the summit. The meeting is aimed at strengthening sectoral cooperation between India and the Nordic countries following the previous summit held in Copenhagen, Denmark in 2022. Our correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
3: The Nordic countries generate over 90% of their electricity from fossil-free sources. India has its own ambitious green transition goals, so it would help in harnessing renewable energy sources like wind, hydropower, biomass, geothermal with the help of their expertise. The most concrete step taken towards the collaboration was yesterday when India-Norway relations were upgraded to green strategic partnership. It will help Norwegian companies to innovate and invest in sectors like green hydrogen, blue economy and circular economy. India will also be participating in Nor Shipping 2027 with an India pavilion. This will ensure knowledge sharing in shipbuilding and also green shipping. Today's third India Nordic summit will definitely give an impetus to this collaboration on the green energy front. Sangeeta Godbole, Akashvani News, Oslo.
2: From Norway, Prime Minister Modi will travel to Italy today on the fifth and final leg of his five-nation tour. More from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
1: Prime Minister Narendra Modi is all set to arrive today in Italy for the final stop of his five-nation tour. And the visit is expected to give a fresh push to India-Italy's strategic ties across several important sectors. Collaborations related to trade, investment, and industrial partnerships are likely to be announced as both countries are looking to strengthen their economic engagement and exploring new areas of cooperation. Trade ties that are already on strong footing are expected to grow even further after the high-level talks during the visit. Suparna Bhatia for Akashvani from Rome.
2: India and Sweden have emphasized that cooperation will define the pathway to shared prosperity and a sustainable future at a moment of global uncertainty. In an article written by Prime Minister Narendra Modi and his Swedish counterpart, Ulf Kristersson, which was published in the National Daily today, it was highlighted that at a time of global uncertainty, energy insecurity and economic divisions, the world must choose between working alone or strengthening international partnerships. The Kremlin has confirmed that Russian President Vladimir Putin will attend the BRICS summit scheduled to be held this year in New Delhi under India's chairmanship. The Russian embassy in South Africa, in a post on social media platform X, cited an aide to Putin, Yuri Ushakov, as saying that the Russian president will attend the summit from September 12 to 13. This will be Putin's second visit to India in less than a year. Defense Minister Rajnath Singh today reached Seoul in South Korea on a three-day official visit. In a social media post, Mr. Singh said that the visit is aimed at further strengthening India-Republic of Korea defense cooperation and strategic partnership. He added that the visit will provide an opportunity to deepen bilateral ties and enhance collaboration in areas of mutual interest. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today called for deeper collaboration between industry and government to advance ease of doing business, enhance India's competitiveness and accelerate the country's journey towards Viksit Bharat. The minister was speaking at the India Business Reform Summit 2026 in New Delhi. The Supreme Court has allowed euthanasia for rabid, incurably ill or demonstrably dangerous stray dogs for the first time, citing the need to protect human life and public safety. A bench comprising Justice Vikram Nath, Justice Sandeep Mehta and Justice N.B. Anjariya issued a series of directions aimed at addressing the growing stray dog population across the country. Meanwhile, the top court dismissed pleas seeking a recall of its earlier order on the relocation and sterilization of stray canines, as it observed that the right to live with dignity encompasses the right to move freely without the threat of harm from dog bite attacks. In IPL cricket, today Rajasthan Royals will take on Lucknow Super Giants in Jaipur at 7:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad confirmed its place in the playoff, defeating Chennai Super Kings by 5 wickets at M.H. Chidambaram Stadium. And that is the end of this news bulletin.
4: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला. आज शाम के 5:10 इस समय हुए हैं. ये वक्त है संध्याकालीन भजनों का, श्रोताओं. और आज फिल्मों से कुछ भजन आपको सुनवाने हम जा रहे हैं. पवन पुत्र हनुमान फिल्म का ये भजन सबसे पहले दीपक माफ कीजिएगा, सरस्वती कुमार दीपक का लिखा ये भजन है, चित्रगुप्त का संगीत और आवाज मोहम्मद रफी की।

फिल्मों से कुछ भजन इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। महेंद्र कपूर की आवाज में नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में प्रदीप का लिखा ये भजन

फिल्मों से भजन इस समय इनका आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने इसे ट्यून किया है और अगला भजन आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडेकर और चंद्राणी मुखर्जी की आवाजों में दुर्गा माँ फिल्म से गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से कुछ भजन। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब लीजिए सुनिए युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा मंच।

शाम के 5:30 हुए और हाजिर हो गए हम युवा साथियों के लिए लेकर के कार्यक्रम युवा मंच। और कार्यक्रम युवा मंच में आज वक्त है एक नए सफर पर निकलने का, जहां हर मोड़ पर होंगी कुछ नई कहानियां, हर राह पर एक नई मंजिल और हर शहर में छुपे होंगे कुछ अनगिनत रंग। क्योंकि आपका अपना यूथ प्रोग्राम युवा मंच, इसमें अब शुरू हो रहा है बिल्कुल एक नया सेगमेंट जो है सैर सपाटा। कहीं पहाड़ों की ठंडी हवा, कहीं समंदर की लहरों का शोर, कहीं गलियों में बसी पुरानी यादें, तो कहीं शहरों की जगमगाती शामें, भारत की खूबसूरत वादियों और रंग बिरंगी संस्कृतियों की सैर करवाने आ गया है युवा मंच कार्यक्रम में आपका अपना नया सफरनामा सैर सपाटा। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त नीलम। और आज की सैर सपाटा में हम निकल पड़े हैं भारत के उस खूबसूरत राज्य की ओर, जहां हर मोड़ पर पहाड़ मुस्कुराते हैं, नदियां गीत गुनगुनाती हैं और बादल धरती को चूमते नजर आते हैं। जी हां, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड की। तो दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिए अपनी कल्पनाओं की, दिल को थोड़ा पहाड़ों जैसा खुला छोड़ दीजिए और तैयार हो जाइए एक सुरीले सुहावने सफर के लिए, जहां होंगे खूबसूरत नज़ारे, रोमांच, संस्कृति और साथ में शानदार फिल्मी गीत।

0: सफर की शुरुआत इस बेहद खूबसूरत गीत के साथ हुई और इस गीत के साथ हमारा ये सफर और भी हसीन हो गया। दोस्तों, उत्तराखंड भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक बेहद खूबसूरत राज्य है। इसे देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पवित्र धाम मौजूद हैं। लेकिन उत्तराखंड सिर्फ धार्मिक पर्यटन के लिए ही नहीं बल्कि एडवेंचर, प्राकृतिक सुंदरता और लोक संस्कृति के लिए भी बहुत ही मशहूर है। सबसे पहले चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की तरफ। हरी भरी वादियों के बीच बसा ये शहर अपनी शांत फिजाओं और शिक्षा संस्थानों के लिए जाना जाता है। यहाँ की फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की इमारत बेहद आकर्षक है। इसके अलावा रोबर्स केव और सहस्त्रधारा भी पर्यटकों को खूब पसंद आते हैं। और अगर देहरादून पहुंच गए तो फिर मसूरी जाए बिना तो सफर अधूरा माना जाता है। पहाड़ों की रानी कहलाने वाली मसूरी हर मौसम में खूबसूरत लगता है और यहाँ आकर्षक होते हैं, इसकी ओर खींचे चले जाते हैं पर्यटक। मॉल रोड की चहल पहल, कैंपटी फॉल्स का झरना, गन हिल में दिखाई देने वाले हिमालय के दृश्य, हर चीज मन को मोह लेती है। शाम के समय जब बादल सड़कों पर उतर आते हैं तो ऐसा लगता है मानो हम किसी सपनों की दुनिया में आ गए हों। यहाँ की ठंडी हवा और गर्मा गर्म मैगी का लुत्फ, बस उसकी तो क्या ही कहने हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक, नैनीताल की। झीलों का शहर नैनीताल अपनी शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। नैनी झील में नौका विहार का अनुभव बेहद खास होता है। नैना देवी मंदिर, स्नो व्यू पॉइंट और टिफिन टॉप जैसी जगहें यहाँ मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं। रात के समय झील में जगमगाती रोशनी का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे आसमान धरती पर उतर आया है। उत्तराखंड रोमांच पसंद युवाओं के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप उत्तराखंड का रुख कर सकते हैं, और अगर एडवेंचर्स के आप शौकीन हैं तो ऋषिकेश आपका इंतजार कर रहा है। गंगा किनारे बसा ऋषिकेश योग नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल दुनिया भर में लोग योग और मेडिटेशन सीखने के लिए आते हैं, लेकिन युवाओं के बीच ऋषिकेश खास तौर पर रिवर राफ्टिंग के लिए लोकप्रिय है। गंगा की तेज लहरों के बीच राफ्टिंग का रोमांच दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। इसके अलावा बंजी जंपिंग, कैंपिंग और ट्रैकिंग जैसी गतिविधियां भी यहाँ खूब होती हैं। शाम को गंगा आरती का दृश्य मन को अद्भुत शांति देता है। और श्रोता, उत्तराखंड में बहुत सारी जगहें ऐसी घूमने के लिए हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम में आगे बात होगी उत्तराखंड की लोक संस्कृति के बारे में, यहाँ के पहनावे के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, साथ ही साथ यहाँ के खान पान से जुड़ी बातें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
1: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
2: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
1: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
2: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
1: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
2: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
3: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
4: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
3: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
4: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
4: inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
3: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
4: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
4: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
3: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
4: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.

ये वमंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है। और कार्यक्रम युवा मंच के नए सेगमेंट सैर सपाटा में आज बात हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के बारे में।

सैर सपाटा के अंतर्गत उत्तराखंड की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब चलते हैं उत्तराखंड के धार्मिक और आध्यात्मिक सफर की ओर। चारधाम यात्रा यहां का सबसे बड़ा आकर्षण मानी जाती है। केदारनाथ जहां शिव की दिव्यता महसूस की जाती है, बद्रीनाथ जहां अलकनंदा के किनारे आस्था बहती है, गंगोत्री और यमुनोत्री जहां भारत की जीवनदायिनी नदियों का उद्गम होता है। इन स्थानों की यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य का भी अद्भुत अनुभव कराती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां और मंदिरों की घंटियां मन को भीतर तक छू जाते हैं। बात करें यहाँ की संस्कृति की तो उत्तराखंड की संस्कृति बेहद समृद्ध है। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और मेहमान नवाज हैं। गढ़वाली और कुमाऊनी यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। यहाँ के लोकगीत और लोक नृत्य लोगों की जीवन शैली और प्रकृति से उनके जुड़ाव को दर्शाते हैं। त्योहारों की बात करें तो हरेला, फुलदेई और नंदा देवी मेला यहाँ बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। अब जरा बात करते हैं उत्तराखंड के स्वादिष्ट व्यंजनों की। दोस्तों, यहाँ का खाना जितना सादा होता है उतना ही स्वादिष्ट और पौष्टिक भी। काफुली, भट्ट की चुकाणी, आलू के गुटके, झंगोरे की खीर और बाल मिठाई यहाँ की प्रसिद्ध व्यंजन है। पहाड़ों की ठंडी शाम और साथ में गरम गरम पहाड़ी खाना सच में एक अलग ही आनंद देता है। उत्तराखंड की सैर में आगे बात करते हैं। श्रोताओं, अगर आप वन्य जीव और प्रकृति प्रेमी हैं तो उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क भी जरूर घूमिएगा। यहाँ भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ बाघ, हाथी, हिरण और कई दुर्लभ पक्षी देखने को मिलते हैं। जंगल सफारी का अनुभव बेहद रोमांचक होता है। सुबह सुबह जंगल की ताजी हवा और पक्षियों की आवाजें मन को ताजगी से भर देती हैं। इसके अलावा ओली भी युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय रहा है। सर्दियों में यहाँ स्कीइंग का मजा लेने देश विदेश से पर्यटक आते हैं। बर्फ से ढकी ढलानों पर स्कीइंग करते लोग और चारों ओर सफेद चादर मानो कोई फिल्मी दृश्य हो। उत्तराखंड की यात्रा का सबसे खास हिस्सा यहाँ का मौसम माना जाता है। गर्मियों में यहाँ की ठंडी वादियाँ राहत देती हैं तो सर्दियों में बर्फबारी का आनंद पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाता है। मानसून में पहाड़ हरियाली से भर जाते हैं। हालांकि इस मौसम में यात्रा करते समय थोड़ी सावधानी हमें ज़रूर बरतनी चाहिए। अगर आप उत्तराखंड जाना चाहते हैं तो आप किसी भी मार्ग से इस राज्य की ओर यात्रा कर सकते हैं। रेल और हवाई मार्ग तो हैं, सड़क मार्ग एक आम मार्ग है। इस मार्ग से आप आसानी से यहाँ तक आ सकते हैं। तीनों मार्ग आसानी से यहाँ तक पहुँचाते हैं आपको। देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट राज्य का प्रमुख हवाई अड्डा है। रेल मार्ग से देहरादून, हरिद्वार, काठगोदाम जैसे स्टेशनों से जुड़े हुए हैं और उत्तराखंड के लिए बस तो आपको हर कहीं से आराम से मिल जाएगी। और अपने निजी वाहन में अगर आप आते हैं तो आराम से आइए, लेकिन थोड़ा सावधानी से ड्राइव कीजिए। और जब भी ऐसे स्थानों पर आप आते हैं तो पर्यावरण के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ न करें। पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएं।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
3: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केटन, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ, ESP, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
2: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 52,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TMC अप्लाई।
4: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
5: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.72 lakhs.
4: Yes, ₹9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
5: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display, and 6 airbags as standard.
4: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
6: Nexa.
7: तो दोस्तों, उत्तराखंड सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक एहसास है, जहाँ प्रकृति हमें सुकून देती है, नदियाँ हमें बहना सिखाती हैं और पहाड़ हमें मजबूत बनाना सिखाते हैं। तो अगर जिंदगी की भाग दौड़ से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, अगर बादलों के बीच कुछ पल बिताना चाहते हैं और अगर खुद से दोबारा आप मिलना चाहते हैं, तो जरूर जाइए उत्तराखंड। और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है युवा मंच का आज का ये सैर सपाटा सेगमेंट आप को इस सेगमेंट में जो आज हमने यात्रा करवाई आपको पसंद आई होगी। अगले कार्यक्रम में यानी अगले मंगलवार को सैर सपाटा में फिर आपसे मुलाकात होगी और मिलेंगे किसी नई जगह, नए किस्से और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपनी दोस्त एंड होस्ट नीलम को और चलते चलते सुनिए ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:55 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में जानकारी हमारी सभा के शेष कार्यक्रमों की, जिन्हें हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले किया जाएगा। कार्यक्रम विवरण के तुरंत बाद 6:00 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार। 6:06 पर लुत्फ उठाइएगा सदाबहार संगीत का। 6:30 पर किसान बागवान भाई बहनों के कार्यक्रम मौजियां गनाईदियां में आज श्रोता सुनेंगे पहाड़ी नाटक नोखे लोग नोखियां गल्ला का पुनः प्रसारण। शाम 7:00 समाचार आप सुन सकते हैं। 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 7:10 पर कार्यक्रम किसान वाणी में आज की बात का विषय होगा शून्य लागत प्राकृतिक कृषि। साथ ही साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी दी जाएगी, भेंटवार्ता भी सुनवाई जाएगी और किसान बागवान भाई बहनों का मनोरंजन किया जाएगा लोकगीतों के साथ। शाम 7:42 पर एक बार फिर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी शिमला के स्टूडियोज प्रादेशिक समाचारों के लिए। रात 8:00 आप लुत्फ उठा सकते हैं विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का। देशगान रात 8:30 पर सुनवाए जाएंगे। रात 8:45 पर समाचार संध्या और रात 9:00 News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। रात 9:15 का समय रहता है कार्यक्रम एक ही कलाकार के प्रसारण का और कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज गायक गायिका क्रम में हम आपको सुनवाएंगे गायक कलाकार मनहर उधास द्वारा गाए कुछ फिल्मी गीत। रात 9:30 पर आप सुनेंगे हिमाचली गीतों और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांदी। रात 9:30 से 10:30 तक आप इस कार्यक्रम में लोकगीतों का आनंद ले सकते हैं। और रात 10:30 पर सुनना ना भूलिएगा पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। सभा के अंत में समाचार सुने जा सकते हैं। 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार बुलेटिन आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। ये था कार्यक्रमों का विवरण जो हमारे केंद्र से इस सभा में प्रसारित और रिले किए जाएंगे।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:58 हुए हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, जिन्हें आप 6 बजे सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप वरुणा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि पंचायती राज और स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव परिणामों की वास्तविक स्थिति जिला परिषदों और पंचायतों के निर्वाचन के साथ ही स्पष्ट होगी। जगत सिंह नेगी ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा शहरी निकाय चुनाव नतीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है, जो सही नहीं है, क्योंकि अभी इन संस्थाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का चयन होना बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा नेताओं का बयानबाजी में कोई मुकाबला नहीं है और वे हमेशा बढ़ा चढ़ाकर दावे करते हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और होती है।
1: नगर निगम के जो हमारे नगर निकाय के चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस समर्पित लोगों की तादाद बढ़ी है। अभी समय है, गठन होने दो, नगर परिषदों को गठन होने दो, स्पष्ट हो जाएगा कहां कहां के अध्यक्ष कौन बनाता है, क्योंकि अभी पंचायतों और जिला परिषदों के चुनाव होने हैं, उसको प्रभावित करने के लिए ये लोगों को गुमराह कर रही है, जब हकीकत और है। इसमें जो चुनाव हुए अभी, जिनके रिजल्ट निकले हैं, चाहे परिषद के है चाहे हमारे नगर पंचायतों की है, उसमें कांग्रेस के भारी तादाद में लोग जीते हैं।
0: जगत सिंह नेगी ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और युद्ध का हवाला देकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई और बढ़ जाएगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नगर निकाय चुनावों में जीत के झूठे आंकड़े पेश कर पंचायत चुनावों को प्रभावित करना चाहते हैं। जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान शंकर देहरा में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निकाय चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विदाई की शहनाई बजा दी है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों के बाद अब प्रदेश की ग्रामीण जनता भी कांग्रेस की चुनावी गारंटियों के पूरा ना होने के कारण खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है और पंचायत चुनावों में सरकार को कड़ा सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा कि जब उसने नगर निकाय चुनावों में आधिकारिक प्रत्याशी ही घोषित नहीं किए, तो अब वे किस आधार पर जीत के दावे कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने दावा किया है कि प्रदेश में नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस की भारी जीत हुई है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि भाजपा नेता चुनाव नतीजों को लेकर झूठे दावे कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत ने साबित कर दिया है कि प्रदेश के लोग पार्टी के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी ने 47 नगर निकायों में से 32 में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस इससे भी अधिक निकायों में अपने अध्यक्ष बनाएगी। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च राजकीय सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने से भारत की विश्व में साख व कूटनीति और मजबूत हुई है। प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने कहा कि ये केवल एक पुरस्कार नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के बढ़ते वैश्विक गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले एशियाई नेता बन गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति रक्षात्मक से आक्रामक और आत्मनिर्भर मोड में बदल गई है। प्रोफेसर सिकंदर ने कहा कि विश्व शांति, स्थिरता और विकास के लिए आज दुनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व मित्र दृष्टिकोण पर पूरा भरोसा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में राज्य की गोविंद सागर और महाराणा प्रताप सागर झीलों को राष्ट्रीय जलाशय विकास कार्यक्रम में शामिल किया जाना प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने बीते दिनों लोकसभा में नियम 377 के तहत ये मामला उठाया था। इस पर केंद्रीय पंचायती राज व मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने एक पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि इन दो जलाशयों को देश भर में चिन्हित 400 जलाशयों की सूची में शामिल किया गया है, जिनका एकीकृत विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकीकृत

0: जलाशय विकास कार्यक्रम में शामिल होने से इन क्षेत्रों में आधुनिक अवसंरचना का विकास, सुविधाओं का विस्तार और स्थानीय लोगों के लिए नए आर्थिक अवसर सृजित होंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला। शाम के 6:05 हुए हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है सदाबहार संगीत। दोस्तों, दिन भर की भागदौड़ के बाद अब वक्त है थोड़ी राहत का, थोड़ी सुकून भरी बातों का और उन गीतों का जो शाम को और भी खूबसूरत बना देते हैं। अगले 25 मिनट आप हैं हमारे साथ और आप हमारे साथ बिताएंगे कुछ सुनहरी यादों, दिलकश धुनों और सदाबहार नगमों के साथ ये समय। शाम की ये नरम हवाएं, ढलता हुआ सूरज, दिल में उतरती कुछ मीठी सी यादें, ऐसे ही खूबसूरत एहसासों को सुरों में पिरोया है इस सदाबहार गीत ने। फिल्म आनंद का ये गीत, जिसे अपनी जादुई आवाज से सजाया है मुकेश ने, ये गीत हर उस दिल को छू जाता है जिसने कभी अपने किसी को दूर महसूस किया हो। तो आइए सुहानी शाम में हो जाते हैं और सुनते हैं ये गीत, कहीं दूर जब दिन ढल जाए।

0: शाम का ये वक्त, हल्की हल्की हवाएं और दिल में उतर जाने वाला ये संगीत। जी हाँ दोस्तों, कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो एक एहसास होते हैं, एक सफर होते हैं जो हमें भीड़ से निकालकर थोड़ा और करीब ले जाते हैं। और ऐसा ही एक टाइमलेस मेलोडी अभी आपने सुना, मुकेश जी की दर्द भरी आवाज़, योगेश के खूबसूरत बोल थे और सलिल चौधरी का यादगार संगीत।
1: करते हैं हम तुम्हें इतना
2: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
4: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
2: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
3: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
1: Nexa.
3: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
2: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
1: Nexa.
4: आकाशवाणी धर्मशाला के साथ श्रोता समय बने हुए हैं और लुत्फ उठा रहे हैं सदाबहार संगीत का। कुछ रिश्ते खत्म होकर भी पूरी तरह खत्म नहीं होते। उनकी यादें, उनकी बातें और कुछ छोटे छोटे एहसास हमेशा दिल के किसी कोने में रह जाते हैं। दोस्तों, पेश है ऐसा ही एक गीत जो शब्दों से ज्यादा एहसासों से बात करता है। गुलजार साहब की बेहद खूबसूरत शायरी, आर जी बर्मन का सोलफुल म्यूजिक और आशा भोसले जी का दिल को छू लेने वाला स्वर।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: मई धमाका आ गया है, अब घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू, पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
2: तो इंतजार कैसा, दिस में ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। TNC अप्लाई।
3: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
4: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
3: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
4: Experience

0: luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display, and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल, स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
4: सदाबहार संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। सुहावना मौसम, ढलती हुई शाम और ऐसे खूबसूरत वक्त में अगर किशोर कुमार की आवाज साथ हो तो फिर बात ही कुछ और हो जाती है। पेश है एक ऐसा गीत जो जनरेशंस का फेवरेट रहा है, राजेश खन्ना की चार्मिंग अदाएं, आर डी बर्मन का शानदार संगीत और आनंद बख्शी के खूबसूरत बोल।

0: कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां सुनने वाले सारे किसान साथियों बागवान साथियों सारे श्रोतियों जो किसान मित्र दी टियाले ते दो हाथ जोड़ी के राम राम। कने किसान साथियों अज मेरे सोगी पंच होर टियाले पर राम राम जी।
1: राम राम किसान मित्र जी। कने कार्यक्रम सुना करते सारे ही श्रोतियों जो भी पंच दी तरफ ते राम राम
0: जी। तो कार्यक्रम में मौजां ग्राइंदियां
1: जी
0: गल्ला बातें कार्यक्रम च जड़ियां सै बड़ियां अहां करनियां ने, लेकिन उसते पहला अहां सुननी एक अहां पहाड़ी हास्य नाटक
1: बिल्कुल जी
0: जी। तो सुन लैंदे हैं ना
1: जी।

0: किस रो तोड़ी तोड़ी चले, क्या लगी करना तू, छतरुआ तो खोल। हाय दिखता से कितनी भारी गर्मी है। हे सूर्य देवता, अपनी ब्राइटनेस तक हटाई दे तू, दिक्कत से आखी नहीं खुला दिया न, कने के छतरी नहीं खोला दी है। केसरो
1: अखी नहीं खुलाइया ना तो अपना छतरू ले आओ करा। मैडम जी, दुवे ये चीजा पर एडा भरोसा नहीं रखना। ए छतरू मेरे साइजे दा ही है, दुवा मानू नो एडजस्टमेंट, ठीक है ना। गा पचाओ तू कने गो क्वालुए।
0: एक दे छतरू लंदे ते तेरा सिर भी नहीं टकोआ दा इस च। रणाई प्रा, मैं अपने चादरों ने ढकी लेंगी अपने सिरे, तोड़ी तोड़ी कर छोड़, चल छोड़। आहा बाप रे, ओ मिये साहब नहीं आवा था, कने साह चढ़ी है, साह फुली है मिये।
1: गो गो तू।
0: मिये घर अंदर कितनी भारी गर्मी लगा दी, कने बाहर भी कितनी भारी गर्मी है मिये, क्या करना। चल तोड़े चल, ट्याले हेठ पहनते न पिपड़े दे ट्याले हेठ।
1: मुझे तो लगा था हम ये जड़ी ये सारी हवा ना, पता नहीं कुतू दी कठरुई क्यों आदी, कने मेरी ये इक्का ने चूई आदी। मैं बोले ओ आज मेरा पटाका हो जाना। हाय बो,
0: जिस हिसाब गर्मी पवा दी ना, पटाका तो तेरे जरूर होना है। मैं तो मी पानी की बोतल भी रखी सौगी, पर छोड़ चल उठी तक।
1: चल चल
0: चल। ओ ओड़ी के दिख दिख, ओ दूर, ओ लाल रंगे सूटे पहनी के कोई कोई आवा दी है, दिख
1: सुजा दी सुजा दी। ओ मी बड़े पारी सितारे लस्क मस्क लगी है सूटे दी। ओ खड़िया तुपा दे दे कपड़े लाए ओ परमात्मा।
0: हे भगवान, पर ये मिये लाल रंग था तिहयो प्रिय है ना, तिहयो हरी से लिया तिहे बड़ा पारी पसंद मिये लाल रंग। करे दिख ओ चोड़ा भी चुकिया, कौन लगा दी सही।
1: ओ इक नहीं है मिये, दो चार चोले लटकायो, कने तिन्ना कहे ओ ना करे दे कम्मा छड़ी करिया, जाने बड़ा कौन होगा। ए
0: कौन, अड़िए दिख सही है, सही सही है, चलियो मिये दो तीन चोले चुकी के दिख सही है।
1: ओ मिये शांति यदि नौकरी तो नहीं लगी यही
0: है, ताई मिये लाल रंग के सूटे पहनी के चली होंगी शुभ है।
1: ओ बच्ची चंपा, मिये हाड़ी शांति यदि नौकरी तो नहीं लगी यही ट्रेन च।
0: हाँ मिये ओ ही सकदा है ना, ताई लाल सूट लाया होगा तिसा ना।
1: ओ जिस हिसाबे दा इना समान चुके सही पक्का ना ट्रेन दी नौकरी मिली है।
0: रुक रुक आना दे, नेड़े आना दे, पूछ दिया न कुतां चलियो। पर ये तुप्पा परे लाल सूट लाया, लाल ही बैग चक्के, ओ मिये चपड़ा में लाल ही पहननी है सा, लालो लाल लाल परी बनी के चलियो न, पूछ दिया न।
1: खड़िया तुप्पा ए खरा फैशन कड्डे इना, जिस ये नी भी चुम्मड़नी होवे तिस ये भी

0: तो शांति है नहीं ये। ओ चंपा दिख।
1: ओ मैं दिखा दिए मैं काल खड़ी थी जो ए ही बोला दिए कि ये शांति है यह दा प्रिय रंग लाल है कने प्रिय सहेलियां असहियां ने इसे जाना के ता साड़े की औदी होनी।
0: दिमाग खराब तेरा चो चो चोले ली के हलोना। ओ शांति रुक रुक चलने को तो जनाब चो चो चोले चुकी कने दिमाग के दिख तो अपने खड़िया दोपहरा एडिया तुप्पा लाल गलाला सूट। ओ हो तेरे तो क्या कहने मिये शांति ये
1: एक नाथ नी बाकी सब गहने शांति ये।
0: दीदी कई कसर रखी ले ही, से भी पाए होनी ही मिये
2: कई निक्की साए बकी है तुहा है मैं पूछे तो अंजुते कि खड़िया दोपहरा तुहा एथु पिपलेट क्या करा दिया जान दिए फिर तो कोई मानू टोकना ही होंदा ना कने मेरे लाल सूटे तो हाँ बड़ा ओल अपू क्या नहीं सियाई लेंदी है ला तो हाँ भी लाल सूटे मेरी ठुक तुझो कह दा दुख।
1: तेरा सूट तेरी ठुक आहा कुछ नहीं बोलिया आहा तम ये यही बोला दिए हिया कि तेरा प्रिय रंग है
0: तू पचड़ी ये यो ही सदे सरे हो
2: मिंजो बड़ी गल्ला बना दिया कि शांति तू पचकता है चलियो तू हाँ कता चली है तू पच तो अंजो नहीं खड़ा दोपहर
0: मिये तो हाँ तेरे हैं चोले नहीं अनु पकड़े ए दिख पला खाली बैठी हैं माकड़ियां ने लेंगे खाने हो चोले नहीं ले अंदे हाँ चुक्की करी
1: कने मिये अंदर बड़ी भारी गर्मी दिख तो मिये टेम्परेचर क्या करना अंदर तो मिये इतनी गर्मी लग गई यहाँ सोचे बाहर बैठी हैं हाँ जो क्या पता हाँ तू मिली बहन आया उठी बार
2: तो मैं भी सही बोला दी दिखा टेम्परेचर कितना कितना गो याद आ कुनी रहना है थू इतनी भरी गर्मी मैं ता बनने अपने चोले चली पी मैं पियो क्याल ठंडे हवा फक्की के ओड़ी में उठू पर काम बनना पिछे कने टोक टकाई तो हाँ पहले करनी पता नहीं उन गां भी बस मिलनी कि छुट्टी आनी कि पता नहीं गां भी दे दी तुप्पा न पे न्यान
0: मिये शांति ये फोन करी के जांदी गुस्से ये मारी तू सारे सामान ने पैक करी ले आई आटी के तिजो फिंड वे दे पापे करे नहीं बढ़ना दिता पेरी को तू जाऊंगी शांति ये पाने मतला मिये गल के ही और होइयो ना कने ले दे मारी ते गर्मी है पर सारे मुल्क दे दे गर्मी है पेयो ता सारी दुनिया चोले चुक्की के नठा दी नहीं है तेरे हैंया गल कुछ और ही है से पता नहीं तू कह नहीं दसा दी बे बे तू इथू
2: ओहो दिमागे मत खराब कर गल कुछ नहीं है गल क्या होनी कने तुझो ते क्या डरना मैं हाँ दिखने इतनी भरी गर्मी में जालू दी ब्याई के लंदियो ना पहली बारी दिखी है नसना नहीं इथू ते क्या करना
0: तू कि जनानी मिये अपू ने ठियाई करे बेचारे फिंडुए छड़े आई फिंडुए दे पापे छड़े आई तू
2: ना ना जरा ध्यान ने गला नसी के नहीं में चलियो नस दी मेरी जुत्ती ब्याई के लंदियो पूरी गृहस्थी संभाली मैं है उन मैं इस छड़ी के नहीं नसी के लगी जाना मैं तो गर्मी कटना चली पी यू प्योक क्यों कने फिंडू फिंडू रंगा ना तिनाली दादू तिस दा दिल नहीं लगता तिस दे बगैर
3: ओ चंपा रही दे ना लगदे अपने माकड़वा है दिखवला किने ना मुड़क मुड़क लाइयो खाने सुन मेरी गल ए नी ये शांति छपा दी है के ही ए नी लगी करे तिया ना ठणा गल कुछ और ही है बैठ इसे बिठाड़ मिए पानी पूनी पियानी है करे खरबूजा खवानी है इसे ओ पाया मैं चोड़ विच काटी सी यो कने फिरी पूछ दिया इसा ते कि ओया क्या वे कायो एड्डी पड़की मरी यो ए चली कई पे ही सब कैसी छड़ी सनाई रखी दे संबे कट कन चोले च खरबूजे।

0: शांति, ठंडा पानी पी के कने ठंडा तरबूज खाई के पई ती जो ठंड की नी पई ना। पर दिख मिये सोचने वाली गल तो ये है कि इतनी गर्मी ओ आदि कै, पहले कदी नहीं हुई मिये इतनी गर्मी, कदी नहीं हुई 40 डिग्री टेम्परेचर था मिये इत्थी हो यादा पहाड़ा पर ही हो यादा। बाहर लोग क्या करा दे होंगे मिये, किन्ने जिया दे होंगे। आए तो फिर भी आले थोड़े जे रुख डाल आनी अन है ना, ये दिख पिपले की छाव है इत्थी हाँ बैठी आ दी हाँ, पर कै पवा दी इतनी गर्मी ये तो तू दस।
1: तू दसना लगी हो कि पूछना लगी हो? मिंजो क्या पता कै

0: दी इतनी गर्मी, और ना तो ठेका मैं कह लिया, मेरे घरे बतेरी गर्मी है।
1: ओहो सारे ने ठेका लेना पौंदा, आहा नी लिया दिया ठेका, दिख के सुरो में तेरा ठेका लिया, इहा दा भी ठेका लिया मैं ना, कि गर्मी क्या पोवा दी क्या पोवा दी दसा।
0: आहो कदे तेरे छेलू मैं ना सारे रुख बसुंटा दा ठेका लिया, कख नी तिन्नी बडूना दिता जड़ी ये गर्मी नी पौनी, आज सब कैसी खुआई करिए जाना करवाई करिया, ये मैडम भोली बनी ए। ओ शांति ये दिख मिये से तू
1: है, मेरे छेलुए इतना नुकसान नहीं कित्ते, इतने रुख बूटे नहीं खाते हो ना, ही दिने टुक्के हो इतने, मैं एक दो तमर तेरे खेते दे टुक्के होंगे, एक अद्धा शांति दे खेते दे खाई लेऊंगा, मैं इससे ज्यादा नुकसान नहीं कित्ते तिनी। हाँ इस पर इल्जाम मत लगांदी, गल कुछ और है।
0: ए नुकसान होया मैं विकास दे कारण।
1: अच्छा विकास दे कारण होया, बच्चू तीस जो पता लग गया ना तो तू नहीं बची जींदी।
0: ओमी केसरो तू नहीं छड़नी तिन्नी फिरी दिखी लेने हो, अग्गे बड़े भरी लोग विकास से ते जड़े हो न, बोला दे अपनी मनमानी करदा है अपनी मनमानी, कने एक गलत इसने करने पुज्जी तू नहीं रही कुसी कम्मे दी।
2: ओमी ये शांतिये मुंड तुहाड़ा ठोरिया कैस गला दिए तुसा, आम बड़ो चाचिया दा पोतरू विकास नहीं मिये, साड़ा विकास अपना विकास, इस देशे दा विकास, हरे ग्राएं दा विकास जेड़ा होआ दा ना, तिदिया बजन है बड़ी भारी गर्मी होआ दी मिये दिख पला, हा हा सूरज तैया लगा धरती लो होआ दा रोजे दा रोज।
0: इया बोलना ता देशे दा विकास, मैं सोचा हाँ दा अपना विकास, तमियो देशे दा विकास भी ता जरूरी है, जिया कि आ देथु विकास बड़ा जरूरी, ती तेथु देशे दा विकास भी ता जरूरी है, तिस बाजी काम की चलना।
2: कम चलना मिये कम कह नहीं चलना, पर दे दिया मारा पोवाइयो उन हैं, मुल्ख रुखां दे रुख बड़ी ते करां दे कर डाई ते, खड्डा नालू बंद करी ते, बड़िया बड़िया जड़िया नदियां सह बंद करी तिया, ते मिये इस विकासे दा क्या करना है, कुतु इसी चुकी के रखिए।
1: आहो मिये बड़िया बड़िया सुरंगा बनाई तिया, बड़े बड़े पहाड़ कट्टी कट्टी करे सड़का बनाई तिया, कितना विकास होया दिख कितना विकास होया।
0: ना विकास होने ते सांजो ही तालाब होया ना, फिर इस च नुकसान क्या था।
1: ओ मिये तिजो पता ही है हर सिक्के दे दो पहलू होंदे, खरा भी होंदा बुरा भी होंदा, हुण इस खरे कन्ने कन्ने थोड़ा जे बुरा भी तो होई गया, लखां रुख बढ़ोईए, हाँ पर ये है कि इना दी भरपाई तो करना पौनी है, एक रुख बढ़िया तो दस लाना पौने न, है ना, कन ए काम को नहीं करना है।
2: मैं तो बतेरा करा दी मिये, पर तू कुसी पाहे रुखा तैयार होना दे ता मेरे लाने दा फायदा होए, जान निकली आंदी मेरी रुखा लाई लाई,
1: तो मैं नहीं कर दी नुकसान, छेलू मिये बेचारा थोड़ा जिया नहीं है, कदी कदाई चली आंदा उस पास से हो, पर क्या करना, कोई गल नहीं शांति तू लाई दे अठ दस रुख।
0: मी मिंजो अल ता जरा टाइम नहीं होंदा, कालू लाने रुख बुट, मैं ते नचोले चुकी की चली ये पेयो।
1: ओ ना ना ना ना ना शांति जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना है, इन्हें रुखा लाज तह कर लेंगे ना, पर तेरे गुस्से दा लाज कितने बगैर तो तिचे जाना नहीं देना न, दस ओया क्या है, ये गर्मी दा ता बहाना है।
0: ओना क्या मिये दिखना गर्मी धुप्पा इतने सिर तालू तची याद आ, कने फेंडुए बापे मिये एक भी आइसक्रीम नहीं खुआई है, इतना भी आसरा नहीं है इन्हां दा कि 20 रुपये दी आइसक्रीम लाई के खुआई न, बस सही गल होई, रोजे दी काला आइसक्रीम पिछो रोजे दी काला, हुण मैं घर छड्डी के चली ये पईयो, मैं जाना प्योकिया ने, गर्मी में तिथु ही कट्टी के आउणी न।
2: खरा कीता तू भलीए कणा मकाया आई, बड़ा अच्छा कीता तै, पर ए जड़ियां गर्मियां बद आईयां ना रोजियां रोज, ए जड़ी समस्या तैयार होआ दी बड़ी ते बड़ी बना दी रोजे रोज, इसा दा भी कोई ना कोई हल तोपना पौना, रुख बूटे तो सांजो लाना ही पौने, पर इस दे कन्ने कन्ने और भी बड़े काम न मिये शांतिये, से हाय करना पौने। चल चल शांतिये इस गुस्से तू थूक अपने पर प्रां दे जाए के थुकिया, हाँ इथू मत थुकींदी तू हाड़ा टक्के, ओ अंबा खाना बैठी हो कालू दी, कने मिंजे नहीं लगा जे मिंजे तरबूजे दा एक मिकरू भी मिली आंगा, बैठी हो पिट्ठी घेरी करिया, इन्ना क्या समझाने है ना, मैं तो गला दी शांतिये जड़े पुराने हाड़े पानिये दे आन ना ए, जियां ए बोड़ियां होईयां कुम्मे होईये फिरी और जड़े हाड़े जल स्रोत है ना, मिये अगर इन्हें हाँ टाइम टू टाइम साफ करदे रहेंगे तो दे दई घड़िया पानी तो बरती सकते।

0: है ना, कई पानी ये ने अड़पा बे ही रहना, तीन चार चार दिन जड़ी ये पानी नहीं होवा दे, है कि क्या गलांदी तू, कटगी टाइम करिए फिर साफ सफाइया।
1: मिंजो नहीं पता, मैं ते तू ते चली पई हो इना रोजे रोजे ते रोले ते ते ना चोड़ू चुकी के मैं ते चली पई।
0: हाँ चली है तेरा गुस्सा, अली भी शांत नहीं होया, मिये शांति है घरे च, तू तू मैं चली हो रहंदी, दो पांडे होन ते जड़ी आवाज जरूर होंदी, तो इस गल क्या करना पे घरे छड़ी चली पौना, चोले चुकी चली पौना, कने आइसक्रीमा दी क्या गल गलाई ते, दूध तेरे ल चीनी तेरे ल है, ले तू बड़ा कटोरा भर तीसियो दूध ने पा चीनी पा मेवा, कने ला तीसियो फ्रिजे च, कने खा तू आइसक्रीमा, रज्जी के खा आइसक्रीमा, कने जल्लू तेरा इया भरूंगा ना तो थोड़ी थोड़ी हाँ हाँ भी खुआई दे, कने ना राखी ना चोले चाले पचा, ओ चल पिपले पचा बाँ वे साफ करे उन्दे से मिये पुन कमाए उन्दे, रुसी के कहे तू लगी अपने कर्मा बगाड़ना।
1: हाँ ये तो मैं सोचे ही नहीं, अये मैं फिनुए पापे पैरा बंदी आ दे ही, और मैं बनानी बढ़िया आइसक्रीम, मुझे सिखाया तू बनांदे कियां ने, रोज खा करनी है उन नहीं करने मैं छंदे मिनती इना दी, चल तू चल गाय हो
0: तीड़ी से भी जड़ी बैठी है पचा खाना।
2: रुक रुक थोड़ा जे रह गया, इस जो मुकाना दे, इस जो खाना दे, इस कम में मुकाना दे, फिर आई मैं भी बॉडी दी सफाई करना, जड़िए लून ही बड़ा स्वाद दिल करा दा, चट्टी चट्टी के खाई लू मुकाई दू कर, इन्हें काली पियो, चल चल आई आई,
0: चल वो चल चल चंपा चल।

0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 8999 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर बाइक एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल, स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 8999 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 8999 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
4: जी तो किसान मित्र जी, हाँ कुछ एक संदेश और उसते पहले जड़ा से पहाड़ी नाटक जड़ा से सुने है ना।
5: हाँ दिखा जड़े में नाटक होंगे, हाँ दे लोक गीत होंगे न, इन्हें बिच हाँ जो कोई ना कोई जड़ा से सुनेहा मिलता है ना।
4: बिल्कुल,
5: जितनी भी गल्ला होंगे ना, हाँ जो ये ध्यान च रखना चाहिए, इन पर अमल करना चाहिए, कने इसते सोगी जड़ा सा इन्हें सारी गल्लां जो ध्यान च रखी के अपने काम काज कमाना चाहिए है ना।
4: बिल्कुल बिल्कुल, और संजा दी बेला इस नाटक का भी जड़ा से हाँ चंगे कि सारे आनंद भी लिया होना है ना।
5: हाँ दिखा पर्यावरण के उपर हा साफ सफाई, अजकल दिखा गर्मियों का मौसम है ना।
4: हाँ जी,
5: जी कि गल हुई ही कि हाँ पीने वाले पानी के जितने भी स्रोत हैं उन्होंने साफ सफाई होनी चाहिए। दिखा अजकल बोड़िया व जी पिछे पत्ते वगैरह चढ़े होंगे रुखा के, कितना कूड़ा वगैरह पे होंगे ना
4: जी,
5: कोई सवाल ही है कोई कुछ है। तो गर्मी का मौसम है, कहना पीने वाला पानी अगर साफ सुथरा होगा तो बीमारियां जी नहीं लगनियां ना।
4: हाँ जी,
5: कने दिखा भाई इन्हें गल्ला बातें सोगी पता ही नहीं चलता कि कल जो कार्यक्रम का समय संपन्न होने जो ही है ना
4: जी। पर जाने तो पहले दस दिए कि हूँ साढ़े कार्यक्रम जो तो अंज तक पहुँचाने वास्ते तकनीकी सहयोग दिता बिपिन कुमार और कने प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र
5: पाल सिंह है ना जी,
4: जी।
5: कने इसी कने हाँ दोनों दिया अनुमति।
4: अच्छा जी, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजा गराई दिया। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम को 7 बजने को है। कुछ ही देर में पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्डिक साझेदारी का मजबूत स्तंभ है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बाद नॉर्डिक प्रधानमंत्रियों के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत नॉर्डिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: इससे पहले श्री मोदी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना था। सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा हुई। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्तरून फ्रॉस्टोदॉटर, फिनलैंड के प्रधानमंत्री श्री पेतरी ऑर्पो और डेनमार्क की प्रधानमंत्री सुश्री मेता फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीक नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आगामी नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया गया। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस क्रूर घटना में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एक दिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल 1 दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में 5वें स्थान पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीतकर प्लेऑफ की अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार।

0: एक बारी फिर ते सारे सुनने वाले किसान बागवान भाई भैन सारे श्रोतियों का टियाले पर स्वागत करते हैं। कने जिन्हें अपने रेडियो सैट हूँ ही ऑन किए हैं, दस दिए कि मैं किसान मित्र कने मेरे सोगी अज हैं पंच होर
1: जी। हाँ, टियाले पर सारे का स्वागत भी कर लिया और कने कने जिहड़े से कार्यक्रम जिहड़े से किसान बाणी सारे
0: हाँ
1: शुरू हो गया है ना।
0: बिल्कुल हाँ जी, कहना देखा हाँ दे किसाना कहना बागवाना पशु पालक पूरा दिन कम कमा ही आंदा ना
1: जी।
0: इस वेले भी अहां दा जेड़ा किसान है पशु पालक भाई है सह अपने माल बच्छू जो घा पतरा कोई पहाड़ा भरोना डंगरे दूने दिखा कर दे जिया कोई जेड़ी बकरी पालन का काम करा सब दिखा दे कोई दो बकरियां घर नहीं आई अज है ना
1: हाँ
0: घोड़ा दे छेलुआ कोई ता ता भी किसान जड़ा से अपने कम्मे च पूरा मस्त रहता ना
1: रात दिन जड़ा से मेहनत करता और
0: हाँ
1: उसकी मेहनत का जड़ा से फल उन्हें जो मिलता है अगर ईमानदारी ने यहाँ काम करना है ना।
0: हाँ
1: उस दे कन्ने कन्ने देखा तो हाँ गर्मी भी जड़ी इसे लगातार बधा कर दी और आज भी जड़ा से प्रचंड गर्मी हुई है साढ़े
0: बिल्कुल
1: इलाके च ना।
0: दो तीन दिन ते जड़ा से जड़ी जिसी बोलते ना बड़ा धुप्पा सेका बड़ा पवा दा ना
1: हाँ हाँ पर गल
0: हाँ
1: ठीक है क्योंकि हुण गर्मी दा मौसम और गर्मी पौना भी चाहिए है क्योंकि
0: हाँ
1: अजकल गर्मी दे मौसम च गर्मी होगी ता ही अगां बरसात
0: हाँ
1: जी
0: जी
1: इसे बरसात होनी है
0: हाँ
1: ना।
0: जी। कल देखा हूँ अहाँ दे किसान साथियों जी अपनी पिछली फसल जड़ी है सै समिट्टी की समुट्टी के से ना दाने पेड़ूआ पाई ले है ना
1: हाँ जी
0: कने इस ते सोगी हूँ अगला जियाँ जेड़ा खरीफ का मौसम शुरू होई है तो हूँ खरीफ दियाँ तेना तैयारियां करनियाँ हूँ कौन तो धाना का कुतू बीज लियाना कोई छली का सोयाबीन का इस ते सोगी
1: मक्की दा
0: सब्जी
1: है मक्का दा
0: हाँ
1: है
0: कोई
1: ना।
0: भिंडियाँ नहीं कई बार अहते किसान साथी हैं कुछ भिंडी भी बीजी ही तो सर जी पिछले चल बरखा हुई सर नहीं जमिया ने
1: जी जी
0: तो दो दो बारी भी अहते किसान साथियाँ जी सर बिजाई द्वारा से करीती है तो जी अगली खरीफ दे मौसम की अहाँ गल अगर अहाँ करिए अहाँ जियाँ पिछे अहाँ जियाँ पंच जी अहाँ कणकी अपनी ले ही है ना
1: हाँ जी हाँ जी
0: देखा जी ना किसान साथियाँ प्राकृतिक विधि कन्नै अपनी फसल जो उगाया हा जितना अनाज तिना निकालिया 6,000 रुपया पर क्वांटल दे हिसाबे कन्नै जेड़ा सा सरकार ही कणक खरीदी लैनी है ना
1: अच्छा बड़ी अच्छी गल है।
0: हाँ देखा इतने अच्छे भा जड़े से अहाँ इं सोची भी नहीं सकते हे कि इतने अहम जो भा मिली हैं देखा अगर अहाँ दूए पर सोचिए ना अगर रसायन ने अगर अहाँ जितनी अगर अहाँ बेच के रसायनिक विधि करने उगाई के देखा कुतु अहाँ 2.5-3 क्वांटल बेचनी कुतु 1 क्वांटल ही तुमने पैसे मिला दे ना
1: बिल्कुल बिल्कुल जी रसायनी खादा कन्ने हाँ तैयार कर करदे किसान मित्र जी सह जी असें 2500-3000 तक जी असें पर क्वांटल के हिसाब ने जा कर दी। और इस बिच एक गल और है दिखा तो हाँ चलो हाँ ये खादा यूज प्रयोग च लाओ करते और कैमिकल्स यूज करा करते तो इस क्या होंगे कि अहाँ की लागत भी जी इसे वधा कर दी है ना
0: बता दी
1: और
0: हाँ
1: दूजे तरफ समझो जी इसे आमदनी घट हो आ दी है
0: हाँ
1: तो कुल मिलाई के जड़ा से अहाँ अगर प्राकृतिक खेती कन्ने खेती बाड़ी जड़ी से करगे विधि कन्ने तो अहाँ जो जड़ा से एक तरफ खर्चा भी घट है और
0: हाँ
1: आमदनी जड़ी से दुगना है।
0: दुगना का ना आपको ये कोई नुकसान नहीं है ना
1: हाँ
0: अहाँ जो नुकसान है ना अहाँ जिन्हें जो अपना उत्पादन बेचा कर दे ना उन्हें जो कोई नुकसान है
1: और
0: ना
1: कन्ने ही साड़ी जड़ी मिट्टी दी
0: हाँ
1: शक्ति उर्वरा शक्ति है सब भी बनी रहनी है।
0: बनी रहनी पंच जी दिखा अगर अहाँ सोचिए विचार करिए ना तो अहाँ दे देखा अहाँ दे बुजुर्गा भी हाँ जो इन्हें ही जितनी अहाँ की जमीन है ना इन्हें बेच ही तेना कमाया कमाया
1: गुजारा
0: कने
1: किता है।
0: गुजारा किया कर हाँ जो पढ़ाया लिखाया ना
1: हाँ
0: तो दिखा भी तिना दिना खेती च इतनी तकनीका इतनी मशीनरी कुछ होंगी ही है
1: नहीं
0: ना
1: होंगी नहीं होंगी
0: आज तो देखा झट मशीन आवा दियाँ खेती का काम जरा सा कितना आसान हो तो जितना ही खेती बिच जिन्या जिसी अहाँ बोलते ना आधुनिकीकरण होया विज्ञानिक विधि कन्नै खेती लगी होना मशीन आईया तो उतनी जमीना भी परले बाहर खिलियां पौना शुरू हुई
1: हाँ ये भी
0: आज
1: गल है।
0: हाँ आज दिखा हर कोई अहाँ दिखते जिन्या बड़े बड़े अहाँ दे

0: आ रहा है, आ रहा बिच दिखा कितने जेडे लाड़ा दे लाड़ खाली पई है ना।
1: जी जी
0: एक एक एक छड्डा था खाली, अगली बार गया मजबूरी जी दुए भी खाली छड़ना पई याद ही।
1: इक्की दुए दिखी के रेख देखो कर दिए।
0: हाँ, क्योंकि उजाड़ जल बद यानी था कई तब यहाँ दे किसान साथी ने सा जमीन जो बाड़ा चाहते ना,
1: हाँ जी
0: लेकिन अगर आखे बख्याड़ा नहीं बाहनी तो तिन्हें मजबूरी बिच ही अपनी खाली छड़ना पो दे ना। तो
1: बिल्कुल
0: अहाँ दी तटियाले के माध्यम से दो हाथ जोड़ी के सारे ने यही गुजारिश है, खास करके अपनी जड़ी युवा पीढ़ी है उन्होंने भी यहाँ जड़ा सा यही जड़ा सा गुजारिश कर दिया है ना कि तो हाँ भी जड़ा सा अपने घर है अपने माँ प्यो का थोड़ा तेना जो सहयोग दिया सहारा दिया कि जमीन जड़ी सै ज़्यादा खेली नहीं छड़नी है, अहाँ भी खेती बिच पूरा सहयोग जड़ा सा कर गया ना।
1: बिल्कुल, थोड़े गलाने का मतलब है किसान मित्र जी कि हाँ जो अपने ग्रां स्तर पर ये जी स्वदेशी चीज़ा जी तैयार करनी पौनी और उन्हों का
0: हाँ
1: ही उपयोग जोड़ा से अपने इलाके पर करी के अहाँ जोड़े से बाहरी जी निर्भरता है ना साड़ी से
0: हाँ
1: घटनी है। और इसते क्या होना कि अहाँ जल अपने क्षेत्र ची हरेक चीज़ उगानी है तो हरेक चीज़ का जोड़ा से उपयोग अपने क्षेत्र बिच ही करना। तो इसते क्या है कि सो बड़ी साड़ी फायदे जोड़े से होने, एक तो साड़ी मेहनत जी इसका उचित प्रयोग होना और कन्ने कन्ने अहाँ जो बाहरी जी अहां दे खर्चे होंगे न है ना
0: हाँ
1: जी, बाहर ते कोई चीज लोनी तो खर्चा तो करना पौना,
0: हाँ
1: तो सभी घटना
0: देखा
1: है।
0: कहना यहाँ दे टियाले दे ग्राम सेवक हो रहा नहीं ना
1: हाँ जी
0: इन्हें दिखा पिछले साल तो चलो ते 6,000 रुपया जल कणक का रेट होया ना,
1: हाँ जी
0: सभी प्राकृतिक खेती करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए। इसके
1: हाँ
0: बाद इन्हें जड़ी अपनी थोड़ी दी जमीन छड़ी ना कणक सच भी वाही थी सारी है जी।
1: देखा तो
0: हाँ
1: जेड़ा है यानी कि कुल मिलाए के बोलने का मतलब यही है कि हाँ प्राकृतिक खेती ने अगर खेती बाड़ी करा दें तो
0: हाँ
1: साड़े किसानों जोड़े सा फायदा ही हुआ करता है,
0: बिल्कुल
1: ताई से
0: जी
1: ना जोड़े से हूँ गांव दे गांव और अपने खेत्र जोड़े से बाई लेन।
0: जी हाँ जी। तो पंच जी जड़ी सै गल्लां बातां अहां चलदियां रहनियां टियाले पर,
1: जी
0: एक जड़ा सा जयकारा जड़ा सा महामाई दा अहां टियाले पर लगाना कना, उसते बाद फिर सुननी कहां भेंट वार्ता ना।
1: जरूर।

0: किसान साथियों, जियां कि तुहां जानदे हन कि कार्यक्रम किसान वाणी च अहां दा प्रयास रहिंदा कि हर दिन एक नित नई जानकारी अहां तुहां तक पहुंचाइए, चाहे ओह कृषि विज्ञानिकां द्वारा दित्ती गई जानकारी होवे या फिर अहां दे उन्नत किसानां कन्नै कीती गई गलबात होवे। तहसील जुआली दे ब्लॉक नगरोटा सूरियां च कन्नै ग्रां दा जिहड़ा नां से तलियाल, इत्थों मेरे कन्नै इक उन्नत किसान जिहड़े से जुड़ा करदे हन, ओह करदे ने इहनां कन्नै गलबात। राम राम जी।
1: राम राम जी।
0: जी अपना नाम दसा।
1: मेरा नाम है राकेश कुमार राणा।
0: जी राकेश जी, तो राकेश जी खेती बाड़ी करते तो? हाँ
1: हाँ जी हाँ जी।
0: अच्छा, कितना के अरसा हुई है खेती करते?
1: असा 2016 च शुरू किया था नेचुरल फार्मिंग दे कॉन्सेप्ट पर काम करना।
0: अच्छा,
1: तो असा शुरुआत की थी हल्दी कने एलोवेरा करने।
0: हाँ जी।
1: साड़ा मुख्य उद्देश्य था कि छोटे किसान कने मंझली जोत आले किसान जेड़े है ना,
0: हाँ जी,
1: सक ऐसी क्या चीजा उगाइए ताकि किसान मार्केट कने जुड़ी सके।
0: जी जी हाँ जी।
1: क्या उत्पाद होना चाहिए साड़िया जमीन च, हाँ क्या चीजा उगाइए,
0: हाँ जी,
1: ताकि तिना दी हाँ प्रोसेसिंग कने पैकेजिंग भी करिए, कने हाँ सीधे मार्केट च तिना चीजें पहुंचाइए ताकि किसान मार्केट कने जोड़न कने किसानां ने फायदा होए।
0: अच्छा,
1: तो असा 2016 च शुरू किया था हल्दी कने।
0: अच्छा,
1: तो हाँ हल्दी दियाँ अलग अलग किस्म लगाइया, तो इस असा फिर प्रोसेसिंग भी स्टार्ट की, पैकेजिंग भी स्टार्ट की।
0: हाँ जी।
1: फिर यहाँ 5-6 प्रोडक्ट लेके मार्केट च आए।
0: अच्छा,
1: तो मार्केट च सो साड़ी जी क्वालिटी थी से अहाँ जमीना दे लई के पैकेजिंग तक मेंटेन रखी।
0: हाँ जी।
1: तो इस करके सो अच्छे रिजल्ट मिले, कने हाँ हौला हौला इस कमे बधा देना, कने हाँ उसके बाद एलोवेरा भी स्टार्ट किया जमीना लगाना।
0: राकेश जी, जिन्हें तुम दसिया ना कि हल्दी पर तुम काम शुरू किया।
1: हाँ जी।
0: ये हल्दी कौन, ये कोई किस्म है कोई हल्दी दी?
1: हाँ जी, असा 5 किस्म ही हल्दी पर काम करा दे।
0: अच्छा।
1: इस एक साड़ा प्राचीन बीज था जो साड़े दादा दादी के टाइम का बीज हों था।
0: हाँ जी।
1: जिस हाइब्रिड

0: नहीं थी,
1: अच्छा
0: बिल्कुल प्योर देसी बीज था।
1: हाँ जी
0: दूजा बीज अहाँ एक ट्रायल लिया था प्रगति किस्म दी हल्दी पर,
1: अच्छा
0: तीजा हाँ ब्लैक टर्मरिक पर भी ट्रायल लाया दे,
1: हाँ जी
0: कहना एक बीज था सह भी बड़ा रेयर मिलता है, सह बीज था कस्तूरी मंजिल हल्दी।
1: अच्छा
0: तो कुछ बीज जड़े हैं सह असा पाउडर बनाई के पैकेजिंग करी के बेचा दे,
1: हाँ जी
0: बाकी जड़े बीज है ना हल्दी है दे तिना दी जड़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है ना, औषधीय गुण जड़े है ना
1: हाँ जी
0: सह दुईया नॉर्मल टर्मरिक ते ज़्यादा है ना, तो तिना दे हाँ प्रोडक्ट बनाई के फिर यहाँ मार्केट सेल करा दे, कने हाँ एलोवेरा की खेती भी बढ़ा दे।
1: अच्छा
0: हल्दी का हाँ पाउडर, टर्मरिक फेस ऑयल,
1: हाँ जी
0: टर्मरिक फेस पैक,
1: हाँ जी
0: टर्मरिक स्किन केयर ऑयल,
1: अच्छा
0: ये बना दे, कने एलोवेरा का हाँ एलोवेरा पाउडर बना दे,
1: अच्छा ये सारी चीजें करा ही बना दे तू।
0: ये सारी चीजें घरें ही बनाई हैं, कने फिर वहाँ पैकेजिंग करी के इसे बेचा दे।
1: अच्छा तो जी तुहां दस्सिया कि हल्दी भी लगांदे ने तुहां, कने सोगी एलोवेरा भी लगा करदे ने, तो कुल कितनी की जमीन है तुहां वाल? अच्छा
0: 8 कनाली जमीन है सर, हल्दी यहाँ ज्यादा लगा दे,
1: हाँ
0: हल्दी
1: जी
0: लाइना च लगा दे, तो कई बार यहाँ भी चली रहे जी एलोवेरा दी भी लगाई।
1: अच्छा राकेश जी तुहां दस्सिया ने कि तुहां नेचुरल जड़ा सा सारा ये काम करा करदे ने,
0: हाँ जी
1: ता प्राकृतिक दे पाहा तुहां दा रुझान कियां होया? कुछ ते तो जो जड़ी सा प्रेरणा मिली कि प्राकृतिक तरीके कन्ने कीते जाए?
0: एक्चुअली क्या हो रहा था साढ़े पास जरा केमिकल कने पेस्टिसाइड का जरा यूज हो रहा था
1: हाँ
0: सर
1: जी
0: सही तरीके ने नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा मात्रा च हाँ केमिकल कने पेस्टिसाइड यूज करा देते थे
1: हाँ जी
0: सर, जरा केमिकल पेस्टिसाइड हाँ जमीना दे पा दे थे सर, अनाजे दे थ्रू साढ़े शरीर च भी पुजा था
1: बिल्कुल
0: तो तिस कन्ने सारिया बीमारियां भी बदा दी थी,
1: हाँ जी
0: साड़ा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हुआ था क्योंकि सो पौष्टिक अनाज नहीं मिल रहा था, पौष्टिक सब्जियां नहीं मिल रही हैं या पौष्टिक हल्दी भी नहीं मिल रहा थी,
1: हाँ जी
0: तो उस वजह ने मेरा विचार आया था 2016 की कुछ खेतों जहाँ ऐसा काम करिए बिना केमिकल पेस्टिसाइड थे, ताकि जड़ी भी खेते जो चीज़ तैयार हुआ है से बिल्कुल शुद्ध तरीके ने प्राकृतिक तरीके ने तैयार हुआ।
1: जी दिखा बड़ी खुशी की गल है जल्लू अहाँ कन्ने प्राकृतिक तरीके कन्ने खेती करने वाले किसान जल्लू अहाँ कन्ने जुड़ते हैं। अच्छा तो प्राकृतिक तरीके कन्ने जल्लू तुहाँ करते हैं ता अहाँ दे सुनने वाले तुहाँ ये दसा कि कौन कौन घटक जड़े से तुहाँ बनाते हैं अपनी जल्लू हल्दी कन्ने यदि जल्लू खेती तुहाँ करनी है जी खाद कौन कौन पाते इस
0: हाँ
1: बीच फिर बनाई के?
0: इस बीच खाद हाँ पाई सकते देसी गाय दे गोबर कन्ने असा घनजीवा अमृत बनाई सकते,
1: हाँ जी
0: लिक्विड फॉर्म च भी बनाई सकते
1: हाँ जी
0: असा,
1: जीव अमृत हो गया
0: हाँ जी घनजीवा अमृत हुई
1: हाँ
0: है,
1: जी
0: लिक्विड फॉर्म च भी बनाई सकते हाँ कन्ने इसी सॉलिड फॉर्म च भी बनाई सकते, गोठू हाँ ही जी पहले गोठ बनाते उस फॉर्म च भी बनाई सकते इसी
1: हाँ जी
0: सह कर सकते हाँ, डायरेक्ट हाँ देसी खाद भी यूज कर सकते डायरेक्ट असा, मैक्सिमम जी गोट मैन्योर जिसे बोलते मिंगन वाली खाद भी हाँ मैक्सिमम मिंगन वाली खाद भी यूज कर लेंगे बिच कर।
1: अच्छा तो तुहां जो कदे इदे जड़े से रिजल्ट कदे लगदे कि प्राकृतिक तरीके कने वधिया बांका काम हो करदा?
0: बड़ा बढ़िया काम हो रहा जल वो असा अपने प्रोडक्ट लेके मार्केट च स्टार्टिंग च गए रहे संजो, इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि सारा लगभग लगभग 90% कस्टमर जो सर रिपीट कस्टमर है।
1: अच्छा हाँ जी दिखा कर अजकल का जड़ी साहब देसी कोई भी अगर हाँ का उत्पाद है देसी तरीके कने तैयार किते हैं तो दिखा बाजार विच जड़ी साहब दिनों दिन जड़ी साहब मांग बिल्कुल
0: हाँ
1: बढ़ा
0: जी
1: करती
0: बदल
1: है ना। तो ये तो हाँ दसिए कि 2016 च तो हाँ प्राकृतिक खेती कने जुड़े प्रशिक्षण को तो लिया तो हाँ ये
0: इस तक प्रशिक्षण तो असा बड़ी बाद च लिया हाँ, काम बड़ा पहले ही शुरू करी था हाँ, 2020 च आत्मा दे थ्रू फ्री इसका प्रशिक्षण लिया था
1: अच्छा कुतु की है तो हाँ
0: ये नगरोटा सोरिया,
1: नगुट्टा सूरी ब्लॉक ची ट्रेनिंग हुई ही
0: हाँ एक खब्बल ट्रेनिंग हुई थी 2 दिन का कैंप था इतो
1: अच्छा
0: तो उतो ट्रेनिंग हुई थी
1: हाँ जी
0: हाँ, तो इसके बाद असा से चीजा सारिया सीखिया।
1: अच्छा तो जी प्राकृतिक का तो हाँ जिक्र किया है इस तरह घर देसी गाय भी रखी हैं?
0: देसी गाय एक गाय रखी है
1: अच्छा दुध भी दिंदी होनी?
0: दूध भी दिंदी है
1: अच्छा अच्छा राकेश जी तो हाँ दस्या कि चलो तो हाँ ये खुद उत्पाद तो हाँ बनाते हैं पैकिंग वगैरह भी तो हाँ सारी आपू करते हैं
0: हाँ जी
1: इससे बाद ये बेचना कुछ हो फिर इन्हीं के?
0: असा व्हाट्सएप के थ्रू ही साढ़े कस्टमर की चेन है साड़ी, असा जयपुर भी भेजते कुछ हल्दी पाउडर, कुछ
1: अच्छा
0: पठानकोट भी भेजते,
1: अच्छा
0: कुछ हरिद्वार कने दिल्ली भी कस्टमर हैं साढ़े,
1: हाँ जी
0: तो जल वो असा साढ़े परमानेंट कस्टमर हैं, जल वो असा पैकेजिंग करते साले की हल्दी पैकेजिंग एक बारी होती,
1: हाँ जी
0: तो जितनी भी क्वांटिटी साढ़े वाल अवेलेबल होंगी
1: हाँ जी
0: है टर्मरिक पाउडर तो असा जरा पैक करके जो साढ़े परमानेंट कस्टमर हैं उन्होंने पूरे साल का कोटा तिन्हें भेजी दें बाई कोरियर।
1: अच्छा अच्छा जड़े तो हाँ दस्या है पाउडर इसी बनाने की विधि दसा कि बनाना है शुरुआत चढ़ सा कि करना हल्दी के बाद हाँ कौन दिया काम करना कि जिससे यहाँ की पाउडर बनाना है क्या क्या करना
0: हल्दी
1: पौधा?
0: हाँ जल खेतरे ते निकालनी
1: हाँ
0: है
1: जी
0: तिसते बाद हाँ तिसाइयाँ पहले जड़ा कटनी है
1: अच्छा साफ करनी है
0: हाँ जी
1: हाँ
0: जड़ा
1: जी
0: कट्टी के असा

0: फिर ये पानी साफ करना।
1: हाँ जी
0: साफ करके तुसी यहां स्लाइसिंग कर देनी हल्दी दी जड़ा दी स्लाइसिंग करके।
1: अच्छा
0: इसके बाद असा फिर तुसी सुखाते सोलर ड्रायर।
1: अच्छा
0: सोलर ड्रायर च जड़ा सुखाने का फायदा है कि जड़ा साड़े हल्दी है डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टैक्ट च नहीं आती।
1: अच्छा
0: तो तिस जड़ा वॉलेटाइल कंटेंट है मतलब जिस ऑयल की जी मात्रा है बिल्कुल सेफ रही तो साड़ी क्वालिटी जी इंप्रूव हो जाती। इसके बाद असा इस ग्राइंडिंग करवा लेंगे।
1: अच्छा बाकी फिर बाद पाउडर बनी है।
0: हाँ जी फिर पाउडर बनी है फिर यहाँ अद्धा किलो ही पैकिंग करके स्टिकर वगैरह लगाई के।
1: अच्छा
0: तो जेड़े जेड़े साड़े परमानेंट कस्टमर है ना
1: हाँ जी
0: पूरे हाँ साल दा कोटा बाई कोरियर भेजी दे।
1: अच्छा इस चीज़ ने कि और कुछ मिक्स नहीं करना ना
0: इस चीज़ और कुछ मिक्स करने जरूरत नहीं पौंदी।
1: अच्छा तो जी अद्धा अद्धा किलो दी पैकिंग है इहदा क्या भाव रहिंदा जदों बेचना तो हाँ जी थोक भाव च बेचना या भी कुछ हिसाबे कन्ने बेचदे।
0: असां इस चीज़ रिटेल च बेचदे।
1: अच्छा ऐसा देखा ऐसा मन्ने जांदा ना कि प्राकृतिक तरीके कन्ने जेड़े उत्पाद तैयार करदे हन ना उहनां दा जेड़ा सै थोड़ा मोल भाव जेड़ा थोड़ा ज्यादा हुंदा है। हाँ। तो हाँ जो क्या उस तरीके कन्ने भा मिली आ दे।
0: हाँ नॉर्मल दी 350-350 रुपए किलो रेट है मार्केट 450 किलो है 450 रुपए पर किलो।
1: अच्छा अच्छा एलोवेरा दा जिक्र तो हाँ किता हा।
0: हाँ जी
1: सर तो क्या क्या प्रोडक्ट बनांदे तो हाँ
0: एलोवेरा दे तो काफी सारे प्रोडक्ट बनी जांदे पर हाँ सिर्फ हल्ले पाउडर पर ही ट्रायल लिया। एलोवेरा दे पत्ते कट्टी के तुसी बारीक स्लाइसिंग करी के हाँ तुसी भी सोलर ड्रायर च सुकांदे।
1: अच्छा
0: जल उस सोलर ड्रायर च पूरी तरह सुकी जांदा
1: हां जी
0: तुसी हाँ मैनुअली ग्राइंड कर लेंदे।
1: अच्छा
0: जेड़ी साडियां पुरानियां चक्कियां थीं
1: हां जी
0: हाँ तिना ने भी ग्राइंड कर लेंदे कने छोटी जेड़ी मसाले वाली मशीनां होंदियां
1: हां जी
0: तिना कने ग्राइंड करके हाँ बारीक पाउडर बनाई के तुसी हाँ फेस पैक च यूज करदे।
1: अच्छा
0: साडा इक प्रोडक्ट है टर्मरिक फेस पैक।
1: हाँ जी
0: तो हाँ टर्मरिक फेस पैक च कुछ क्वांटिटी जेड़ी है हाँ एलोवेरा पाउडर दी भी यूज कर लेंदे।
1: हाँ जी तां जी तुहां दस्सिया कि तुहां दा ब्लॉग जिहड़ा सा रोटा सूरियां कने आत्मा प्रयोजन वाले तुहां जिहड़े से जुड़ी रहिंदे ने।
0: हाँ जी
1: तां इहदे अलावा जिहां तुहां प्राकृतिक दी ते तुहां ट्रेनिंग जिहड़ी सा कीती होई है प्रशिक्षण लिया।
0: हाँ जी
1: इहदे अलावा जिहां और कई तरह के ऐसे प्रशिक्षण जिहड़े शिविर लगते हैं कोई होर भी तुहां ऐसी कोई ट्रेनिंग वगैरह कीती है कोई।
0: हाँ जी साल मई च सुभाष पालेकर जिहड़े हैं महाराष्ट्र के जिन्हें प्रकृति खेती पर पद्मश्री पुरस्कार मिलिया।
1: हाँ जी हाँ
0: हाँ जी हाँ जी तो तिना की वर्कशॉप थी मई महीने।
1: अच्छा
0: तो गवर्नमेंट ने पूरे हिमाचल के किसान भेजे थे इतों नहीं दिया था।
1: अच्छा कुछ जगह ही है
0: 7 दिन की वर्कशॉप थी नासिक।
1: अच्छा नासिक
0: हाँ जी नासिक थी महाराष्ट्र च टर्मरिक हल्दी जड़ी है से एक बड़ा जबरदस्त औषधीय पौधा है।
1: हाँ जी
0: असा टर्मरिक कन्ने एक स्किन केयर ना दा एक प्रोडक्ट बनाया।
1: अच्छा
0: इस स्किन केयर प्रोडक्ट कन्ने लगभग लगभग सारिया स्किन दिया जितनिया भी बीमारियां है ना स्किन डिजीज जितनिया भी है ना
1: हाँ जी
0: से सारिया ठीक हो रही से प्रोडक्ट जेड़ा साड़ा बाकी सारे प्रोडक्टा दे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है।
1: अच्छा अच्छा राकेश जी एक गल हाँ और करते हैं जे जे तुहां अपनी जड़ जितनी भी तुहां खेती करते हैं तुहां दा जेड़ा इलाका है तो सिंचाई का क्या साधन है पानी कोई क्या कियां करते तुहां अपने खेतों च पूरा।
0: साढ़े पास सिंचाई की कोई भी व्यवस्था ही नहीं है पूरी तरह से बिल्कुल बारिश के पानी पर ही डिपेंड है ना।
1: अच्छा
0: तो असा जेड़े भी साढ़े एरिया चंगर एरिया है
1: हाँ जी
0: तो इस संजो बरसात की बारिश ही यूज करते हाँ पानी तो उस हिसाब ने ही असा अपनी फसल चयन कर सकते।
1: हाँ जी अच्छा बरखबर है पूरा ये इलाका है।
0: हाँ जी हाँ जी बरखबर ही पूरा इलाका डिपेंड
1: दिखा जी विभाग द्वारा या कुछ पंचायत स्तर पर जी पानी के कोई खड्डे या कोई टैंक वगैरह बनते हैं नहीं बनाए तो हाँ कुछ भी
0: नहीं है सो दिया टैंक सड़ा ले नहीं बने कोई
1: बरसाती पानी रोकने वास्ते जी हां
0: हां जी हां जी सड़ा टैंक नहीं बने कोई भी सड़ा।
1: अच्छा यानी कि बरखा जलू मौसम भर है उसी कन्ने ही तुहां जड़ा सा अपना खेती करदे हन कि देखा प्राकृतिक खेती दा ये जड़ा सिद्धांत भी है कि इस जड़ा सा हां कट पानी कन्ने जड़ा सा एक बाकी खेती जड़ी सा कर सकदे हन।
0: हां जी हां जी
1: तां राकेश जी देखा अहां दे जड़े बेरोजगार युवा साथी हन सह दिखा नौकरियों पिछे तू घूमा करते हैं भले तेना जी अपनी खुली जमीन है तिने तुहां क्या संदेश देना चाहेंगे।
0: मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि साढ़े चंगर एरिए कुछ नहीं हो सकता।
1: हाँ जी
0: जदों असा ये काम स्टार्ट किया था तो मेरे विचार च जिहड़ा विचारिक उद्देश्य था यही था कि एक ऐसा मॉडल स्थापित करना चंगर एरिए कि असा अपनी जमीन दे उपज योग्य मार्केट कन्ने जोड़ी सकीए।
1: हाँ जी
0: तो अगर मार्केट दिखी के अगर कि कुछ मार्केट च कुछ चीज़ की डिमांड है
1: हाँ जी
0: अगर वही तैयार की जाए और उसे डायरेक्ट मंडी च ना ले जाए के अगर प्रोसेसिंग कने पैकेजिंग खुद की जाए और खुद किसान मार्केट च जाए तो फायदा किसान उठाई सकता।
1: जी राकेश जी तुहां अपने खेतीबाड़ी दे अनुभव अहां कन्ने सांझा किते अपना कीमती समय तुहां अहां जो दिता तुहां दा बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ਜਿਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਨਤ ਕਿਸਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਰ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਨਾ।
3: ਹਾਂਜੀ,
2: ਇਸ ਦੇ ਕੰਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਾਂਗੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤਰਫ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਲੂ 8 ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਜ 18 ਅਤੇ 22, ਟਮਾਟਰ 12 ਅਤੇ 16, ਲਸਣ 100 ਅਤੇ 120, ਅਦਰਕ 120 ਅਤੇ 130, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 12 ਅਤੇ 13, ਅਰਬੀ 32 ਅਤੇ 34, ਖੀਰਾ 10 ਅਤੇ 12, ਮਟਰ 45 ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ 22 ਅਤੇ 25, ਬੰਦ ਗੋਭੀ 13 ਅਤੇ 14, ਬੈਂਗਣ 20 ਅਤੇ 25, ਕੱਦੂ 12 ਅਤੇ 14, ਮੂਲੀ 20 ਅਤੇ 25, ਟਿੰਡਾ 18 ਅਤੇ 20, ਪਾਲਕ 24 ਅਤੇ 25, ਹਰੀ ਮਿਰਚ 30 ਅਤੇ 40, ਧਨੀਆ 40 ਅਤੇ 45, ਭਿੰਡੀ 25 ਅਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਘੀਆ 10 ਅਤੇ 15, ਕਟਹਲ ਦੇ ਅੱਜ ਥੋਕ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਓ, ਇਸ ਦੇ ਕੰਨੇ ਕਰੇਲਾ 20 ਅਤੇ 30 ਰੁਪਏ, ਫਰਾਸਬੀਨ 80 ਅਤੇ 110, ਗਾਜਰ 20 ਅਤੇ 22, ਮਸ਼ਰੂਮ 150 ਅਤੇ 160। ਕੰਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਫਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਲਾਂ 'ਚ ਸੇਬ 110 ਅਤੇ 140 ਰੁਪਏ, ਕੇਲਾ 40 ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਜਨ, ਅਨਾਰ 120 ਅਤੇ 140 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਅਨਾਨਾਸ 40 ਅਤੇ 50, ਅਮਰੂਦ 70 ਅਤੇ 80, ਮੌਸੰਮੀ 70 ਅਤੇ 80, ਪਪੀਤਾ 35 ਅਤੇ 40, ਖਰਬੂਜਾ 20 ਅਤੇ 45, ਤਰਬੂਜ 10 ਅਤੇ 15, ਅੰਗੂਰ 100 ਅਤੇ 130, ਪਲਮ 50 ਅਤੇ 52, ਕਨੇ ਅੰਬ ਜੇ ਐਸੇ 60 ਅਤੇ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਕਿਸਮ ਦਾ 45 ਅਤੇ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਨਿੰਬੂ 85 ਅਤੇ 90, ਕਨੇ ਖੁਮਾਨੀ 100 ਅਤੇ 150, ਕੀਵੀ ਪਰ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 30 ਅਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਲੁੰਗੜੂ 25 ਅਤੇ 30 ਰੁਪਏ, ਮਾਲਟਾ 130 ਅਤੇ 140 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ
3: ਜੀ। ਤਾਂ ਪੰਜ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ।

0: किसान मित्र जी हुण साडे जाने दा समय भी जेड़ा से होआ करदा है ना।
1: हां कने तकनीकी से आए दित्ता विपिन कुमार ने कने कार्यक्रम दे प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह उन्हां दोनों दी अनुमति।
0: अच्छा जी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:42 हुए हैं। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 7:45 पर, जिन्हें आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गाँव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सरकार चला रही है अनेक योजनाएं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी, 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होगा मतदान। नगर निकाय चुनाव नतीजों पर राजनीति जारी, जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर लगाया बढ़ा चढ़ाकर जीत के दावे पेश करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, नगर निकाय चुनावों में जीत के झूठे आंकड़े पेश कर पंचायत चुनावों को प्रभावित करना चाहती है कांग्रेस। और सुप्रीम कोर्ट का लावारिस कुत्तों को नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व के निर्देशों को वापस लेने से इनकार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और बदलती सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं व चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाएं सशक्त बनेंगी तो पूरा परिवार आर्थिक रूप से सशक्त बनेगा। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी है। सभी उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी प्राथमिकताएं उनके सामने रखकर वोट मांग रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लिए मतदान 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होगा। इस बीच पंचायती राज चुनाव के सफल और निष्पक्ष संचालन के लिए चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान मतदान प्रक्रिया, मतदान सामग्री प्रबंधन और मतदान केंद्रों पर पालन किए जाने वाले नियमों की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही चुनाव कर्मियों को मतपेटी के उपयोग और चुनाव प्रक्रिया का अभ्यास भी करवाया जा रहा है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि पंचायती राज और स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव परिणामों की वास्तविक स्थिति जिला परिषदों और पंचायतों के निर्वाचन के साथ ही स्पष्ट होगी। जगत सिंह नेगी ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा शहरी निकाय चुनाव नतीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है, जो सही नहीं है, क्योंकि अभी इन संस्थाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का चयन होना बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा नेता का बयानबाजी में कोई मुकाबला नहीं है और वे हमेशा बढ़ा चढ़ाकर दावे करते हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और होती है।
3: नगर निगम के जो हमारे नगर निकाय के चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस समर्थित लोगों की तादाद बढ़ी है। अभी समय है, गठन होने दो, नगर परिषदों को गठन होने दो, स्पष्ट हो जाएगा कहां कहां के अध्यक्ष कौन बनाता है, क्योंकि अभी पंचायतों और जिला परिषदों के चुनाव होने हैं, उसको प्रभावित करने के लिए ये लोगों को गुमराह कर रही है, जब हकीकत और है। इसमें जो चुनाव हुए अभी, जिनके रिजल्ट निकले हैं, चाहे परिषद के है चाहे हमारे नगर पंचायतों की है, उसमें कांग्रेस के भारी तादाद में लोग जीते हैं।
2: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नगर निकाय चुनावों में जीत के झूठे आंकड़े पेश कर पंचायत चुनावों को प्रभावित करना चाहते हैं। जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान शंकर देहरा में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निकाय चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विदाई की शहनाई बजा दी है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों के बाद अब प्रदेश की ग्रामीण जनता भी कांग्रेस की चुनावी गारंटियों के पूरा न होने के कारण खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है और पंचायत चुनावों में सरकार को कड़ा सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने दावा किया है कि प्रदेश में नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस की भारी जीत हुई है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि भाजपा नेता चुनाव नतीजों को लेकर झूठे दावे पेश कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत ने साबित कर दिया कि प्रदेश के लोग पार्टी के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी ने 47 नगर निकायों में से 32 में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस इससे भी अधिक निकायों में अपने अध्यक्ष बनाएगी। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च राजकीय सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने से भारत की विश्व में साख व कूटनीति और मजबूत हुई है। प्रोफेसर सुकेंद्र कुमार ने कहा कि ये केवल एक पुरस्कार नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के बढ़ते वैश्विक गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले एशियाई नेता बन गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति रक्षात्मक से आक्रामक और आत्मनिर्भर मोड में बदल गई है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की महत्वाकांक्षी पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम के तहत पुडुचेरी और हिमाचल के बीच सांस्कृतिक व शैक्षणिक आदान प्रदान की नई शुरुआत हुई है। इसके तहत NIT पुडुचेरी के 48 छात्रों और 5 फैकल्टी समन्वयकों का एक दल आज केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला पहुंचा। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत प्रकाश बंसल ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल शैक्षणिक भ्रमण नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच भावनात्मक जुड़ाव और अनुभव आधारित सीख को बढ़ावा देना है।
4: शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा हर वर्ष एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों का शिक्षा के बारे में और आपस में परस्पर आदान प्रदान हो उसके लिए ये पहल रहती है कि कोई भी दो स्टेट्स का पेयर बनाया जाए और वहाँ के बच्चे आपस में एक दूसरे की स्टेट में जाएं और वहाँ पर जाकर के उसके बारे में अपने रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो रिपोर्ट वो शेयर करते हैं। तो इसी के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालय को इस वर्ष पुडुचेरी के साथ, जिसकी मेजबानी NIT पुडुचेरी कर रही है, और हिमाचल के साथ 48 बच्चे NIT पुडुचेरी से आज यहां पहुंच चुके हैं।
2: हिमाचल प्रदेश मिडडे मील वर्कर यूनियन और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आंगनवाड़ी हेल्पर और मिडडे मील वर्करों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में पोलिंग पार्टियों के लिए खाना बनाने के लिए लगाने का विरोध किया है। मिडडे मील वर्कर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप कुमार और सचिव शांति ने कहा कि चुनाव ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों को वेतन मिलता है लेकिन मिडडे मील वर्करों को इस कार्य का कोई वेतन नहीं दिया जाता। उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि पंचायत चुनावों में मिडडे मील वर्करों और आंगनवाड़ी वर्करों व हेल्परों की ड्यूटी न लगाई जाए। प्रदेश विधानसभा सचिवालय में बीते रोज और आज लोक लेखा समिति की बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों की अध्यक्षता सभापति अनिल शर्मा ने की। बैठकों में विधायक रणधीर शर्मा, संजय रतन, जीतराम कटवाल, बलेंद्र राजन, केवल सिंह पठानिया और चंद्रशेखर ने हिस्सा लिया। इन बैठकों में समिति ने लोक निर्माण व उद्योग विभाग से संबंधित प्राप्त विभागीय उत्तरों पर विचार विमर्श किया। प्रदेश में तापमान में वृद्धि लगातार जारी है। तापमान बढ़ने से राज्य के मैदानी जिलों में लोगों को जोरदार गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, कुल्लू, सोलन और किन्नौर जिलों में अलग अलग स्थानों पर लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच विभाग ने कहा है कि हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके प्रभाव से आज से 25 मई तक राज्य के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत की उम्मीद है। विभाग ने 21 और 22 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में अलग अलग स्थानों पर वर्षा होने, अंधड़ और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच प्रदेश के अधिकांश पर्यटक स्थलों पर इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है और भारी संख्या में पर्यटक यहां घूमने के लिए पहुंच रहे हैं।

0: पूर्व के निर्देशों को वापस लेने से इनकार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने देशगान।

हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर रात के 8 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। विविध संगीत के इस कार्यक्रम सबरस में सभी श्रोताओं का स्वागत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको विविध संगीत यानी संगीत के अलग अलग रूपों के साथ रूबरू करवाते हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं ये गजल, जिसे गाया है गजलों के बादशाह जगजीत सिंह ने।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का लुत्फ उठा रहे हैं आप इस समय आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओ, इस कार्यक्रम में संगीत के विभिन्न पहलुओं से हम आपको रूबरू कराते हैं। कार्यक्रम में आप आगे बढ़ते हैं इस पंजाबी गीत की ओर। पंजाबी गीतों की बात ही कुछ और होती है श्रोताओ। ढोल की थाप पड़े और दिल अपने आप झूमने लगे।

0: कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: गीत संगीत के विविध रूपों से रूबरू करवाता ये कार्यक्रम सबरस से समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। मोहब्बत जब वफा से बेवफाई तक पहुंचती है तो शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन संगीत दिल की हर बात कह देता है। तो लीजिए सुनिए ये गीत जो टूटे दिल की दास्तां बयां कर रहा है।

दोस्तों, अब जिक्र संगीत का उस पहलू का जो सिर्फ कानों तक नहीं सीधे रूह तक पहुंचता है। वडाली ब्रदर्स की आवाज में सूफियाना रंग, इश्क हकीकी का एहसास और मिट्टी की सादगी एक साथ सुनाई देती है। उनकी कव्वालियां और सूफी कलाम सिर्फ गीत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सफर जैसे लगते हैं, जहां हर सुर दिल को सुकून देता है और हर शब्द मोहब्बत का पैमाना बन जाता है। तो आइए इस खुशनुमा महफिल में डूब जाते हैं वडाली ब्रदर्स की रूहानी आवाज के साथ और महसूस करते हैं सूफी संगीत का ये अनोखा रंग।

अभी आप सुन रहे थे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में पहली समाचार संध्या और रात 9 बजे News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
2: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। No compromise, no double standard.
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक $350 अरब का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें $100 अरब का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप

0: की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecasts heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties

हीरो फिल्म के इस गीत में मनहर उदास का साथ निभाया अलका याग्निक ने। श्रोताओं, भारतीय संगीत जगत के एक जाने माने गायक मनहर उदास, जिन्हें खास तौर पर उनकी मधुर और भावपूर्ण आवाज के लिए जाना जाता है, मनहर उदास ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ गुजराती संगीत में भी अपनी खास पहचान बनाई। 70 और 80 के दशक में उनकी आवाज कई लोकप्रिय गीतों में सुनाई दी। उनकी गायकी की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि वे रोमांटिक गीतों से लेकर दर्द भरे नगमों तक हर एहसास को बड़ी सादगी और गहराई से पेश करते थे। उनकी आवाज में एक अपनापन और ठहराव महसूस होता था जो श्रोताओं के दिल को सीधे छू जाता था। हीरो फिल्म का ये गीत लीजिए, सुनिए उन्हीं का गाया और साथ निभा रहे हैं साथ में लता मंगेशकर।

श्रोताओं, एक ही कलाकार कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से, और गायक गायिका क्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गायक कलाकार मनहर उदास द्वारा गाए कुछ फिल्मी गीत। श्रोताओं, मनहर उदास बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ की शुरुआती फिल्मों में उनके गानों को अपनी आवाज देते थे और उनकी आवाज जैकी श्रॉफ के फिल्मी व्यक्तित्व की पहचान बन गई। एक बार गायक मुकेश के उपलब्ध ना होने पर यह तय किया गया कि एक गाने को मनहर उदास की आवाज में डब किया जाएगा और बाद में मुकेश उसे गाएंगे। ये गाना साल 1969 में आई फिल्म विश्वास का आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया था। जब मुकेश ने ये गाना सुना तो उन्होंने कहा कि मनहर उदास ने गाना बहुत ही खूबसूरती से गाया है और इसे उनकी आवाज में रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। गाना हिट हो गया और ये गाना मनहर उदास के करियर का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। मनहर उदास ने फिल्म जगत के कई संगीतकारों के साथ काम किया और बॉलीवुड के कई नायकों के लिए अपनी आवाजें दी।

श्रोताओं, प्रसिद्ध पार्श्व गायक मनहर उदास ने अपने करियर में 300 से अधिक फिल्मों में गाने गाए हैं। मनहर उदास ने हिंदी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली जैसी फिल्मों में अपनी आवाजें दी हैं इन सभी भाषाओं के गानों में। इसके अलावा उन्होंने अपने 30 से अधिक एल्बम भी जारी किए हैं।

दोस्तों ये थी बातें एक ऐसे कलाकार की जिनकी आवाज में सादगी भी है, मिठास भी और दिल को छू लेने वाला एहसास भी। हिंदी फिल्म संगीत को कई यादगार गीत देने वाले गायक मनहर उदास ने अपने सुरों से लाखों दिलों में खास जगह बनाई है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, और इस कार्यक्रम में आज हमने श्रोताओं को सुनवाए पार्श्व गायक मनहर उदास द्वारा गाए कुछ फिल्मी गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और आपने ट्यून किया है इसे 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 9:30 हुए हैं। अब सुनिए हिमाचली गीतों और लोक गीतों का कार्यक्रम धाम गीतांदी। शुरुआत कर रहे हैं इस लोकगीत के साथ, जिसे गाया है मानसिंह और ऋषिका ने।

मान सिंह और ऋषिका के गाए इस लोकगीत के बाद कार्यक्रम धाम गीतांदी की अगली पेशकश ये लोकगीत जिसे गाया है निकेश कुमार ने।

करनैल राणा को अभी आपने सुना इस लोकगीत में। हिमाचली गीत और लोकगीत समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं धाम गीतांदि कार्यक्रम है और कार्यक्रम का अगला लोकगीत लीजिए अब सुनिए जन्मजय सिंह गुलेरिया और साथियों का गाया।

रात की 9:58 और 42 सेकंड आप इस समय जुड़े हुए हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से और धाम गीतांदी हिमाचली गीतों और लोक गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम इस समय इसका लुत्फ आप उठा रहे हैं। कार्यक्रम में अब लीजिए ये लोकगीत सुनिए जिसे राजकुमार और साथियों की आवाजों में है।

धाम गीता दी हिमाचली गीतों और लोकगीतों के इस कार्यक्रम की अंतिम पेशकश। अब ये लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं, इसे गाया है गंभरी देवी ने।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम की तंदी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, 103.4 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से आप जुड़े हैं और रात की 10:30 अब हुए हैं। श्रोताओं, रात की इस हसीन और सुरीली महफिल में आप सबका स्वागत। दिन भर की भागदौड़ और थकान के बाद अब वक्त है कुछ सुकून के पल चुराने का, कुछ मधुर नगमों के साथ, कुछ यादों के साथ और कुछ उन एहसासों के साथ जो सिर्फ संगीत ही जगा सकता है। स्वागत है आप सभी का अपने अपने पसंदीदा कार्यक्रम चित्रपट संगीत में, जहाँ पुराने फिल्मी गीतों से हम आपका मनोरंजन करते हैं, जहाँ सितारों भरी रात में गूंजेंगे हिंदी फिल्मों के सदाबहार गीत। कभी प्यार की खुशबू लिए, कभी यादों की नरमी लिए, तो कभी दिल को धड़काने वाले एहसास लिए।

प्यार की शिद्दत को दिखाता ये गीत इस वक्त आपके रेडियो सेट्स पर। लता मंगेशकर का गाया ये गीत अनपढ़ फिल्म से।

रात का ये खामोशी का आलम पुराने ख्याल और दिल में कुछ छुपे पुराने एहसास, ऐसे ही जज्बातों को आवाज देता है ये अगला गीत, जो बरसों बाद भी उतना ही असर छोड़ता है। अगर कभी किसी की याद ने आपको भी चुपचाप मुस्कुराने या उदास होने पर मजबूर किया है, तो ये गीत सीधे आपके दिल से जुड़ जाएगा। पेश है बेहद खूबसूरत और दर्द भरा ये नगमा।

मुकेश की आवाज में माई लव फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। दोस्तों, इश्क का असर भी बड़ा अजीब होता है। कभी मुस्कुराने की वजह बन जाता है तो कभी दिल को पूरी तरह दीवाना कर देता है। और जब यही एहसास संगीत में ढल जाए तो बनता है एक ऐसा गीत जिसे सुनकर दिल बस खो सा जाता है। तो आइए रात के इस सुरीले सफर में सुनते हैं प्यार की दीवानगी से भरा ये खूबसूरत नगमा, नाइट इन नंदन फिल्म से मोहम्मद रफी का गाया।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत में फिल्मी गीतों का यह सफर आप तय कर रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रात की खामोशी में जब पुराने गीत गूंजते हैं तो यादों के कई दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। कुछ गीत हमें मुस्कुराने पे मजबूर करते हैं तो कुछ गीत चुपचाप आंखों को भिगो जाते हैं। अब जो गीत हम लेकर आए हैं उसकी हर एक पंक्ति में दर्द भी है, मोहब्बत भी और बेहतरीन शायरी का जादू भी।

अदालत फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। दोस्तों, कुछ दास्तानें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों से बयां करना आसान नहीं होता। दिल की बातें जब गीत बनकर सामने आती हैं तो हर लफ्ज एक एहसास बन जाता है। अब पेश है लता मंगेशकर की आवाज में ऐसा ही एक खूबसूरत सा नगमा जिसमें छुपी है मोहब्बत की कहानी, जज्बातों की सच्चाई और दिल की हल्की सी उदासी।

फिल्मी गीतों की ये महफिल सजी है आकाशवाणी धर्मशाला पर और 103.4 मेगाहर्ट्ज़ के माध्यम से आप जुड़े हैं। कार्यक्रम चित्रपट संगीत है और पुराने फिल्मी गीतों का लुत्फ उठा रहे हैं आप। चांदनी रात, हल्की सी खामोशी और साथ में हो एक ऐसा गीत जिसके शब्द दिल को छू जाएं। अब पेश है हिंदी फिल्म संगीत का एक बेहद खूबसूरत और रूमानी नगमा, जिसे सुनकर प्यार का रंग और भी गहरा हो जाता है। मोहम्मद रफी का गाया ये गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है फिल्म गजल से।

श्रोताओं, रात अब धीरे धीरे अपनी चादर और गहरी करती जा रही है और शुरू की ये महफिल अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। कुछ गीत मुस्कान बनकर साथ रहे, कुछ यादों की तरह दिल में उतर गए और कुछ शायद आपकी तन्हाई के साथ ही बन गए होंगे। इन्हीं खूबसूरत एहसासों के साथ अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन याद रखिए, संगीत कभी खत्म नहीं होता, वो तो बस अगली मुलाकात तक दिल में बस गूंजता रहता है।

0: अभी आप सुन रहे थे पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात के 11 बजने को है, कुछ ही देर में पहले हिंदी में समाचार आप सुनेंगे और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार जो आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने

0: की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the 5th and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital, Rome, later tonight. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level meeting in New Delhi to assess preparations for the forthcoming NEET UG re-examinations for admission to undergraduate medical education to be held on 21st of next month. Mr. Pradhan directed that